गुर सेवा के सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उधारे, साची शोभा सात द्वारे, सेवड पागी जे गुर सेवा लाए, हम दिन पग सच नाम दृढ़ाए, नामे उदरे कुल सभाए।

सोई। सतगुरु नाम बुझाया बिन नामे भुख न जाई। नामे तृष्णा अग्न बुझे है।

कर कृपा नाम मनवसाए, एहो सिर दी जय आप गवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाए, आप पुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच समाए, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मन मुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावे सब फिरे बोराणी, तीन पवन में एक काम आया, मूरख पढ़ पढ़ दूजा पाव दृढ़ाया, बहु कर्म कमावे दुख सवाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द विचार, अंदिन पोगे हूं मैं मार, सहज आनंद कृपा धार, नाम रते सदा सच प्यार, हर जब पढ़िए गुर शब्द विचार, हर जब पढ़िए हूं मैं मार, हर जपिए पै सच प्यार, नानक नाम गुरमत को।

गुरु ते कर दर पाया भगती परे पंडारा, गुरुमुख नाम से आई है बूझे विचारा, गुरुमुख भगत सलाह है अंतर शब्द अपारा, गुरुमुख सुख उपजे दुख कदे न होई, गुरुमुख हो मैं मारिये मन निर्मल होई, सत गुर मिले आप गया त्रिभुवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही ज्योति ज्योत मिलाई, पूरे गुर समझाया मत उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए नामे सुख होई, पूरा सतगुरु ता मिले जानदर करे, किलविक पाप सब कटिए फिर दुख बिघन न होई, अपने हाथ वडियाईया दे नामे लाए, नानक नाम निधान मन वसिया वडियाई पाए, आसा मैला तीजा सुन मन मन वसाए, तू आपे आए मिले मेरे भाई, अंधिन सच्ची भगत कर सच्चे चित लाई, एको नाम से आए तू सुख पावे मेरे भाई, हो मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाओ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विन सतगुर पाई न जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की तिन बूझ न पाए, आपे थे सब रखियो ने किस कहन न जाई, आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे सबना का सोई, मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा एका सिरकारा, आप वाली दितियन अंतर लोग विकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन बूजन विचारा, भगत भी ओ नानो बख्शियन अंतर।

सोई, कर में पंच वर्त दे पंचे विचारी, नानक बिन सतगुर वस ना आवनी, नाम हो मैं मारी आसा महला तीजा। करे अंदर सब वस है बाहर किस नाही, गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाही, सतगुर ते हर पाई है पाई, अंतर नाम निदान है पूरे सतगुर दिया दिखाई। रहाओ हर का गाहक होवे सो ले पाए रतन विचारा, अंदर खोले दिव दिस देखे मुक्त पंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे वसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फिर होए न फेरा, पार किया वक्त समाल ले गुर सो जी होई, नाम पदार्थ अमूल सा गुरमुख पावे कोई। बाहर पाले तो क्या लहे वक्त करे अंदर भाई, पर में पूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, कर दर छोड़े अपना पर कर चूठा जाई, चोरे वांगू पकड़िए बिन नामे चोटा खाए, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए भाई, अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किस आखिए आपे दे बुझाई, नानक नाम से आए तू दर सच्चे तो बापाई। आसा महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा भाई, हर रस चाखिए मुक्त भये जिना साचो भाई, हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मन वासा, गुरमती साला ही है बिखिया माहे उदासा। रहाओ बिन शब्द आप न जा पई सब अंधी भाई, गुरमती कट चानना नाम अंत सिखाई, नामे ही नाम वर्त दे नामे वर्तारा, अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा, नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड्याई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई, नामे ही कर चानना नामे शोभा पाई, नामे ही सुख उपजे नामे शरणाई, बिन नामे कोई ना मनिए मन मुख पत गवाई, जमपुर बादे मारिए बिरथा जन्म गवाई, नामे की सब सेवा करे गुरुमुख नाम बुझाई, नामो ही नाम मनिए नामे वड्याई, जिसनो देवे तिस मिले गुरुमती नाम बुझाई, नानक सब किछ नाम है।

आ बोले नानिवे दूजा पाव सुहाओ यो मनुआ क्यों कर वक्त आवे गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ सोहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर के पाने चल दिया नामे सह शिगार सदा रामे फिर अपना सच्ची सेज सुवाए फिर के प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाए ज्ञान अपार सिगार है शोभावंती नार सासब राई सुंदरी फिर कहे प्यार सोहागनी विच रंग रखियो न सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार सोहागनी सिगार बनाया गुण का गलहार प्रेम पिरमल तन लावना अंत

हाँ हाँ कर दी सब फिरे बिन शब्द हो न जाए नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच्चे रहे समाए आसा मैला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए ऐथे कर कर जाप दे आ गए जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगुले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना यो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल ज्योत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कै पै पाए जोरते सिफ्ति सच समाओ पै बिन लाग ना लग गई ना मन निर्मल होए।

बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस्तोर, जिनकी तेत से न जाननी बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाजे और

सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ना पहुँची है कछ कहने अंत न पाए। गुरते कीमत पाई है सच शब्द।

मन सदा हरि आवला सहजे हर गुण गाए राव मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिललाहे जिना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सत नाम व पार जो इतला है लायन।

जिन्ना फिर रावया अपना तिना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रहे विचों आप गवाए तन मन शीतल भुख उजले फिर कै पाए प्यार फिर सुखाली फिर

भक्ति सार न जाननी मनमुख अहंकारी, तुरो आख खुआयन जुए बाजी हारी। बिन प्यारे भगत ना हो वही, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाई है।

अन रस में पोलाया बिन ना में दुख पाए, सतगुरु पुरख ना पेटियो जे सच्ची बूझ बुझाए, ए मन मेरे बावले हर रस चट साद पाए, अन रस लागा तू फिरे बिरथा जन्म गवाए रहाओ, इस जुग में गुरुमुख निर्मले सच नाम रहे लिवलाए, विण कर्मा किछ पाये नहीं क्या कर कहे आ जाए, आप पछाणे शब्द मरे मनो तज विकार, गुर शरणाई पज पए बक्से बक्सनहार, बिन नावे सुख न पाये ना दुख विच्चों जाए, इहो जग माया मोह व्यापिया दूजे परम पुलाए, दोहागणी तिरकी सार न जानही क्या कर करें सिगार, अंदिन सदा जल्दिया फिरे सेजे रवे ना पतार, सुहागणी महल पाया विच्चों आप गवाए, गुर शब्दी सिगारिया अपने सह लिया मिलाए, मरना मनो विसारिया।

नाम से हो सुख पुंचे सब ठाए। सब जग चल तो पेखी है नहीं चल हर को ना हो कर मित्राई साब चो नहीं चल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद।

पंडित आप थिया। छछे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम होआ, परम उपाय पुलायन आपे, तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया। जज जय जान मंगत जन जाचे।

सारो अपना पाज पड़ो तुम हर सरना। ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा सही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया। डड्डे डंफ करो क्या प्राणी जो किछ होआ सो सब चलना। तिसे सिरेवो ता सुख पावो सर्व निरंतर रव रहा।

नाने रवत रहे कट अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म ना होई। तत्ते तारू पव जल हुआ, ताका अंत न पाया, ना तर ना तुल्हा हम।

जाने अंतर बाहर रव रहा राड़े राड़ करें क्या प्राणी तिसे त्यावो जे अमर होआ तिसे त्यावो सच समावो उस विटों कुर्बान किया हा है होर न कोई दाता।

ममे मत हिर लई तेरी मूड़े हों मैं वड्डा रोग पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कक्के काम क्रोध परम्यो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुणे तू बहुत पुकारे।

पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लया तेरा अंत न जाई लखिया अकथ न जाई हर कथिया नानक जिन को

स्वामी आप प्रभ कृपा करे सेजा सुहावी संग पिरके सात सर अमृत भरे कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो नानका हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाहो मुंद सहज सलो नड़िए इक प्रेम बिनंती राम मैं मन तन हर भावे प्रभ संगम राती राम प्रभ प्रेम राती हर बिनंती नाम हर कै सुख वसे तो गुण पछाणे ता प्रभ जाने गुणे वस अवगण नसे तुद बाज इक

जब तप कर संयम था की हठ निग्रह नहीं पाइए, नानक सहज मिले जग जीवन सतगुर बूझ बुझाइए। गुर सागरो रत्नागर तित रतन कणे रे राम, कर मज्जनो सप्त सरे मन निर्मल मेरे राम। निर्मल जल नाए जा प्रभ पाए, पंच मिले विचारे काम क्रोध कपट बिखिया तज।

सच साहिबो आद पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोचर अपर अपारा पार ब्रह्म प्रधानो आद जुगादि है भी होसी अवर चूठा सब मानो कर्म तर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाये नानक गुरमुख शब्द पछाणे एहनिस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित पाई सुत चतुराई संग न कम पैना।

नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई। मेरा मनो मेरा मन निर्मल साथ संभाले राम अवगुण मेट चले।

गुरुमुख तत् विचारो साजन मीत सो जान सखा तू सच मिले वड्याई नानक नाम रतन प्रगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन रव रहा जग

ते कबहु ना हारे हर हर गुण सारे तिन जम नेर ना आवे जमन मरण तिना काचू का जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर्धार जियो जिन एक मन त्याया।

हर दरगह मान सोई जन पावे, जो नर एक पछाणे ओह नव निध पावे, गुरमत हर त्यावे नित हर गुण आख वखाणे, एनस नाम तिसे काली जय, हर उत्तम पुरख प्रदान जियो जिन

काचा साहिब मन वसै की फासे जम जाले राम। मछली विचुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्दिक पाया, संसार माया मोह मीठा अंत परम छुपाया।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया। दूजड़े कामन परम फुली हर वर न पाए राम, कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मन मुख आणी अवगुणवंती चूरे, अपना सतगुरु सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए, नानक बिन नावे कामन परम फुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामन जानिया गुर मेल मिलाई राम, अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई, सहजे हर रस चाख्या मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने। सच्चे शब्द सुवाख्या पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके, पेखी मुक्त न पाई नानक बिन भक्ति जग बौराना। सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन आनंद भया।

ना आवे। भगत पाव इहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कहे नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहेला तिन सद सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पखंड सो सो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुकम पछाने। जिन हुकम पछाता हरि केरा सोई सर्व सुख पावे। इव कहे नानक सो बैरागी आम दिन हर लिवलावे। जै जै मन तू तावदा तै तै हर तेरे नाले। मन से आणप छोड़िए।

दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया। अनहद तुन वाजे नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाते, ज्योति ज्योत समाणी।

तिन हथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत परे पंडारा।

रोम रोम रोम में मैं गुरुमुख राम से आए राम, राम नाम से आए पवित्र हुए आए तिस रूप ना रेख्या काए, रामो राम रव्या कट अंतर सब कृष्णा पूख गवाई, मन तन शीतल सिगार सब हुआ गुरुमत।

समाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम। सब अर्था सब कर्म मिले मन चिंदिया को फल पाया राम। मन चिंदिया फल पाया राम नाम से आया राम नाम गुण गाए। दुर्मत कबुद गई सुध होई राम नाम मन लाए। सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम पर गासिया।

नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मिलावे। रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम, सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया

हर हर करता दुख विनाशन पतित पावन हर नाम जियो। हर सेवा पाई परम गत पाई हर उत्तम हर हर काम जियो। हर उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए।

हर हर करता दुख बिनाशन, पतित पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सतगुरु पाए जियो। गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जपते सुनते दुख जाए जियो। हर हर नाम जपिया दुख बिना।

कल युग हर किया पग त्रैक किया पग चौथा चके टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रुत आई हर नाम।

लाए जियो, हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो, सद लेवो सब सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना, हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो, जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो, मन हर हर पाओ।

मन नाम जपाना हर हर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो जग मरण ना पाया निक आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो हर अंतर बाहर हर प्रभ एको इहो जियड़ा रखिया ना जाए जियो क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय जिसकी वस्त सो ले जाए जियो मन मुख करण।

जो जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जम पकड़े ले जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख तो आया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो। हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया जन्म मरण दोवे दुख में ते हर रामे नाम समाया। हर जन

चाखेड़ा चाखेड़ा मैं हर रस मीठा राम, हर रस मीठा मन में बूठा सतगुरु तूठा सहज भया, गृहस्थ आया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए पाग गया, शीतल आघाणे अमृत बाणे साजन संत बसी था, कहो नानक हास्यो मन मान्या।

सारे नमस्कार कर लगे सेवा आचे जाजी आपे मांजी आप स्वामी आप देवा अपना कार्य आप सवारे आते तारन तारे कहो नानक सो कर मैं बैठा सोहे बंक द्वारे नग्न दे नौ निदे मेरे कर में आई राम सब किच मैं सब किच पाया नाम से आई राम नाम से आई सदा सखाई सह सुभाई गोविंदा गलत मिटाई चूकी ताई कदे न व्याप है मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अतरज शोभ बनाई कहो नानक फिर मेरे संगे ता मैं नवनिद पाई सर से अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखारा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता परम गड़ा पाया खजाना बहुत निदाना सांत मेरी आप खड़ा सोई सो ज्ञाना सो प्रदाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जा वल स्वामी ता सर से पाई मीता आता महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम सुर नर मुन जन सहज वखानी राम सहजे वखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जब एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति ज्योत समाणी बिनवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड पागी सत्संगत पाई राम वड पागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापे गुर चरणी लागे परम पौ पागे आप मिटाया पे कर कृपा में ले प्रभ अपने बिछड़ कते न जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर शरणाई आई

सद बलिहारे कर नमस्कारे जिन पेटत प्रभ जाता काट काट रग रहा सब थाई पूरन पुरुष विदाता गुर पूरा पाया नाम ते आया जुए जन्म नहारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरणा तेरे चरण तूड़ बड़ पागी पावा राम हर तूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा दूरे परमेश्वर प्रभु साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुरु शरण करिए अपने प्रभु भावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा इको अंकार सतगुरु प्रसाद हर चरण कमल मन बेदिया किछ आमना मीठा राम राजे मिल संत संगत आरा दिया हर कट कटे डीठा राम राजे हर कट कटे डीठा अमृतो उठा जन्म मरण दुख नाथे गुण निध गाया सब दुख मिटाया हों मैं बिनसी गाथे प्रियो सह सुबाई छोड़ न जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किछ आन न मीठा ज्यो राती जल मछली त्यो राम रस माते राम राजे गुरपुरै उपदेशिया जीवन गत पाते राम राजे जीवन गत स्वामी अंतर जामी आप लिए लड़ लाए हर रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ न कथो जाए प्रभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी ताकि मिटे न दाते जल संगराती माछली नानक हर माते चात्रिक जाचे बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात नीत सबू ते प्यारा राम राजे सबू ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास न बिसरे कबहू गुर शब्दी रंगमानिए प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोह दुख दारा चात्रिक जाचे बूंद ज्यो नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मन ओरथो पूरा राम राजे ताठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे पूरन गुर पाए पूर्व लिखाए सब निज दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तूरा हर मिले नारायण नानका मन ओरथो पूरा आसा महला पंजवा संत कर छेवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक जा को पय कृपाल प्रभ हर हर सही जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों पेटक साथ संगात संत जल दूध न्याई रीत अब दूध आत नहीं मन ऐसी प्रीत हरे अब उर्जो अल कमले बासन माहे मगन इक खिन भी नाहे टरे खिन नाहे टरिये प्रीत हरिये सिगार हगरस अर्पिये जह दूख सुनिये जम पंथ पणिये तह साध संग ना डरपिये कर कीरत गोविंद गुणिये सगल प्राचत दुख हरे कहो नानक छंत गोविंद हर के मन हर्ष्यो निहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर इक खिन भी ना दीरे मन ऐसा निहो करे हो जैसी चात्रिक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे में हो हर प्रीत करी जय इह मन दीजे अपलाये चित मुरारी मान न की जय शरण परी जय दर्शन को बलिहारी गुर सो प्रसन्ने मिल ना विछुन्ने तन देन दी साथ सनेहा कहो नानक छंत अनंत ठाकुर के हर्ष्यों की जय नेहा मन ऐसा निहो करे हो चकवी सूसने हो चितवे आस कणी कल दिनियर देखिए कोकिल अंब प्रीत चवे सुहाविया मन हर रंग कीजिए हर प्रीत करी जय मान न की जय इक राशि के हम पाहुनिया
अज क्या रंग लायो मोर चायो नांगे आवन जावणिया। फिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब कूटस मोह जो किती है कहो नानक छंत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्कुरंक जैसे नाद सुन श्रवणी ही ओ डिवे मन ऐसी प्रीत की जय। जैसी तरुण पुतार उर्जी पिह शिव यो मन लाल दी जय। मन लाल दी जय पोक करी जय हब खुशियां रंग माने फिर अपना पाया रंग लाल बनाया अत मिलियो मित्र चिराने। गुरथी आसाखी ता डिठम आखी फिर जेहा आवर न दिसे कहो नानक छंत दयाल मोहन के मन हर चरण गही जय। ऐसी मन प्रीत की जय आशा मेला पंजवा श्लोक बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाहे नानक पेटे साध जग हर पाया मन माहे छंत। जा को खोजे असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट आराधे ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संजम क्रिया पूजा अनेक शोधन बंदना कर गवन वसुधा तीर्थ मज्जन मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझे आराधते दयाल लाल गोविंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट विषम अवतार शंकर जटातार चाहे तुझे दयार मंथन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रवतनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ते आवे जप किन्नर गुणपनी। कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जा को सेवे लक्ष्मी अनेक पाप गुपत प्रगट जा को अराधे पौन पानी दिन सुरात। नक्षत्र ससियर सूर त्यावे बकद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत पुराण चतुर वेद खट शास्त्र जा को जपात पतित पावन भगत वचल नानक मिलिए संग साथ। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवा तेती न जाय गनी। अवगत अगमत अथा ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्व जाचक एक दाता न दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकी उपमा कित गनी यो दान मान नानक पाए शीश साधे तर चरनी। आसा मेला पंजवा श्लोक उद्दम करो वड पागियो सिमरो हर हर राए। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे दुख दर्द परम जाए। संत नाम जपत गोविंद ने अलसाइए पेट साधु संग जमपुर ने जाइए। दुख दर्द न कहो व्यापे नाम सिमरत सब सुखी सास सास आराध हर हर त्याए सो प्रभु मनमुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाइए नानक प्रेम पे चरण जमपे नाम जपत गोविंद ने अलसाइए। पावन पतित पुनीत नाम निरंजना परम अंधेर बिना

सूर्या अगाध बोध समरथ स्वामी सर्व का पौ पंजना नाम स्वयं पै चरण जम्पै पावन पतित पुनीत नाम निरंजना। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोह आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतित उदरण हर हरे सागर संसार पल उतार नाम सिमरत बहुतरे आद अंत बेअंत खोजे सुनी उदरन संत संग विदे नानक पयम पै चरण जम पै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वत्सल हर बिरद आप बनाया जय जय संत आराधे तै तै प्रगटाया प्रभ आप लिए समाये सह सुभाये भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महा मंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगाश दह दिस एक तह दृष्टाया नाम स्वयं पै चरण जम पै भगत वत्सल हर बिद आप बनाया आशा महला पंजवा फिर संतन सुहाग मरे न जावे जा कै गृह हर नाओ सो सद ही रावे अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सब सदा प्राण पत गत मत जाते प्रिय प्रीत प्रीतम पावे नानक बखाने गुरु बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे न जावे जाको राम पतार का कै अमृत घना सुखवंती सानार सो बापूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बानी प्रह मानी फिर सुहाग का बना नानक वखाने गुरु बचन जाने जाको राम पतार का अनद घना आओ सखी संत पाठ सेवा लागी है पीछो चरण पखार आप त्यागी है तब आप मिटे संताप आपने जनाई है शरण गही जय मान ली जय करे सो सुख पाई है कर दास बासी तज उदासी कर जोर दिन रैन जागी है नानक वखाने गुरु बचन जाने आओ सखी संत पाग सेवा लागी है जाके मस्तक पाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साथ संग पाया साथ संग हर के रंग गोविंद सिमरन लागया परम मोह विकार दूजा सगल तिने त्या गया मन शांत सह स्वभाव उठा अनद मंगल गुण गाया नानक वखाने गुरु बचन जाने जाके मस्तक पाग से सेवा लाया आशा महला पंजवा श्लोक हर हर नाम जतन त्या कछ न कहे जम काल नानक मन तम सुखी होए अंते मिले गोपाल छंत मिलो संतन के संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोर हर हर नाम दे हो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहु न तावो शरण पावो करुणा में प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोर नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कुलहीन व्यापत मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता विनोद आनंद माया अज्ञान तालप पावे किसे जोबन बले जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे पोग सोन प्रमत पार अगमत आयो बहु परदेश पायो अब ओट तारी प्रम मुरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु न हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीख उधारे पगते संसार कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरुष ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ विधाते राम के गुण गावे बसुद कागद बन राज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण शरण आशा महला पंजवा पुरुष पते भगवान ताकि शरण गही
निरपो पै प्राण चिंता सगल लही, मात पिता सुख मीत सुरजन इष्ट बंदक जानिया, गय कंठ लाया गुर मिलाया जस विमल संत वखाणिया, बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु न जाए कही, प्रभ एक अनेक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही, अमृत बन संसार सहाय आप भये, राम नाम उरहार बिक के दिवस गए, गत परम मोह विकार बिन से जोन आमन सब रहे, अगन सागर तय शीतल साध अंचल गह रहे, गोविंद गोपाल दयाल समरथ बोल साधु हर जय जय, नानक नाम त्याय पूरन साध संग पाई परम गते, जय देखो तय संग एको रव रया, कट कट वासी आप विरले किने लया, जल कल मैयल पूरे पूरन कीट हस्त समानिया, आद अंते मत सोई गुर प्रसादी जानिया, ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निर्जन कहा, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नाम कराव रया, जिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग पीत कलमल पाप तरे, दुख पूख दरिद्र नाथे प्रगत मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया, हर देख दर्शन चुपुन्नी कुल संभुआ सब तरे, दिन श्रेण आनंद अंदिन सिमरंत नानक हर हरे, आसा मैला पंजवा छंत कर सतवा इको अंकार सतगुरु प्रसाद श्लोक, शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत चंत, पिन्नी रैनड़िये चमकन तारे जागे संत जना मेरे राम प्यारे, राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरे अंजनो, चरण कमल ध्यान हृदय प्रभ विसरना ही इक्खिनो, तब मान मोह विकार मन का कलमला दुख जारे, बिन हंस नानक सदा जागे हर दास संत प्यारे, मेरी सेजड़ी है अडंबर बनिया मन अनद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखे गामी चाव मंगल रस भरे, अंग संग लागे दुख पागे प्राण मन तन सब हरे, मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग सा शुभ गणिया, बिन हंस नानक मिले श्री पर सगल आनंद रस बनिया, मिल सकिया पुछे कहो कंत निशानी, रस प्रेम परी कछ बोल न जाने, गुण गुण गुपत अपार करते निगम अंत न पावे, भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावे, सगल गुण सो ज्ञान पूरन आपने प्रभ पानी, बिन हंस नानक रंग राती प्रेम सहज समाने, सुख सोए लड़े हर गावन लागे साजन सर से अड़े दुख दुश्मन पागे, सुख सहज सर से हर नाम रहसे प्रभ आप कृपा कारिया, हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया, शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निद प्रभ पागे, बिन हंस नानक शरण स्वामी सदा हर जन पागे, आशा मैला कंजवा उठ वंज बटा उड़िया तै क्या चिर लाया, मोलत कुंडिया कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया करे पाप अमित्या, तन पसम तेरी जमे हेरी काल बकड़े जितया,

मैं अंत जाई पाया, बिन अंत नानक सुख सहज मेला, प्रभु आप बनाया। नरक ना दिखड़िया सिमरत नारायण, जय जय धर्म करे दूत पहे पलायन, परम तीरज सह सुखिए सात संगत हर पजे, पर अनग्रोह राख लीने मोह ममता सब सजे, गय पंथ लाए गुर मिलाए गोविंद जपत अघायण, बिन अंत नानक सिमर स्वामी सगल आस पुजायण। निध सिद्ध चरण गहे ता के हाकारा, सब किछ वश जिसे सो प्रभु असारा, जय पुजाली ने नाम जी ने कर पार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्याप अम्यो हर रस्ता क्या, साध सुंगे नाम रंगे रणजीत वड्डा अखाड़ा, बिन वंश नानक सरन स्वामी बहुर जमना उपारा।

शीशा से संग देखे करणहारा काए पाप समाये, सुकृत की जय नाम लीजे नरक मूल न जाइए, आठ पैर हर नाम सिमरो चले तेरे साथ है, पद साध संगत सदा नानक मिटे दो कमाते, वल वंश कर उधर परे मूर्ख गावारा, सब किस दे रहा हर देवन हारा, दातार सदा दयाल स्वामी काय मनो विसारी है, मिल साध संगे पद्म संगे कुल समूह तारी है, शिव साधिक देव मुंजन भगत नाम आधारा, बिनवंत नान सदा तजिय प्रभ एक करण हारा, खोट न की चई प्रभ परखन हारा, पूर कपट कमाऊंगे।

जल फल मैयल रविया स्वामी ऊंच अगम अपारा बिन वंश नानक टेक जन की चरण कमल आधारा पेट हर संदौरड़ी अब फिर किछु नाही माया रंग जेते से संग न जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन त्रैन संभालिए हर एक बिन कछ अवर नाही पाओ दुतिया जालिए मीत जोबन माल सर्वस प्रभ एक कर मन माही बिन वंश नानक वड पाग पाई है।

कमला प्रमपीत कमला प्रमपीत हे तीक्ष्ण मद विपरीत हे अवध अकार जात गैबर बन कोर हे गृह मूसक मन चोर हे दिन करो अन दिन खास दिन खास जात बिहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रे संग बिन कछ नह गते कुल रूप तूप ज्ञान ही नी कुछ बिना मोहे कौन मात पर जोड़ नानक शरण आयो प्रिय नाथ नर हर करो गात मीना जलहीन हे ओह बिछरत मन तन खीन हे कत जीवन प्रिय बिन होत सन्मुख सहबान हे मृग अर्पे मन तन प्राण हे ओह बेदियो सहज स्रोत प्रिय प्रीत लागी मिल बैरागी खिन रहन त्रिग तंग तिस बिना पलका ना लागे प्रे प्रेम पागे चितवंत अंजन प्रमना श्री रंग राते नाम माते पै परम दुतिया सगल खोत कर मया दया दयाल पूरन हर प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंदावत आप चात्रिक चित प्यास हे तन बूंद बचित्र मन आस हे अल्पीवत बिन सतताप ताता विनाशन दुख नाशन मिल प्रेम मन तन अतना सुंदर चतुर सुजान स्वामी पवन रसना गुणपना गह पूजा लेवो नाम देवो दृष्ट तारत मिटत पाप नानक जम पै पतित पावन हर दर्श ते सतमह संताप चितवो चितनाथ हे रख ले वो शरण अनाथ हे मिल चाओ चाई ले प्राण सुंदर तन ध्यान हे मन लुबद गोपाल ज्ञान हे जाचिक जन राखत मान प्रभ मान पूरन दुख विदीरन सगल इच पुजंतिया हर कंठ लागे दिन सुभागे मिल नहा शेष सुअंतिया प्रभ दुष्ट तारी मिले मुरारी सगल कलमल पहान बिन वंश नानक मेरी आस पूरन।

अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वासलोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे पुण्य यश राज की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चानन होंदिया गुरबिन को रंदार महला पहला नान गुरु न चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिलबु आर ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपड़े पीतन विच सुआ पौड़ी आपी ने आप साजो आपी ने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन जिठो चाहो दाता करता तू तुस देवे करे पसाओ तू जानो ही सब सह दिल ऐसे जिंद कवाओ करे आसन जिठो चाओ श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खन सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद आखें लग करोड़ सच्चे सब कान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नाम सत्यायन सच जो मर जमे सो कच में कच महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सतन्याओ वड्डी वड्याई जाने चल खाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सब भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नान कार न कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास इकना हुक्म समाए लए इकना हुक्मे करे विनाश इकना थाने कड लए इकना माया विच निवास ए पे आख न जाई जे किसे आने रास नान गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना वे तरम बहा लिया ओ कह सच्चे ही सच निबड़े चुन वक कडे जिजमा लिया थाओ ना पायन कूड़ यार मौका ले दो जुक चा लिया तेरे नाय रते से जन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना में कर्म वालिया श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद पेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद सौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडानी विस्माद करती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद पुख विस्माद तोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देख है हाजरा हजूर वेख उड़ान रहा विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार

बाजारी बाजार में आयकड़े बाजार गावे राजे रानिया बोले आल पताल लख क्या के मुंदड़े लख क्या के हार जित तन पाये नाम का सेतन होवे चार ज्ञान न गली टूंडी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाये होर हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करे जे आपनी ता मदरी सतगुरु पाया एहो जियो बहुते जन्म प्रम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचो आप दो आया जिन सचो सच बुझाया श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चन सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नाक मुझसे ज्ञान में होनी खाए गया जमकाल महला पहला वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पाए वेखे लोक हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े तरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सचनाम जाका की आ सकल जहां सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिन्नी रैन जिना मन चाहो सिक्खी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंगाए पार कोलू चरखा चक्की चक फल वारो ले बहुत अनंत लाटू माधानिया अनगा पंखी पौंदिया लैन नसा सूए चार पुलाइए जंत नाम पौंदिया गंत नांत बंधन बंद पुलाए सोए पै किरत नचै सब कोए नच नच हसे चले सिरोए उड़ न जाए सिद्ध न होए नचे कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी नाओ तेरा निरंकार है नाई ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आप गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर कुन्हू नीच सदाइए जे जरवाना पर है जर वेश करेंदी आइए को रह न परिये पाइए श्लोक महला पहला मुसलमाना सिर्फ फरियत पर पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास में कार जोगी सुनते आउन जेते अलख नाम करतार सुखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोष उपजे देने के विचार दे दे मंगे सैसा गुना सो करे संसार चोरा यारा तय कुड़ियारा खारा बावे कार एक होदा खाए चले ऐसाओ तिना बेकाई कार जल फल जिया प्रिया लोहा आकारा आकार ओए जे आखे सोटू है जाने तिना बे तेरी सार नानक पगता पुसलान सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाछार महला पहला मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पई कुम्यार कर पांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार जल जल रो वह बपड़ी चर चर को अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम क्यों विचार है जिन सच्चे सुचित लाया जग जीवन दाता पाया श्लोक महला पहला हौ विच आया हौ विच गया हौ विच जमया हौ विच मोआ हौ विच दिता हौ विच लया हौ विच खटिया हौ विच गया हौ विच सच्यार कूड़ियार हौ विच पाप पुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच होवे हौ विच जाति जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मोख मुक्त की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंतु पाया हौ मैं बूझे तांदर सूझे ज्ञान में होना कर सतलूझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेख है तिहा वेख महला दूजा हौ मैं एहा जात है हौ मैं

भी समाए कृपा करे जे अपनी ता गुरका शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इच्छन जम दुख जाए पौड़ी सेव कीती संतोखी जिन्नी सचो सत्य आया ओनी मंदे पैर न रखियो पर सुकृत कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया स्रो

सेत जहां सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै समाले सबना जिन करते करना किया चिंता वे करनी ता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस दीवान अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या पग महला पहला लख ने किया चंगियाया लख सुना प्रवान लख तप प्रति

कितने प्राण लक्षुरती लग गया उन पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू जिन सच्चो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया।

पड़ पड़ गड्डी लगी है, पड़ पड़ परिये साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते सास, नानक लेख है एक गल होर हो मैं चखना चाक महला पहला। लिख लिख पढ़िया ते ता पढ़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या, बहु पेक किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया, बकर न पहरे एन स्पहरे, मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता, पग पे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई, मूर्ख अंधे पत गवाई, बिन नावे किछ खाए न पाई, रह बिमाणी मरी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस उंदे से ते ने केवल, हों मैं शब्द जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन पाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक करमा बाहरे दर तो न लेनी ताव दे, एक मूल न बुझन अपना अणहोंदा आप गणाए दे, हों ताबी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे, तिन मंगा जीत जैत आए दे,

सब जग चलनहार, पूर मिठा पूर माथ्यो पूर डोबे पूर, नानक बखाने बेनती तुद बाद कूड़ो कूड़ महला पहला। सब तो पर जानिए जा हृदय सचा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हच्छा धोए। सब तो पर जानिए जा फल तरे प्यार, नाओ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार। सब तो पर जानिए जा जुगत जाने जियो, तर्क पाया साध के विच दे करता बियो। सब तो पर जानिए जा सिख सकीले, गया जाने जी की किछ पुन दान करे। सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास, सतगुरु नो पुछ के बहरे करे निवास। सब सबना होए दारू पाप कड्ढे कोए, नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़ी है होए इक मन अलख ते आई है। फल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है, जे हो वे पूर्व लिखिया तां तूड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी से

मूर्त होए नानक पाहे बारा पूरे रंग न सोए पैर खुम चढ़ाइए शर्म पावतन होए नानक पगती जेर पै कूड़े सोए न कोई मेला पहला लब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम लेव सब पूछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान में होनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नच्चे बाजे वावे रूप करे सिगार उच्चे कूके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार कर्मी कर्म करें गावावे मंगे मोख द्वार जटी सदावे जुगत न जाने छड़ में कर बार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत्तरवाना पिछे पाये ता नानक तोलिया जा।

पहला गदी सवज्जग नाम का सच्चा वे कैसोए सबनी चाला मारियां करता करे सो होए अग्गे जाप न जोर है अग्गे जियो नवे जिनकी लेख है पप वह चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खपन से आया ए ना जनता के वश किच नाही तुद वे की जग तो पाया इकना नो तू मेल लै इका को तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया।

जतवस्या तीरांत न जाई लखिया रहाओ। जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सुवालियो जिन की तीसो पार पया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर गया। महला दूजा जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है। खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव दिवाता आत्मा।

गुरु बिन ज्ञान न होए पौड़ी। परवा हो वह गुनेगा ताऊ उमी साधना मारी है, जे हाँ काले कारणा तेवे हो नाव पचारी है, ऐसी कला न खेड़ी है जित दरगह गया हारी है, पढ़िया अत्यो मिया विचार गए विचारी है, मुझ चले सो अगे मारी है। श्लोक महला पहला। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवाओ, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझे ताहे, सत जुग रथ संतोख का कर्म अगे रथवाओ, त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवाओ, द्वापर रथ कपे का सत अगे रथवाओ, कल युग रथ अगन का कूड़ अगे रथवाओ। महला पहला। शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आठ है साथ रहे, सबको सच समावे रिग कह रहा परपूर, राम नाम देवा में सूर नाई ले प्राचित जाहे, नानक तो मुखंतर पाहे।

कर कृपा पार उतारया। श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत धीरज अत मुच ओज आवे आस कर जाहे निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिथक नीवी नानका गुण चंगियाईया तक सब को निवे आप को पर कौ निवे न कोए तारका राजू तोलिए निवे सो गौरा होए अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर गाहे शीश निवाय क्या थी है जान हृदय को सुधे।

सिहाल बिचारंग गलमाला तिलक लीलाटंग दो तो वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग कर्मंग सखो कट निश्चो कर्मंग कहो नानक ने चो त्यावे वे सतगुरु वाट न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावदे राय पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया तां जिसे खरा डरावना कर अवगुण पछोतावना स्वरूप महला पहला दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवत एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो चुके ना मल लगे ना एहो जले न जाए तन सो मानस नान का जो गल चले पाए चौकर मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चरपया वे तगा गया महला पहला। लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन जी नाल तब कपाहो कती है बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुती है पीसर पाई है होर नानक तग न टूटे जे तग होवे जोर महला पहला। नाई मने है पत उपजे साला ही सचूत दरगे अंदर पाई है तग न टूट सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुप पवे निदारी तग न तैरी तग न आखी तग न जेवा तग न आखी वे तगा आपे वत है वर्तागे अवरागत है ले पार करे भी आहो कद कागल दसे राव सुन वेखो लोका इहो विडान मन अंधा ना सुजान पौड़ी। साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए सी हुकम मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो कर।

तो कर लावो गोबर कर न जाए, तोती टिक्का तय जप माली तान मले छा खाई, अंकर पूजा प्रणिक तेबा संयम तुरका भाई, छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जहे करंदा महला पहला, मानस खाने करे निवाज़।

कहो नानक सच त्याई है, सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे देव आईया आपे ही कर्म कराएंदा। वडो वडा वड मेदनी सुरे सुर तंगे लाएंदा, नदर उपठी जे करे सुल्ताना का उतराएंदा। दर मंगन पिख ना पाएंदा, श्लोक महला पहला। जे मुहा का धर्म है कर्म ही पितरी दे, अग्गे वस्यानी।

कर देव कानून। पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित्र, पापी सो संग दया चुका पिया चित, जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस खाए, नानक ए वह जानिए तित मुख थुका पाए।

पंड मुआ पंड पालिय पंड हो वै बंगान, सो क्यों मंदा आखिय जित जम है राजान। पंडो ही पंड उपजय पंडे बाज न कोय, नाम पंडे बाहरा एको सच्चा सोए। जित मुक्सदा सलाही है पावरती चार, नानक ते मुख उजले सच्चे दरबार।

के पाए फिका मूर्ख आखिए पाना लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे तेज बार दुनिया अंदर फैल असर तीरथ जे नाम है उतरे नाही मैल जिन पर अंदर बाहर गुदर के फले संसार तिन ने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नाही किसे केरी बात सच्चे ना दरवाज ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही सहतारी है देखे पीता अपना तर्क ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई

परमा साहेब तुठे जो मिले मेला दूजा, एक नहीं चाकरी जित को खसम न जाए, नानक सेवक काड़िए जैसे ती खसम समाए पौड़ी, नानक अंत न जा अपनी हरता के पारा बार, आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार, इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिशियार, आप कराए करे आप हर कैसे करी पुकार, नानक

ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण परम पादा तो मन सुन समाना। आशा गज साडे तै तै तोतिया तेरे पायन तग गली जिना जप मालिया लोटे हाथ निबग। ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। ऐसे संत ना मौके पावे डाला सो पेदा गटकावे। रहाओ बासन मांझ चरावे।

सूझिया, गुर प्रसाद में सब कुछ सूझिया। आशा इकत पत्थर पर उरकट कुरकट, इकत पत्थर पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी। नकटी को ठंगन बादा दू, किने विवेकी काटी तू राव। सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलिया की हो बहन पान जी, जिन्हें बरी तिस्केरी। हमरो परता बड़ो विवेकी, आपे संत कहावे, ओ हमारे माथे कायम,

पर्वत छाया कछुआ कह अंगार बेलोरो लूकी शब्द सुनाया आशा बटुआ एक बेहतर आधारी एक ओज से द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौद पावे।

का सार हो गनहारे पो गया इस मूरत के मुखचार। मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने ना है, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आशा। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष तक तपना कियो, 30 वर्ष तक देव ना पूजा फिर पछताना विरद भयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर शोक पुजंग बलयो, रहाओ सूखे सरवर पाल बंधावे लूने खेत हथवार करे। आयो चोर तुरंत तें ले गयो मेरी रासत मुग्ध फिरे, चरण शीश पर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे। जेवा बचन शुद्ध नहीं निकसे तबरे कर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिव लावे। लाहा हर हर नाम लियो गुर प्रसादी हर खन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो अंतन कछुए।

मान करारा तहर खवादना की जय रे मन सुकृत कर कर ली जय रे मन रहाओ कुम्हारे एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई काहू में मोती मुक्ताल काहू ब्याद लगाई सू में तन राशन को दिया मुग्ध कहे तन मेरा जम कर दंड मुंड में लागे खिन में करे निवेरा हर जन उत्तम पगत सदावे आज्ञा मन सुख पाई ज्योतिष पावे।

चिरगट फाल चतारा ले गयो तरी तागरी छूटी आशा। हम मस्कीन खुदाई बंदे तुम राज मन पावे, अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ, रोजा तरे निवाज गुजारे। कलमा पिस्त न होई सत्तर का बाकत ही पीतर, जेकर जाने कोई निवाज सोई जो न्याओ विचारे। कलमा अकल है जाने,

की आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्तरी की माटी एक पेट तर नाना तामे ब्रह्म पछाना कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक सो मन माना आशा जगन नगर एक बूंद।

तीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिकल पे संग तेरे इंद्री का बल खाता चरण रहे कर तर्क परे है मुखो न निक्षय बाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने प्रमते थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत तर रमते मृतक पे दसह बंद छूटे मित्र पाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावे जीवत बंधन तोरे आसा इक तुके चौथा सर्पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव छलिया मार मार सर्पनी निर्मल जल कैठी जिन त्रिभवन दशियले गुर प्रसाद जीठी रहाओ सर्पनी सर्पनी क्या कहो भाई जिन साज पछान्या तिन सर्पनी खाई सर्पनी ते आन छूछ नहीं अबरा सर्पनी जीती कहाँ करे जमरा ए सपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई ए बस्ती का बस्त शरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आसा कहाँ सुआम को सिमरत सुनाए कहाँ साकत कह हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है साकत सो पूल नहीं कही है रहाओ कौआ कहाँ कपूर चराए कह विषयर को दूध पियाए सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई पारस परस लोहा कंचन सोई साकत स्वान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत ले ले नीम सिंचाई कह कबीर ओआ को सहज न जाई आशा लंका सा कोट

नवासी चंद सूरज जाके तपतर सोई वैसंतर जाके कपरे तोई गुरमत रामे नाम बसाई अस्थिर रह न कतमु जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आशा पहला

रहाया, दस मास माता उधर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम बीज नहीं बोया, रहाओ बारिक ते बिर्द पया, होना सो होया, जा जम आए चोट पकरे, तब है काहे रोया, जीवने की आस तर है जम निहारे सासा, बाजी गरी संसार कबीरा, चेत टाल पासा, आसा, तन रैनी मन पुनरप कर हूं, पांचों तत बराती, राम राय स्यों पावर ले हो, आत्म तिह रंग राती, गाओ गाओरी दुल्हनी मंगल चारा, मेरे गृह आए राजा राम पुकारा रहाओ, नाभि कमल में बेदी रचने, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दूलो पाया, असबद पाव हमारा, सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट के तीस उजाना, कह कबीर मोह ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, आशा, सास की दुखी ससुर की प्यारी, जेठ के नाम डरो रे, सखी सहेली ननद गहेली, देवर के बिरह जरोरे, मेरी मत गौरी मैं राम बिसारे हो, किन विद रहन रहो रे, से जय रमत नैन नहीं पेखो, ये दुख कासों कहो रे रहाओ, बाप सावका करे लड़ाई, माया सद मतवारी, बड़े भाई कह जब संग होती, तब हो ना प्यारी, कह कबीर पंच को चगरा, चगरत जन्म गवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया, आशा, हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोविंद हृदय हमारे, मेरी जय बाप विष्णु नयन नारायण, हृदय बसे गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बवरे, तब क्या कहस मुकंदा, रहाओ, हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे, कब हूँ न पार उतार चरायो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं काशीक दुल्हा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे कूपत राजे, हर सौ मोर त्याना, आशा, जब जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान, बाबा माँ

कोई आशा जो मैं रूप किए बहुत तेरे अब पुन रूप न होई ताजा तन साज सब पाता राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी कृष्णा गागर फूटी काम चोलना पया है पुराना गया परम सब छूटी सर्वपूत एक है।

तेरा सोच विचार न देखे, खबर न करे दीन के बौरे, ताते जन्म अलेख है रहाओ। साच कतेब बखाने अल्हो, नार पुरख नहीं कोई, पदे गुने नाही कछ गौरे, जो दिल में खबर न होई। अल्हो गैब सगल कट पीतर, हृदय लियो बिचारी, हिंदू तुर्क दोहों में एक है, कह कबीर पुकारी। आशा ते पिता

गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुरुदम दिया दिखाई आशा पहली करूप कुछ आप कुलखनी सहुरह पे ही है बुरी अब की स्वरूप सुझा

रहा कहो कबीर जब लोहरी आई बड़ी का सुहाग टर्यो लोहरी संग पई अब मेरा जेठी और करो आशा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ ले राखियो राम जनिया नाओ इन मुंडियन मेरा कर कुंडरावा।

मरम न जाना, सब जग अंत आयो ताना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरो ताना। तरन आकाश की करज है बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात इक कीनी, तह कांति मन माना। जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सूते सूत मिलाए कोरी आशा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, किस बैकुंठ न जाना। लोक कतीने कछु न होवे।

जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जोनी आवे। मनो कठोर मरे बनारस, नरक में बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्बे, ता सगली सेंतराई। दिन सुन रे वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। कह कबीर नरक से त्यावो, बावरिया संसारा। दिन सुन रे वेद नहीं शास्त्र।

माया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन

आठ पहर अपना खसम के आऊं। सोईने की सुई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आशा साप कुंच के डे दिख नहीं छाडे, उदक माहे जैसे बग त्यान माडे। काहे को की जय त्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना। रहाओ सिंगच पोजने जो नर जाने, ऐसे ही ठग देओ बखाने। नामे के स्वामी लाए ले चगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आशा पार ब्रह्म जे चीन सी, आशा से ना भाव सी। रामा पगते।

पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जान है ताकी के तक आस। मादो अभिव्याहित कीन विवेक दीप मलीन रहाओ,

काल सास अडग लागे कछ न चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तपन तप गुरु ज्ञान भगत जन तय हरन परमानंद करो निदान। आशा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माँ जय दी जय देवा देव रहाओ। संत आचरण संत

रविदास पणे जो जाने सो जान, संत अनंत अंतर नाही। आशा तुम चंदन हम अरिंद बापुरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं, गंध सुगंध निवासा। मादो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेत सपैयल,

चरण अरविंद पान मन पान कर पायो पायो रमैया धन रहाओ संपत विपते पटल माया धन। ताम है मगन होत न

माटी को पुतना कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहो। जब कच पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रस कसे लुभाना।

प्रमत सूर्य को बहुत जन्म दिलाने, तन मन तन नहीं तीरे, लालच दिख काम लुगद राता, मन बिसरे प्रभ हीरे। रहाओ दिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार न जानिया, गुंते पीत बदी अनुपांती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे, दिख फल संच परे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया, ध्यान मान मन एक मये, प्रेम पगत मानी सुख जानिया, त्रिपत अघाने मुकुट भये। ज्योत समाये समानी जाके, अचली प्रभ पहचानिया, तन्ने

आदि माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म पगता में गनिया।

चौक दे कर पहला। तेरा नाम करी चरनाथिया जे मन उरसा होए, करने कुंगू जेर ले कट अंतर पूजा होए। पूजा की चे नाम त्याय बिन नावे पूज न होए रहाओ। बाहर दे पखालिये जे मन तोवे कोए, झूठ लह जियो मांजिए मोख पयाना होए। पशु मिले चंगियाइया।

जित हर प्रीत न पाए, जित कम हर विसरै, दूजे लगे जाए। ऐसा सतगुर सेवियै मना, जित सेवियै गोविंद प्रीत उपजै, अवर विसर सब जाए। हर से की चित दहर है, जरा का पौ न हो वही, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत सो इक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी। आप से ती आप खाया, ता मन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समयी। दिन पागा ऐसा सतगुरु ना पाई है, जे लोचे सब कोय। पूरे की पाल विच्चों निकले, ता सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुरु की क्या ओ सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे। सतगुर का पाना चित करे, सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला की जा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी। हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरखा जाएगी। हर मेरी प्रीत रीत है, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, यहाँ सेव बनी जियो राव। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंधक, हर मेरा भाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है। हर मेरा साथ अंत होए सखाई, हर दिन होर रास पूरी है, चल दिया नाल न जाई। हर मेरा

जाओ। सतगुरु मिले हर मन वसे, सहजे रहे समाए रहाओ। जहाँ पौ पाए अपना बैराग उपजे मन आए, बैराग ते हर पाए हर सू रहे समाए। शिव मुक्त जे मन जिन्हें फिर तात न लागे आए, दसवें

जो तुझ पावे सब सच है, सच्चे रहे समाए। गुजरी महला तीजा तीजा, एको नाम निदान पंडित सुन शिक्षा छोई। दूजे पाए जेता पहे परत गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर सबद सोजी होई। हर रस रसना चाक तू तामन निर्मल होई राव। सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर कृष्णा पूख न होए। नाम निधान पाया पर कर जाय ना कोई। कथनी बदनी जे करे मन मुख बूझ न हो।

सो मूर्ख जो आप ना पछाने सच ना करे प्यार, सच्चे जगत डहकाया कहना कछु न जाए, नानक जो तिस पावे सो करे जो तिसकी रजाए। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद राजू जी महला चौथा चौपले कर पहला, हर के जन सतगुर सतपुरखा हो बिनो करो गुरपास, हम कीरे क्रम सत

मत नाम मेरा प्राण सिखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहा। हर जन केवट पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले त्रिपासे, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखासे, तन तन सत्संगत जित हर रस पाया, मिल नानक नाम प्रगास। गुजरी महला चौथा। गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम, मिल सत्संगत शब्द मन मोह, जप गोविंद गोविंद त्याय, सबको दान दे प्रभ ओ है। मेरे भाई जना मोह को, गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है, गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा, मिल गुर साध संगत जन सो है। रहाओ सुख सागर हर पगत है, गुरमुख कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा, हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रो है। कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विस्ता खाए मुख गो है। अमृत सारे सतगुर सतवादी, जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वड पागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा। हर जन उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोले पर उपकारे, जो जन सुने सर्द

गुरमुख वड़ पागे वड़ पागे, जिन हर हर नाम अधारे, हर हर अमृत हर रस पावे हैं, गुरमत भगत पंडारे, जिन दर्शन सतगुरु सतपुरुष।

नानक जन हर की शरणाई, हर पावे हर निस्तारे, गुजरी महला चौथा। सोवे दयाल मेरा मन लावो, हूँ अंगन राम नाम नित्याई, सब सुख सब गुण सब निधान, हर जित जपिए दुख पुख सब ले जाई। मन मेरे मेरा राम नाम सखा हर पाई, गुरमत राम नाम जस गावा, अंत बेली दर्ज है ले छाई रहाओ। तू आपे दाता प्रभ अंतर जामी, कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर शरणाई। मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नामे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख पावे।

जिन वचन गुरु सतगुरु मन पाया वड पागी गुरु के सिख प्यारे हर निर्वाणी निर्वाण पद पाया सब संगत गुरु की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुरु संगत संग न पाया से पागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभु तारे हर आपके गुरमुख मिले मिलाया जन नानक बोले गुणवाणी गुरबाणी हर नाम समाया गुजरी महला चौथा जिन सतगुरु पुरखे जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड पागी हर नाम से आवे पाई रे मोको कोई आयु मिले हर नाम दृढ़ आवे मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा मेरे हर प्रभु की हर कथा सुनावे रहाओ नीरज तरम गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सोचित लावे अमृत वचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पागहीन मोए मर जावे अनद मूल जग जीवन दाता सब जन को अनद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मिलावे ओंकार सतगुरु प्रसाद गुजरी महला चौथा कर कीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना को संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहो मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को सरदा आप हर लाई विच्चे दुरुस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर्षियों बने आई तब जो किस करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाए सो हम करें जो

पाए ता कारज आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत्संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काश सहरिया रहाओ जनन पिता लोक सुख बनता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाए ठाकुर काहे मन पौ करिया।

संसारी अंतर मेल न उतरे हूँ मैं बिन गुरु बाजी हारी। मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहा। शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुरु मुक्त न को पावे, मन वेखो कर बिचारी। अस सच मज्जन कर स्नाना, ब्रह्म आए थर सारी। अनक सोच करे दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जग आयो, अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेत बुद्ध परदासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख न बिसरो मन।

नवनिध पाई आश्चर्य हर खोका आवो खर्चो कोट न आवे हलत पलत के संगे लाज खजाना गुरु नानक को दिया यो मन हर रंग रंगे। निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा पजो जगदीश रहाओ सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत काकड़ पथ परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे न व्यापे चिंता पावर तुम्हारा यो मन हो वो हर चरणा हो कौला नानक दास उन

आया, कल कलेश मिटे छिन पीतर, नानक सह समाया। गुजरी महला पंजवा। जिस मानुख पे करो बिनंती, सो अपने दुख परया, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, तिन पौ सागर तरया। गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस काटे। रहाओ माया के सन बंग सेन साथ, कित ही कामना आया। हर का दास नीच कुल ऊंचा, किस संग मन बांचत फल पाया। लाख कोट बिखिया के बिंजन, तामे तृष्ण न बूझी, सुमरत नाम कोट उजियारा, बस अगोचर सूझी। फिरत फिरत तुम रे द्वार आया।

सुंदर बाग मंदिर संग न कछु जाया, अवर सब मिथिया लोग लभी गुरपुर दियो हर नामा जी को एहा वस्त सभी रहाओ। इष्ट मीत बंद सुत पाई संग बनता रच हसया, जब अंति

ओ पाणा मिलिया होर सगल कयो बिराना, हैवर गैवर रख संभाहे गौ कर कीने मेरे, जब के होई लामी ताई चले नाही इक पैरे। नाम तन नाम सुख राजा, नाम कुटुंब सहाई, नाम संपत्ति।

तृष्णा जलन बुझाई, नाम निधान सतगुरु दृढ़ाया, दिन सुनावे जाई, हर जप माया बंधन टूटे, ऐ कृपाल दयाल प्रभु मेरे, साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ

नमस्कार। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो, ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को तनी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो, नाम देव त्रिलोचन।

सुई बरंच अर सगल मोन जन जह न सकाए गता। प्राप्ति अगम अगाद कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए बकन कथ रहता रहाओ। आपे पगता आप स्वामी आपन संग रता नानक को प्रभ पूर रहे है एको जतर कथा। गुजरी महला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयो जह जह अवसर आए बनियो है तहां तहां हर के आयो। प्रभ को भगत वचल बिरदायो करे प्रताल बारक की न्याय जन को लाड लडायो रहाओ। जब तप संयम करम तरम हर कीर्तन जन गायो सन परयो नानक ठाकुर की अबे दान सुख पायो। गुजरी महला पंजवा दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजे टीला संत सेवा कर पावनी लाये त्याग मान हथीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो ही रह के संगे एक मोयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरते मन होत आनंदा

कहूँ नानक तिस गुर बलिहार, जिन सबका किया उधार, गुजरी मैला पंजवा। मात पिता पाई सुत बंदत, तिनका बल है थोरा, अनक रंग माया के पेखे, किछ साथ न चाले पोरा। ठाकुर तुझ बिन आहे न मोरा, मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही, मैं आयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे, इहां उहां तुम्हारा जोरा, साध संग नानक दर्श पायो, बिनस्यो सगल ने होरा। गुजरी मैला पंजवा। आल जाल प्रम मोह तजावे, प्रभ से ती रंग लाए, मन को इह उपदेश दृढ़ावे, सहज सहज गुण गाए। साजन ऐसो संत सहाय, जिस पेटे टूटे माया बंद, बिसर न कभू जाई राव। कर

पूरे मेरे सतगुरु मन शरण तुम्हारे परी अचेत्या ने बारक नानक हम तुम राखो तार करे। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माहे चरण कमल रिद माहे समाये तह परम अंधेरा नाहे ठाकुर जा सिमरा तू ताहे कर कृपा सर्व प्रत पालक प्रभु को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समारो तुम ही कहो प्रभु आही नानक टेक पई करते की और आस बिदानी लाही।

ओर चुत चुत वो हर रसन अरादो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर बिनो करो कर जोर नाम जपे नानक दा।

कपटे अनेक जुगत कर कायो विसरत प्रभु केते दुख गनिए महामोनी खायो करो अनग्रो स्वामी मेरे गनो न मोहे कमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्योहार मिथ्या पाज सदा भगवान।

सब रहया सोए कोट जतन उपाव मिथ्या कछ न आवे काम शरण साधु निर्मला गत होए प्रभु के नाम अगम दयाल।

तू समरथ शरण को दाता दुख पंजन सुख राय जाय कलेश मिटे तय परमा निर्मल गुण प्रभु गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाओ रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वड्डे पाग लिवलागी कवल प्रगास पए साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ

योगी काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस्माया मन तत अविजत त्याया गुर प्रसादी पाया ज्ञान ज्ञान सब दात तकियले सेत बरन सब दूता ब्रह्म कमल मद ता।

बित्तज अमृत पियाया, गुजरी मैला पहला। कवन कवन जाचे प्रभु दाते, ताके अंत न परे सुमार। जैसी पूख होए अब अंतर, तू समरथ सच देवनहार। ऐ जी जब तप संयम सच आधार, हर हर नाम दी।

जल थल तरण जगन तह नाही आपू आप किया करतार। ना पद माया मगर न छाया ना सूरज चंद ना जोत अपार सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर एका नदर सो त्रिगुण सार। पवन पानी अगन तिनकिया ब्रह्मा विष्ण महेश आकार सर्वे जाचक तू प्रभ दाता दात करे अपने विचार। कोट के तिस जाचे प्रभ नायक दिन दे तोट नाही पंडार कुंडे पांडे कछ ना समावे सीधे अमृत परे निहार।

चुकलाई गुर प्रसादी हर प्रभ जाके ऐसी नाम बढ़ाई रहाओ। है जी बहुते पेट करें पिछिया को केते उधर परन कहताएं बिन हर पगत।

सोग बिजोग विसर्जत रोग। पाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की, सतगुरु वाक हृदय हर निर्मले, ना जम कान ना जम की बाकी रहा, हर गुण रसन रवे प्रभ संगे, ज्योतिष पावे।

भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सर।

संतं गुरु शब्द हर रमणं मत तत ज्ञानं कल्याण निधानं हर नाम मन रमणं चल चित वित ब्रह्मा प्रमं जग मोह मगन हितं फिर नाम भगत दिलं मति गुरुवाक शब्द रतं परमात परम न चूकई जग जन्म व्याध।

पज शरण सतगुर उबरे हर नाम रिद रमन गुरमत निर्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं ते पाए

भगत न होई, जीवत मरे ता शब्द विचारे ता सच पावे कोई। माया के अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत विचारी, गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी।

हर दिन जियरा रह न सके ज्यो बालक खीर अधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाये अपने सतगुर के बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाये जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनक सनंदन नारद मुन सेवे अन दिन जप

जोत मुरारी सब जाचक तू एको दाता मांगे हाथ पसारी भगत जना की उत्तम वाणी गावे अकथ कथा नित न्यारी सफल जन्म पया तिन केरा आप सरे कुलतारी मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे जिन अंतर मोह गुबारी संत जना की कथा ना पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मल तोवे ओ मल पख माया तारी संत जना की निंदा व्यापे ना उर्वार न पारी यो परपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी हर एक को सूत वरते जुग अंतर सूत खिंचे एकंकारी रसन रसन रस गावे हर गुण रसना हर रस तारी नानक हर बिन अव

जा। एहो जगत ममता मुआ जीवन की विद नाहे, गुर कै पाणे जो चले ता जीवन पदवी पाहे। ओए सदा सदा जन जीवते जो हर चरणी चित लाहे, नानक नदरी मन वसै गुरमुख सह समाए। महला तीजा। अंदर सहसा दुख है आपे सिर तंदे मार, दूजे पाए सुते कभे न जागे माया मोह प्यार। नाम ना चेते शब्द ना विचारे क्यों मन मुक्का आचार, हर नाम न पाया जन्म बिरथा गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। अपना आप उपायन तदो होर न कोई, मता मसूरत आप करे जो करे सो होई। तदो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई, तदो आपे आप निरंकार है ना ओपत होई। जो तिस पावे तिवे करे तिस बिन अवर न कोई। श्लोक महला तीजा। साहिब मेरा सदा है दिसे शब्द कमाए, ओ औहाणी कदे नाहे ना आवे ना जाए। सदा सदा सो सेवी है जो सब में रह समाए, अवर न दूजा क्यों सेवी है जम्मे ते मर जाए। नेफल तिन का जीविया जे खसम ना जाने, अपना अवरी को चितलाए। नानक एव न जापई करता केती दे सजाए। महला तीजा। सच्चा नाम त्याई है सबो वरते सच, नानक हुकम बुझ परवान होए ता फल पावे सच। कथनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल न बुझई, अंधा कच निकच पौड़ी। संजोग विजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया, हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मिलाया। ज्योति हूँ सब चानना सतगुर शब्द सुनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया। माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया। श्लोक महला तीजा। सो जप सो तप जे सतगुर पावे, सतगुर के पावे।

माया मोह अज्ञान है बिखम अत पारी, पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी, अन दिन पगति रत्या हर पार उतारी, गुर शब्दी मन निर्मला हो मैं छड विकारी, हर हर नाम त्याई है हर हर निस्तारी। श्लोक कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा राई दसवें पाए, मन तो मैं गल हुई रहा निक्षा क्यों कर जाए।

जल मोई कंत न लायो पाओ, नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी। सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता, उपाय किते न पाये हर कर्म विदाता। गुर शब्दी हर मन वसे, हर सहजे जाता, अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता।

छड़ जाए, केसनो कूड़ बोल के खवा लिए, जे चल दिया नाल न जाए। काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हों ता माया मोहया फिर आवा जाए। नानक हुकम ना जातो खसम का, जी रहा सच समाए। महला तीजा, एको ने चल नाम तन, होर तन आवे जाए। इस तन को तस्कर जोए न सके, ना ओ चक्का ले जाए। के ओ हर तन जी ऐसे

जिना नाम तन खटिया आए पौड़ी। मेरा साहिब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसके वस है सब तिसका चीरा। गुरु प्रसादी पाई नेचल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसे पेटे गुरसूरा। गुणवंती सलाया सदा थिर नेचल हर पूरा। श्लोक महला तीजा। त्रिग तिना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुखों में पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावे, अंत गए पछताए। गुर प्रसादी को नाम त्याए, तिस होमे विच्चों जाए। नानक जिस पूर्व होवे लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए। महला तीजा। मनमुख ऊदा कौल है, ना तिस भगत ना नाओ। शक्ति अंदर वर्तदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चितना पिजई मुख फीका लाओ। ओए तरम रलाए।

हर सुख दाता मन वसै। हों मैं जाय गुमान नानक नदरी पाई है, ता अंदिन लागे ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन सहजे जीता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है इको हर मिता, श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जे अंदिन हर लिवलाए।

समाए। नानक तिसनो मिलिया सदा सुख पाई, जे अंदिन हर नाम त्याय महला तीजा। अंतर कपट मन मुख अज्ञानी, रसना झूठ बुलाए। कपट कीते हर पुरख न पीजे, नित वेखे सुने सुवाए। दूजे पाए जाए जग प्रबोधे, बिख माया मोह सुवाए। इत कमाणे सदा दुख पावे, जम्मे मरे फिर आवे जाए। सहसा मूल न चुकई, विच विष्टा पचे पचाए। जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी, तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम त्यावे हर नामो गावे, हर नामो अंत छड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुक्म मनायोन ते पूरे संसार, साहिब सेवन अपना पूरे शब्द विचार। हर की सेवा चाकरी सच्चे शब्द प्यार, हर का महल तिन्नी पाया जिन्हो मैं विचो मार। नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उरधार। श्लोक महला तीजा। गुरमुख त्यान सहज तुन उपजे, सच नाम चित लाया। गुरमुख अंदिन रहे रंग राता, हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेखे गुरमुख हर बोले, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवे तुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम त्याया।

लपटा है गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारण हर नाम है गुरमुख पाया जाए महला तीजा इहो मन केतड़े।

सुर मिले अस्थिर रह समाए। नानक मन ही ते मन मानिया ना किछ मरे न जाए पौड़ी। काया कोट अपार है मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहा आपे रस होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे हर करे सो होगी। हर गुरुमुख नाम ते आई है लह जाहे विजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह।

नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया करम प्राप्त होए मैला तीजा। वाह वाह करती रसना सबद सुहाई पूरे सबद प्रभ मिल्याई वड पागिया वाहो वाहो मोह कढाई। वाहो वाहो करें सही जन सोने तिनको प्रजा पूजने आई। वाहो वाहो करम प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी। वज्र कपाट काया गढ़ पीतर कूड़ कुसत अभिमानी परम फूले नदर ना आवनी मनमुख अंध अज्ञानी उपाय कित न लबनी कर पेख थके पेखवानी। गुर शब्दी खोलायन हर नाम जपानी हर जियो अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह करत्या रहन सुख विहाय वाह वाह करत्या सदा आनंद होवे मेरी माए। वाह वाह करत्या हर्ष्यो लिवलाए वाह वाह करमी बोले बोलाए। वाह वाह करत्या शोभा पाए नानक वाह वाह सत।

कौ जात ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रस ना चखियो फीका बोलाता जिना गुरमुख अमृत चाखिया से जन तृप्ताता श्लोक महला तीजा।

जे सतगुरु दिया दिखाए महला तीजा, वाह वाह गुरमुख सदा करें, मनमुख मरे बिख खाए, ओना वाह वाह ना पावे दुखे दुख विहाए, गुरमुख अमृत पीवना वाह वाह करें लिब लाए, नानक वाह वाह करें से जन निर्मले, त्रिभवन सोजी पाए पौड़ी, हर कै पाणे गुर मिले सेवा भगत बनी जाय, हर कै पाणे हर मन वसे सहजे रस पी जाय, हर कै पाणे सुख पाइये हर लाहा नित ली जाय, हर कै तख्त बहालिये निज कर सदा वसी जाय, हर का पाणा तिन्नी मन्या जिना गुरु मिली जाय, श्लोक महला तीजा। वाह वाह से जन सदा करें जिनको आपे दे बुझाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे हों मैं विच्चों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करें से जन सोहने हर तिन के संग मिलाए।

पचमोए अजाने। श्लोक महला तीजा। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर न कोए। वाहो वाहो अगम अथाओ है वाहो वाहो सच्चा सोए। वाहो वाहो वे परवाओ है वाहो वाहो करे सोए। वाहो वाहो अमृत नाम है गुरमुख पावे कोए। वाहो वाहो कर्मी पाई है आप दया कर दे। नानक वाहो वाहो गुरमुख पाई है आन दिन नाम ले महला तीजा।

तर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए, जम्मण मरण न चुके हो मैं विच दुख पाए। जिना सतगुरु से चित लाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब न हो वही ना ओए दुख सहाए। नानक गुरुमुख उबरे सच्चे सबल समाए।

टाडी दर कर पाए सी सच रखे उतार, टाडी का महल अगला हर कहना है प्यार, टाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार। श्लोक महला तीजा, गुजरी जात गवार जा सो पाए अपना, गुर कै शब्द विचार अन दिन हर जप जापना, जिस सतगुरु मिले तिस तौ पवे सा कुलवंती नार, सा हुकुम पछाणे कंत का जिसनो कृपा की ती करतार, ओ कुचजी कुलखणी पर हर छोड़ी पतार, पै पय मल कटिय निर्मल हो वै शरीर, अंतर प्रगास मत उत्तम हो वै हर जप गुणी गहीर, पै विच बैसे पै रहे पै विच कमावे कार, कैथे सुख वड्याईयां दरगें।

पौड़ी अंसा अवतार उपायन पाओ दूजा किया ज्यो राजे राज कमाव दे दुख सुख पिड़िया ईश्वर ब्रह्मा सेव दे अंत तिनी ना लहिया निर्भो निरंकार अलख है गुरमुख प्रगटैया तिथे सोग विजोग ना व्यापई अस्थिर जगतिया। श्लोक महला तीजा। एहो सब किछ आवन जान है जेता है आकार जिन एहो लेखा लिखिया सो हो आप परवान नानक जे को आप गणाईदा सो मूरख गावार। महला तीजा। मन कुंचर पीलक गुरु ज्ञान कुंडा जह खिंचे तह जाए नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया अमृत हर का नाम सदा ते आया संत जना के संग दुख मिटाया नानक पै अचिंत हर तन ने चलाया। श्लोक महला तीजा। खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णो महल पगती कर सरे सज्जन पाहुण्यो बरसना ता बरसकना बहुड़ बरसे काहे नानक तिन बलिहारण जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा। मिठा सो जो पावदा सज्जन सो जे रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई तू रखवाला सदा सदा हों तुद त्याई जी जंत सब तेरिया तू रहा समाई जो दास तेरे की निंदा करे तिस्मार पचाई चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा। आशा करता जग मुआ आशा मरे न जाए नानक आशा पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा। आशा मनसा मर जाए सी जिन कीती सो ले जाए नानक ने चल को नहीं बाजो हर कहनाए पौड़ी आपे जग तो पायन कर पूरा थाट आपे साओ आपे वनजारा आपे ही हर हाट आपे सागर आपे बोयता आपे ही खेवाट आपे गुर चेला है आपे आपे दस

आराधना जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सतगुर देखना श्रवणी सुनना गुरु नाओ सतगुर से तीरतिया दर्जे पाये ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वस दे जग में उत्तम काडिये विरले के ही के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन सात जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन्ने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए पौड़ी अकुल निरंजन पुरख अगम अपारी है सच्चो सच्चा सच सच निहारी है कूड़ न जापे किछ तेरी तारी है सबसे दे दातार जेत उपारी है इकत सूत परोए जोत संजारी है हुक्मे पवजल मंज हुक्मे तारी है प्रभ जियो तुद त्याए सोए जिस पाग मथारी है तेरी गत मित लकी ना जाए हों तुद बलिहारी है। श्लोक महला पंजवा जा तू तुसे मेरवान अचिंत वसे मन माहे जा तू तुसे मेरवान नौ निद कर्म है पाहे जा तू तुसे मेरवान ता गुर का मंत्र कमाए जा तू तुसे मेरवान ता नानक सच समाहे। महला पंजवा किती बहन बहने मुच बजाएं वाज नानक सच्चे नाम बिन किसे न रहिया लज। पौड़ी तुद त्यायन बेद कते बां सन खड़े गणती गणी न जाए तेरे दर पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना शंकर विष्णु अवतार हर जस मुख पणा पीर पिकाबर शेख मसायक औलिए ओत पोत निरंकार कट कट मौलिए।

पहला पन्नवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मन तन रता मूल नानक जो प्रभ पानिया मरो विचारी सूल। पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर चोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प तर पूजो गुर के पैर दुर्मत जाए जर सात जना कै संग पव जल बिखम तर सेवो सत गुरुदेव अगे न मरो डर हिन मैं करे निहाल ऊने सुवर भर मन को होए संतोख त्याय सदा हर सो लगा सत गुर सेव जा को कर्म तुर। श्लोक महला पंजवा लगड़ी सुथान जोड़न हार है जोड़िया नानक लहरी लख सह आन डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन पिहाव लहिक साथी लदम दुख हरता हर नामा बल बल जाई संत प्यारे नानक पूरन कामा। पौड़ी पायन सब निधान तेरे रंग रत्या ना होवी पछोताओ तुदनो जपत्या पहुंच न सके कोई तेरी टेक जन गुर पूरे वाओ वाओ सुख लहा चितार मन गुर पै सिफत पंडार करमी पाये सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताये रखे आप दयाल कर दासा अपने हर हर हर हर।

तेंदे सिमरन हब किछ लद्दम बिखम ना डिठम कोई जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मेट ना सके कोई पौड़ी होवे सुख कणा दे त्याए वन्ये रोगा कान हर गुण गाए अंदर वरते ठांड प्रभ चित आए पूरन होवे आस नाए मन बसाए कोई न लगे विघन आप गवाए ज्ञान पदार्थ मत गुरते पाए तिन पाए सभ्य थोक जिस आप दिवाए तू सबना का खसम सब तेरी छाए। श्लोक महला पंजवा। नदी तरंदड़ी मैंडा खोज न खुंबे मंज मुहब्बत तेरी कौसे चरणी मैंडा हीड़ा सीतम हर नानक तुल्हा बेड़ी। महला पंजवा। जिना दिसंदड़िया दुर्मत बंजे मित्र असाडड़े से हौ टूडे दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिये मैल साथ संग उठिया जन्म मरण पौ कटिये जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस्यों लाइन रंग जिस दी सब तारिया ऊंची हूँ ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा। बार विडानले हुमस तुमस कूका पैया राही कौसे सेती लगड़ी डोरी नानक अनद सेती बन गाही। महला पंजवा। सच्ची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग ना की चई नानक जिना अपना सुआओ। पौड़ी। सावेला परवान जिस सतगुर पेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया नेचर थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए त्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिए जाप जे मुखों बोलेटिया हुक्मे बुझ निहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ न खोटिया। श्लोक महला पंजवा। विछोहे जंबूर खवे ना मंजन गाखड़े जेसो तनी मिलन नानक सुख संभू सच। महला पंजवा। जिमी वसंदी पानी है ईदन रखे पाए नानक सो सो आहे जाके आडल हब को। पौड़ी। तेरे कीते कम तुदे ही गोचरे सोई वरते जग जे किया तुद तुरे बिस्म पे बिस्माद देख कुदरत तेरिया शरण परे तेरी दास करगत होए मेरिया तेरे हाथ निधान पावे तिस दे जिसनो होए दयाल हर नाम से ले अगम अगोचर बेअंत अंत न पाये जिसनो हो है कृपाल सो नाम ते आई है। श्लोक महला पंजवा। कड़छिया फिरन सुआव ना जान सुनिया से मुख दिसन नानक रते प्रेम रस। महला पंजवा। खोजी लदम खोज छड़िया उजाड़ तैसे दिती वाड़ नानक खेत न छिजई। पौड़ी। आरा दियो सच्चा सोए सब किछ जिस पास दोहा सिरिया खसम आप खिन में करे रास त्यागो सगल उपाव तिसकी ओट गहो पौ शरणाई पज सुखी हो सुख लहो कर्म कर्म तत् ज्ञान संता संग होए जपिए अमृत नाम बिघन न लगे कोए जिसनो आप दयाल तिस मन उठिया पायन सब निधान साहिब तुठिया। श्लोक महला पंजवा। लदम लबन हार कर्म करन दो मापिरी इको सिरजन हार नानक बिया ना पसी है। महला पंजवा। पापड़िया पछाड़ बाण सचावा सन कै गुर मंत्रड़ा चितार नानक दुख न थी वही। पौड़ी। वाह वाह सिरजन हार पायन ठाड आप जी जंत मेरवान तिसनो सदा जाप दया तारी समरथ चुके बिल बिलाप नठे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियन अपनी रख गरीब निवाज थाप
आपे लयन छाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख त्राप वड्डी हूं वड्डा अपार खसम जिस लेप न पुन पाप। श्लोक महला पंजवा। जाको पै कृपाल प्रभ हर हर से जपात नानक प्रीत लगी तिन राम स्यों तेटत साध संगात। महला पंजवा। राम रमो बड़ पागियो जल थल महियल सोए नानक नाम अराध्य है बिघन न लागे कोए पौड़ी। पगता का बोलिया परवान है दरगे पवै थाए पगता तेरी टेक रते सच नाए जिसनों होए कृपाल तिसका दुख जाए। पगत तेरे दयाल ऊ ना मेहर पाए दुख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए। पगता एहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको इक त्याए पीवत अमृत नाम जन नामे रहे अगाए। श्लोक महला पंजवा। कोट बिघन तिस लागते जिसनों विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यों सुन्ये कर काओ। महला पंजवा। प्री मिलावा जाथी है साई सुहावी रुत कड़ी मोहत ने विसरै नानक रविय नित पौड़ी। सूर वीर वरी आम किने न होड़ी है फौज स्थानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी औ दूत देन चमोड़ी है जिन जिन लैन रलाए एहो ए ना लोड़ी है त्रै गुण इन कै वस किने ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपुरा आराद बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगे दिन रात रहा कर जोड़ी है। श्लोक महला पंजवा। किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कलेसा उपजे नानक बिसरै नाओ। महला पंजवा। नानक सतगुर पेटे पूरी होवे जुगत हसंदियां खेलंदियां पैनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त पौड़ी। सो सतगुर तन तन जिन परम गर तोड़िया सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया नाम निधान अखुट गुर दे दारुओ महारोग विकराल तिने बिदारुओ पाया नाम निधान बहुत खजानिया जिता जन्म अपार आप पछानिया महिमा कही न जाए गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव। श्लोक महला पंजवा। उद्दम करेंदिया जियो तू कमाउंदिया सुख पुंच त्याइंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डर पिए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार सब किछ तिस कै वस ना कोई बारा सो पगता मन बुठा सच समाहरा तेरे दास ते आयन तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया। श्लोक महला पंजवा। काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा। खांदिया खांदिया मोह कटा पैनंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों होना जय जय रखे आप तह जाए खड़ोवना नाम तेरे कै रंग दुर्मत तोवना जप जप तुद निरंकार परम पौखोवना जो तेरे रंग रखते से जोन ना जोवना अंतर बाहर इक नैन अलोवना जिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना नाओ नानक बख्शीस मन माहे परोवना। श्लोक महला पंजवा। जीवन दिया ना चेत्यो मुआ रलंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया साकत मूड नपाक। महला पंजवा। जीवन दिया हर चेत्या मरन दिया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी। आप जुगादी आप रखन वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊना कही ना होए कट्टे कट सारिया
मेहरवान समरथ आपे ही कालिया, जिन मन उठा आपसे सदा सुखा लिया, आपे रचन रचाए आपे ही पालिया, सब किस आपे आप बेअंत अपारिया, गुरपुरे की टेक नानक समालिया। श्लोक महला पंजवा। आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया, सतगुरु दिता हर नाम अमृत चखिया, सादा संग अपार अंदिन हर गुण रवे, पाए मनोरथ सब जोनी न पवे, सब किच करते हथ कारण जो करे, नानक मंगे दान संता तूर तरे। महला पंजवा। तिसनो मन वसाए जिन उपाया, जिन जनते आया कसम तिन सुख पाया, सफल जन्म परवान गुरुमुख आया, हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया, जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया, जो जो दिता खसम सोई सुख पाया, नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित, जिसे पुलाए आप मर मर जमे नित। पौड़ी। निंदक मारे तत्काल खिन टिकन न दिते, प्रभ दास का दुख ना खब सके, हर जोनी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते, दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते, कंठ लाए दास रखियन नानक हर सते। श्लोक महला पंजवा। राम

मुख तब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने होई है। फाटे नाकट टूटे कादन कोदो को पुस्थई है। रहाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनिक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो इहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बेही है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछताई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे कबीर की माई। ए बारक कैसे जीवे रघुराई। तनना बुनना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख लियो शरीर रहाओ। जब लग तागा बाहो बेई तब लग बिसरे राम सिनेही।

सतगुरु प्रसाद। जो राज दे ता कमन बढ़ाई, जो पीख मंगावे ता क्या कट जाई। तू हर पज मन मेरे पद निर्बान, बौर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब ते उपाई परम पुलाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई, जिस तू देवे तिसे बुझाई। सतगुरु मिले।

मले ना लाछे पार मलो परमलियो बैठो री आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कहे किन बूजिए रमैया आकुल री बाई रहाओ जो आकाश है पंखियलो खोज निरखियो ना जाई जो जल माजे माछलो मार्ग पेखनो ना जाई जो आकाश है कड़ुअलो मृग तृष्णा परया नामे चे स्वामी बीठलो जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे करती जा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। दूध तं बचरे थनो बिटारियो फूल पवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा कहा ले चरावो और ना फूल अनूप ना पावो रहाओ मैलागर बेरे है पयंगा बिक अमृत बसे इक संगा तूप दीप नई बेदें बासा कैसे पूज करें तेरी दासा।

अंतरमल निर्मल नहीं कीना बार पे खुदासी हृदय कमल कट ब्रह्म न चीना काहे पया सन्यासी।

पाणी लख चौरासी जिन उपाई सो सिमरो निर्वाणी काय कमंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे सर्प जोन वल वल अवतरे।

बद तिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वाके हृदय बसे। गुजरी श्री जय देव जियो का पदा कर चौथा इको अंकार। सतगुरु प्रसाद परमाद पुरख मनोपिम सत आद पावरतं परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं नादनोत जस समरणेन जन्म जराद मरण पयं रहाओ इच्छस जमाद पराभयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव पूत पाव समभ्यं परमं प्रसन्न मिदं लोबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोकृत दुर्मति पज चक्र तर शरणं हर भगत निज ने केवला हृद कर्मणा।

लकड़ी मदरी ठाकुर पाई ओ सुंदर हर कुल मिली। एको प्रयो सखियां सब तरह की जो पावे पुरसा बली। नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे कित रहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू ले राती। हर प्रेम पीनी चोली है रहा हो फिरो दीवानी आवल बावल किस कारण हर टोली है। कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम किसकी गुलगोली है। सतगुरु पुरख मनावो अपना हर अमृत पी चोली है। गुरु प्रसाद

पावे बुरा कहो हम तन दियो है तार। जो आओ शरण ठाकुर प्रभ तुमरी किस राखो कृपा थार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों किस बलिहारी। देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मुरारी रहाओ। तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिले जुठारी। हमरे जिए होर मुख होर हो तो है हम कर्म ही कूड़ियारी। हमरी मुदर नाम हर स्वामी रुद अंतर दुष्ट दुष्टारी। जो पावे क्यों राखो स्वामी जन नाम शरण तुम्हारी। देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नट्टी। जो बेसुआ के कर पूत जमत है किस नाम परयो है कपटी रहाओ। जिनका हृदय नाम हर स्वामी ते बिगड़ रूप बिनरक्ती। जो निगुरा बहु बाता जाने ओह हर दरगे है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिना साध जना पग चक्ती। नानक पतित पवित मिल संगत गुर सतगुर पाछे चुकती। छक्का पहला देव गंधारी महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चितलाई है प्रभ होए कृपाल कमल प्रगासे। सदा सदा हर त्याई है रहाओ अंतर एको बार एको सब में एक समाई है। काट अब घट गया सब खाई हर पूरन ब्रह्म दिखाई है। पुस्तक करे सेवक मुन के तेरा अंत ना कतहू पाई है। सुख दाते दुख पंजन स्वामी जन नाम सद बल जाये। देव गंधारी माई होन हार सो होई है। राज रहो रचना प्रभ अपनी कहां लाभ कहां खोई है रहो। कै फूले आनंद बिखे सोग कब हसनो कब रोई है। कब हूँ मैं परे अभिमानी कब साधु संग तोई है। कोई न मेटे प्रभ का किया दूसर नानी अलोई है। कहो नानक किस गुर बलिहारी जिन पर साग सुख सोई है। देव गंधारी माई सुनत सोच पै डरत। मेर ते तजो अभिमाना शरण स्वामी की परत रहाओ। जो जो कहे सोई पल मानो नाही ना का बोल करत। निमुख न बिसरो हिये मोरे ते बिसरत जाई हों मरत। सुखदाई पूरन प्रभ करता।

पूरे मनोरथ साध संग तद लभू देव गंधारी मन जो अपने प्रभ पावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बुलावो रहाओ अंत अडंबर माया के बिरते तासो प्रीत कटावो जो अपनो स्वामी सुख माने तामे शोभा पावो दासन दास रे दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बढ़ियाई नानक जीवो मुखो बुलावो देव गंधारी प्रभु जी तो प्रसाद परम धार्यो तुमरी कृपा ते सबको अपना मन में यह विचार्यो रहाओ कोट पराध मिटे तेरी सेवा दर्शन दुख उतार्यो नाम जपत महासुख पार्यो चिंता रोग विदार्यो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग विसार्यो माया बंद काटे कृपा निध नानक आप उधार्यो देव नारी मन सगल स्यानक रही कर्म कराउन हार स्वामी नानक कोट गही रहाओ आप मेक पय शरणाई इह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही जान प्रवीण स्वामी प्रभु मेरे शरण कुमारी अही खिन में खाप उठापन हारे कुदरत कीम न पही देव नारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुरु प्रसाद पाहुं जाते रहाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल न खाते रंग तुम्हारे लाल पे है राम नाम रसमाते महाकिल्बित कोट दोत रोगा प्रभु दिष्ट तुम्हारी हाते सोत जाग हर हर हर गाया नानक गुरु चरण पराते देव गंगा

तेरा संती काटिया जीव दान गुर देनी कर कृपा कर लीनो अपना जलते शीतल होनी तरम तरम किस उपज ना आयो नह उपजी निर्मल करनी छाण सियानक संजम नानक लागो गुर की चरणी देव गंदारी महला पंजवा हर राम नाम जप लाहा गत पावे सुख सहज आनंदा काटे जम के पाहा रहाओ खोजत खोजत खोज बिचारो हर संत जना पह आहा तिना प्राप्त एव निधाना जिनके कर्म लिखा से बड़ पागी से पतवंते से ही पूरे साहा सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक जिन हर हर नाम विसाहा देवनारी महला पंजवा मन के अंकार अपारा दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर जो दिशा सोचारा रहा।

आंधे गोंग पिंगल मत हीना प्रभ राखो राखन हारा तरह करावन हार समरथा क्या नानक जंत विचारा देव गंधारी महला पंजा सो प्रभ नेरे हूते नेरे सिमरत आए गाए गुण गोविंद दिन रैन सांझ सवेरे रहाओ उदर दे दुलभ साधु संग हर हर नाम जपे रे करी न मोहत न चसा विलंब हो काल नित हेरे अंध बिलाते का

देवगंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा निज जाको उपजी छोड़ न कतहु जाता रहो बैठ तो हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अब सब तीरथ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सफल जन्म हर जन का उपजिया जिनकीनो सौत विदाता सगल समूह लय उदरे नानक पूरन ब्रह्म पछाता देवगंधारी महला पंजवा माई गुरु बिन ज्ञान न पाई है अनेक प्रकार फिरत बिल्लाते मिलत नहीं गोसाई रहाओ मोह रोग सोग तन बांधियो बहु जोनी परमाई है टिक न पावे बिन सत्संगत किस आगे जाए रुआई है करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट कोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है देवगंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ दो कर जोर करी बेनंती पार ब्रह्म मन से आया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उधार इको अंकार सतगुर प्रसाद देवगंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख पंजन मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा गुण अवगुण सब सया कर मस्तक तार साध निवाजे मोहे दुष्ट जो खया परोपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कहो नानक निर्गुण को दाता चरण कमल उर्धरया देवगंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे शरण आयो राखन हारे रहाओ सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछे अंति वारे जब चितो तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साथ दरसारे मन में राखो एक असारे नानक प्रभ मेरे करने हारे देवगंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोहि दीजै कर संतन का चेहरा रहाओ प्रातः काल लागू जन चरनी निष्बासर दर्श पाओ तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रही है एक आधार नाम कन मोरा अंग नानक एह लही है राग देव गंधारी महला पंजवा करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ न जाए सब ही संगे अंदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखेना त्याग न कथु जाए अनक अनक पांच बहु पेखे प्रिय रोम ना समसर लाए मंगर पाग सो

सारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल सारे देव नदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारे हो दीन दयाल पे प्रभ अपने बहुर जन्म नहीं मारे हो रहा हो साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारे हो प्रभ गुण गाए बिखे बन करया।

ऊंचा आन न संसर को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बहु व्यंत अत बड़ो बारो खा नहीं अगहूचा तोल न तुलिये मोल न मुलिये कत पाइये मन रूचा खोज असंख्या अनित पंखा बिन गुर नहीं पहुँचा कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव।

अगम अगम्मा कवन महिमा मन जीवे सुन सो चार आश्रम चार ग्रन्ना मुकत पे शेर को गुरु शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीय गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निज पाई सहजो। राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक कह रे हर एक कह जान एक कह रे गुरुमुख जान रहाओ काहे परमत हो तुम प्रमो ना।

महला पंजवा जानी ना जाई ताकी गात रहाओ कह पे थारो हो कर कतराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अर्साधिक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादिक चतुर वेद उचरत दिन रात अगम अगम ठाकुर आगाद गुण बेअंत बेअंत पन नानक कह न जाई परे परा देव गंधारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार पौ नाही सुख।

खाओ सफल मूरत गुर मेरे माथे है, जब तक देखो तब तक साथ है, चरण कमल मेरे प्राण आधार, समर्थ अथा बड़ा प्रभु मेरा, कट कट अंतर साहिब मेरा, ताकि शरण आसर प्रभु नानक, जा का अंत ना पारावार, देव गंधारी महला पंजवा, उल्टी रे मन उल्टी रे, साक्ष्यों कर उल्टी रे, झूठे की रे झूठ परीत, छुटकी रे मन छुटकी रे, साथ संग

पाल कृपा निज मेरा मुख साकत संग न जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो मेरा मूंड साध पगा हेठ रुलसी रे। राज देव गंधारी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समरथ पंथ बिठले हो बल बल जाओ।

मात पिता पाई सुत बंदक अर सुन गृह की नार रहो तन से प्राण होत जब न्यारे तेरक प्रेत पुकार आज घरी को न राखे कर से देख निकार मृग कृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार कहो नानक पद राम नाम नित जाते होते उदार देव गंधारी में।

चीत अंधकार संगीन है को ए अचरज है रीत मन मूरख अजहू ने संगत सिख दे हारियो नीत नानक पौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। इको अंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल अमृत अजूनी सैभन गुर प्रसाद राग विहागड़ा चौक दे महला।

कोई हर सब आन मिलावे राम हौ मन देवो किस अपना मेरी जिंदगी हर सब की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सभा आराध हर मेरी जिंदगी मन सिंदेरा फल पावे राम नानक पद हर शरणागति मेरी जिंदगी वड पागी नाम ते आवे राम कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदगी गुरमत नाम प्रगासे राम हौ हर बाज उगीनिया मेरी जिंदगी ज्यों जल बिन कमल।

हर अमृत दिख ले जाए राम मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़ी हर हर नाम ते आए राम हर साज वडे लिख पाया मेरी जिंदड़ी जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन भेदिया मेरी जिंदड़ी जो बालक लग दुध खीरे राम हर दिन सांस ना पाई है मेरी जिंदड़ी जो चात्रिक जल बिन तेरे राम सतगुर सने जाए पाओ मेरी जिंदड़ी गुण दसे हर प्रभ तेरे राम जन नाम घर में लाया मेरी जिंदड़ी कर वाजे शब्द कनेरे राम मन हो मैं विचड़े मेरी जिंदड़ी बिख बांधे हो मैं जाले राम जो पंखी कप

गुर सतगुर वीस लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम से आया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीरत नाम है मेरी जिंदड़ी हर कीरत हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़ी जब हर हर नाम उधारे राम सब के लिए पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़ी मल गुरुमुख नाम उतारे राम वद पुन्नी हर प्याया जन नानक हम मूरख मुगध निस्तारे राम जो हर नाम से आए दे मेरी जिंदड़ी तिना पंचे वसगत आए राम अंतर नव निज नाम है मेरी जिंदड़ी गुर सतगुर अलख लखाए राम गुर आशा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़ी हर मिलिया सुख सब जाए राम गुरमस्तक हर प्रव लिखिया मेरी जिंदड़ी जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़ी पर द्रोही ठग माया राम वड पागी गुर पाया मेरी जिंदड़ी गुर पूरे गत मित पाया राम गुर अमृत हर मुख चो

हाँ बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़ी जिन हर हर नाम आधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदड़ी बिक औजल तारण हारो राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़ी तिन संत जना जयकारो राम नानक हर जब

तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदगी, सब हर हर नाम से आ रहे राम। पौन पानी दर्शन करो मेरी जिंदगी, नित हर हर हर जस गावे राम। वाण तृण सब आकार है मेरी जिंदगी, मुख हर हर नाम।

जो मनमुख पाप लुभाने राम जन नानक गुर मिल उबरे मेरी जिंदड़िए हर जप हर नाम समाने राम। सब जाए मिलो सतगुरु को मेरी जिंदड़िए जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया।

ऐसा हर नित सेवी है मेरी जिंदड़ी है जो सब तू साहिब वड्डा आराम जिन्नी एक मन एक आराध्या मेरी जिंदड़ी है तिना नाही किसे दी किछ करदा आराम गुर सेविया है गुर सेविया हर महल पाया मेरी जिंदड़ी है चक मारन सब निंदक कंडा राम जन नानक नाम से आया मेरी जिंदड़ी है तुर मस्तक हर लिख छड़ा राम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जाने जो जिए कमाई है राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़ी है सब वेखे मन मुकराई है राम मन मुखाम हर

वड पागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम। थान थान पर गाव रहा मेरी जिंदड़िए तार ब्रह्म प्रभ दाता।

कवन रसना गुण कना प्रम लोभ मोह विकार खाके मिल सखी मंगल गाया नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संजोग मिलाया। बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुर पार ब्रह्म पूरे अंग नाम।

पर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन तन तुम मना मूरख मुग्ध अनाथ चंचल।

जिन विदाता पाया नाम राते जीव दाते नित दिन चढ़े सवाया रिद्ध सिद्ध नव हर

गुरुमुख मनो ना विसरै हर जियो, करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग न पौ व्यापै, जिन्नी हर हर त्याया, संत प्रसाद तरे पव जल, पूरब लिखिया पाया। वजी वधाई मन सांस आई, मिलिया पुरख अपारी, बिनवंत नानक सिमर।

हर की भगत मंगे, हर भगत पाए प्रभु ते आए, जाए मिलिए हर जाना, मान मोह विकार तजिए, अरत तन तन इहो मना, बब पुरख पूरन गुण संपूरन, प्रम तीत।

अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कर अनुग्रह पतित पावन बहु जोन प्रम से हारी बिन वंश नान।

गुर के शब्द मन के दिए सदा बसे हर नाल। नानक नाम तिना को मिले जिन हर वेखे नदर निहाल। महला की जा सुस्त खजाना बख्श है जिस बख्शे सो खर्चे खाए। सतगुर बिन हाथ न

नाम कारज सिद्ध है सहज होए सो होए। गुरमत मत अचल है चलाए ना सके कोए। भगता का हर

मन पर कीट न आया सहज न लगो पाओ शब्द खाद न पायो मन हथ क्या गुण गाए। नानक आया सो परवान है जो गुरमुख सच समाए महला तीजा अपना आप न पछाने मूड़ा अवरा आप दुखाए मुंडे दी खसलत ना गया अंगे विचड़ चोटा खाए सतगुर के पै पन ना करियो रहे अंक समाए। अन दिन सहसा कदी न चूके बिन शब्द दुख पाए काम क्रोध लोभ अंतर सबला।

बंधन तोड़े सच वसे अज्ञान अंधेरा जाए। सब किस देखे किसे का जिनकी आतन साजे, नानक शरण करतार की करता राखे लाज। पौड़ी जदों आपे खात किया, जदों आपे खात किया बह करते, तदों कुछ ना सेवक दिया, तदों क्या को लेवे क्या को देवे, जा अवर ना दूजा किया। फिर आपे जगत उपाया करते, दान सबना को दिया, आपे सेव बनायन गुरमुख आप।

कहे कथिये न पाये अंगिन रहे सदा गुण गाये जिन कर्मे किने न पायो पौके मुए बिन लाए गुर के शब्द मन तन तुझे आप वसे मन आए नानक नगरी पाये आपे ले मिलाए पौड़ी आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथे आप पीजे आपे ही दह पूजे करता आप पर पंच करी जय आप परवृत आप निर्वृति आपे अकथ कतीजे आपे पुन सब आप कराए आप अलिपत वर्ती जय आपे सुख दुख देने करता आपे बख्श करीजे आपे सुख दुख देने करता आपे बख्श करीजे श्लोक महला तीजा शेखा अंदरों जोर छड़ तू पौ कर चल गवाए गुर कह तै के ते निस्तरे तैरच निरपौ पाए मन कठोर शब्द तेज तू शांत वसे मन आए शांति विच कार कमावनी।

मनुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार, कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार, दिख मा

पार पवै जिना अंदर सच्चा सोए नाम समाले नाम संग्रह नामे ही पत होए नानक सतगुर पाया कर्म परापत होए पौड़ी आपे पारस आप ताप है आप की कौन कंचन आपे ठाकुर सेवक आपे आपे ही पाप खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब देता आपे गुरुमुख पंजन जन नानक सालाहे नारजे तुद करके तू हर सुख दाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे थवर ना पावही मर जम्मे आवे जाहे बिन सतगुर सेवे फिका बोलना नाम ना वसे मन आए नानक बिन सतगुर से

सत संगत सो मिलाप होए लिव कटोरी अमृत परी पीती कथे विकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे

संध्या परवान है, जित हर प्रभु मेरा चित आवे है। हर्षो प्रीत उपजे, माया मोह जलावे, गुर प्रसादी दुबदा मरे। मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या।

और कट के अंतर जोत तरे हो, हर का नाम अमृत है दारू इह लाए हो, सतगुर का पाना चित रखो संजम सच्चा ने हो, नानक ऐसे सुख है अंदर रखसी अगे हर्षों केल करे हो। पौड़ी आपे पार अठारह वनस्पत आपे ही फल लाए, आपे माली आप सब सूचे आपे ही मोह पाए, आपे करता आपे पुगता आपे दे दिवाए, आपे साहिब आपे है राखा आपे रहा समाए, जन नानक वडियाई आखे हर करके की जिसनो तिल ना कमाए। श्लोक महला तीजा मानस परया आया मानस परया आए, जित पीते मत दूर होए बरल पवे विच आए, अपना पराया

सो सब किछ पावे जिसनो कृपा निरंजन केरी सोई साओ सच्चा बनजारा जिन वत्तर लदिया हर नाम तन तेरी सब किसे नो सालायो संतो जिन दूजे पा

0: पौड़ी
1: जा आप कृपाल होवे हर स्वामी ता अपना नाउ हर आप जपावे है आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर पावे

प्राप्त होए। तिस जोगी की नगरी सबको वसे पेटी जोग न होए। नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस पट प्रगट होए। पौड़ी।

सतगुरु मोह को हर दिया, सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागनी खरिया बिल्ला दिया, सिना मैर न पाए, दूजे पाए करूपी दुख पावे आगे जाए। गुणवंती नित गुण।

हर जियो मन वसाया, हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुरु हर नाम से आया रहाओ, ब्रह्म वेद वाणी प्रगाती माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वर्ते कर अपने तामस बहुत अंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, किस लग करे संसार।

एक को सच वर्त है सब अंतर सब ना करे सतपाला नानक इकस दिन मैं अवर ना जाना सब ना दीवान दयाला वडहंस महला तीजा गुरुमुख सत संजम तत ज्ञान है गुरुमुख साचे लगे ध्यान

गुरुमुख जात पत खट सोए, गुरुमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरुमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरुमुख आप वदाई देवे सोए, गुरुमुख शब्द सच करनी।

ए मन नाम निदान कूप आए अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ गुर के शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसे मन आए कर में पूला फिरे संसार मर जन में जम करे खुआर नानक सेवड पागी जिन हर नाम से आया गुर पर सादी मन वसाया वडहंस महला तीजा हों में नावे नाल विरोध है दोए ना वसे इक ठाए हों में विच सेवा ना हो वही ता मन बिरखा जाए हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए हुक्म मन में ता हर मिले ता

मैं अवगुण भरपूर शरीरे हाओ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया थे मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया हूँ कर साका उपाव बहु तेरे नानक गरीब राखो हर मेरे वडहंस महला चौथा मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी हूँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोवाणे हाँ क्यों कर फिर को मिलो एआनी जो फिर पावे सा सुहागन साई फिर को मिले सियानी रहाओ मैं विच दोष हूँ क्यों कर फिर पावा तेरे अनेक प्यारे हूँ फिर चितनावा जिन फिर रावया सापली सुहागन से मैं गुण नाही हूँ क्या करी दुहागन नित सुहागन सदा फिर रावे मैं कर्महीन कब ही गल लावे तू फिर गुणवंता हो अवगण आरा मैं निर्गुण

अरे क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए कुछा अपने सतगुरे गुर कुछ मन मुग्ध समझावा पूला मन समझे गुर शब्दी हर हर सदा ते आए नानक जिस नजर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चितलाए हों सब वेश करी तिर कारण जे हर प्रभ साचे भावा तो फिर प्यारा मैं नजर ना देखे हों क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हों सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागन जिन फिर रावे अड़ा सत सवरा हों जाए पुछा सुहाग सुहागन तुसी क्यों कर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नजर करी फिर साचे मैं छोड़ेड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का इस मार्ग पैने मिली है आप नड़ा प्रभ नजर कर देखे नानक जोत ज्योति रली है जो हर प्रभ का मैं

तन तन गुरु गुर सतगुरु पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सतगुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी तित वेले मर जाए जियो मेरा हर वेखन को सब कोई लोचे सो वेखे जिस आप विखाले जिसनो नजर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा सदा संभाले जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इक्के होए हर जप हर तेती।

रहाओ। लाख भगत जाको आराधे, लाख पति सर तप ही साधे, लाख जोगी सर करते जोगा, लाख पोगी सर पोगे पोगा, कट कट वक्ते जाने तोरा, है कोई साजन परदा तोरा, करो जतन जे होए मेहरवाना, करो जतन जे होए मेहरवाना, ताको दे जियो कुर्बाना, फिरत फिरत संतन पे आया, दुख परम हमारा सगल मिटाया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूछा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा। वडहंस महला पंजवा, तन सोवेला जित दर्शन करना, हौं बलिहारी सतगुर चरणा, जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे, मन जीवे प्रभ नाम चितेरे। रहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, शीतल पुरख दृष्ट सुजानी, सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी, तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब पर पुर लीना। वडहंस महला पंजवा, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को सब

बिने तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण कछु न जाता नानक साधु देख मन राता वड़हंस महला पंजवा।

जल शल मैयल रहा पर पूरे निकलते नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पहर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सर्व परयो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा वडदाता अंतर जामी सब में रव्या पूरन प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल होए संता दूरे चरण कमल हृदय उधारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा वडहंस महला पंजवा साध संग हर अमृत पीजे ना जियो मरे ना कबहू छीजे वड पागी गुर पूरा पाये गुर कृपा ते प्रभु ते आये रहाओ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ कै निहाला जत कत पेखो साधु शरणा हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहंस महला।

मेरे अंतर भुख ना उतरे अमाली जे सो भोजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम पिरम का बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम पाई मैं मेलियो मित्र सुखदाता। ओह जी की मेरी सब वेदन जाने नित सुनावे हर किया बाता। हौ एक दिन तिस बिन रह ना सका जो चात्रिक जल को बिन लाता। हौ क्या गुण तेरे सार संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हौ पई उड़ीनी कंस को अमाली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगन विसरे बिन फिर किते न लेखा। एहो कापड़ तन ना सुखावई कर ना सको हौ वेता। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिन आगे हम आदेशा। मैं सब सिगार बनाया अमाली बिन फिर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली ता बेसा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागनी अमाली जिन सो रहा समाए। हौ वारिया तिन सुहागनी अमाली तिनके तोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा अमाली तिचर मैं जानिया।

बिन साचे होर सलाहना जासे जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम तन भगत परे पंडारा सच खाना सच पहनना सच टेक हर नाओ जिसनो बख्शे तिस मिले महली पाए थाओ आवे सच्चे जावे सच्चे फिर जूनी मूल न पाहे गुरमुख दर साचे सच्यार है साचे माहे समाहे अंतर सच्चा मन सच्चा सच्ची सिफत सुनाए सच्चे थान सच सलाना सतगुर बलिहार है जाओ सच वेला मूरत सच जित सच्चे नाल प्यार सच वेखना सच बोलना सच्चा सब आकार नानक सच्चे मेले ता मिले आपे ले मिलाए जो पावे त्यो रखती आपे करे रजाए वडहंस महला तीजा मनुआ देह दिस्ताम दा ओ कैसे हर गुण गावे इंद्री व्याप रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे वाहो वाहो सहजे गुण रवि जय राम नाम इस जुग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पीजै रहाओ शब्द चीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे गुरमति आपे आप पछाणे ता निज कर वासा पावे ए मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम भय हर की शरणाई पात्र डुबदा काड लिया साची वड्याई दिख से अमृत भय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पए अंतर वासना समाई मानस जन्म दुलंग है जग में खटियाए पूरे पाग सतगुर मिले हर नाम से आए मन मुख पूले बिख लगे पहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखों हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया नानक जिन

करो कृपा ले हो जमो बारे जुगे जुगंतर भगत तुम्हारे वड्डे मेरे साहेबा अलख अपारा क्यों कर करूं बेनंती हो आप न जाना नदर करें ता साच पछाना।

आप अलख अपारा तेरे बंके लोएन दंत रिसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोयने की टाला सोवन टाला कृष्ण माला जपो तुसी सहेली हो जम द्वार ना हो खड़िया सिख सुनो महेलियो हंस हंसा बग बग्गा।

आप वाणी किच मन की पूरी है, सारंग ज्यों पग तरे ठिम ठिम, आप संदूरे श्री रंग राती फिरे माती, उदक गंगा वाणी बिनवंत नानक दास हर का, तेरी चाल सुहावी मधुराड़ी वाणी। वडहंस महला तीजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अपने पिरके रंग रती मोये, सोभावंती नारे सच्चे शब्द मिल रही मोये, पिर रावे पाए प्यारे सच्चे पाए प्यारी, कंक सवारी हर हर स्यो निहो रचाया, आप गवाया ता पिर पाया, गुर के शब्द समाया, सा तन शब्द सुहाई प्रेम कसाई, अंतर प्रीत प्यारी नानक सा तन मेल लई, फिर आपे साचे सहे सवारी, निर्गुण वंतड़िए फिर देख हदूरे राम, गुरुमुख जिन्नी रावया मोये, फिर रव रहा पर पूरे राम, फिर रव रहा पर पूरे वे खजूरे, जुग जुग एको जाता तन बाली कोली, फिर सहज रावे मिलिया कर्म विदाता, जिन हर रस चाखिया शब्द सो पाखिया, हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा, फिर पावे शब्दे रह हदूरे, सुहागनी जाए पूछो मुये, जिनी विच्चों आप गवाया, फिर का हुक्म ना पायो।

खोटा एहो वापारा राम कूर बोल बिख खावणी बहु वधै विकारा राम बहु वधै विकारा सहसा एहो संसारा बिन नावै पत कोई पढ़ पढ़ पंडित वाद बखाने बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चुके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा एहो वापारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगे सुतियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुगद गवारा मनमुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत कुलाया साचा नाम न पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख खटे संसारा खोटे खरे परखियन तित सच्चे दरबारा राम आप तरे किस आखिए होर करना किछु न जाई राम जित खा दे तित लाए सी ज्यों तिस दी वड्याई राम ज्यों तिस दी वड्याई आप कराई वरी आम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विदाता आपे बक्से सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किस आखिए होर करना किछु न जाए वडंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम बनजी है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडपागी अंतर बाहर पगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच है केवा पारा हौ मैं माया मैल है माया मैल परी जय राम गुरुमति मन निर्मला रसना हर रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय सात शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परिया शब्दे काड पिए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे।

पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पे करें पुकारा राम। माया मोह अंतर मल लागे, माया के वा पारा राम। माया के वा पारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाए। बिख का कीड़ा बिख्यो लागा, बिष्टा माए समाए। जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोई न मेटन हारा। नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा। माया मोह मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम। गुरमुख ए मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम। दूजा रंग जाई साच समाई, सच परे पंडारा। गुरमुख होवे सोई बूझे, सच सवारण हारा। आपे मेले सो हर मिले, होर

आपे सच्चा बख्श लहे। फिर होए ना फेरा राम, फिर होए ना फेरा अंत सच निबेड़ा। गुरुमुख मिले वड्याई साचे रंग राते, सहजे माते सहजे रहे समाई। सच्चा मन पाया सच।

सब बरल है दूजे पाए कुआई राम माता पिता सब हेत है हेते पलचाई राम हेते पलचाई पूर्व कमाई मेट न सके कोई जिन सृष्ट साजी सो कर वेखे तिस जेवड़ अवर न कोई मन मुख अंधा तप तप खपे बिन शब्द सांत न आई नानक बिन नावे सब कोई पुला माया मोहि खुआई एह जगत जलता देख के पज पे हर सरनाई राम अरदास करी गुर पूरे आगे रख ले वो देहो वडाई राम रख ले वो सरनाई हर नाम वडाई तुद जेवड़ अवर ना दाता सेवा लागे सेवड़ पागे जुग जुग एको जाता जत सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम आपे दे बुझाई अवर न पाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचे सदा है साचा साचे शब्द सुबाखिया कर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई नानक जो नाम रते सही महल पाइन मत परवान।

मेरा सतगुरु पूरा राम हो मन तन देवा किस काट शरीरा राम हो मन तन काट काट किस दे जो सतगुरु वचन सुनाए मेरे मन बैराग पया बैरागी मिल गुरु दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो।

गुरजेवर गुरजेवर दाता मैं अवर न कोई। वडहंस मैला चौथा हौ गुरबिन खरी निवाणी राम। जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम से आया। जिस कारण हो तू सुनेंदी सो सज्जन हर कर पाया।

हर आपे मिले करे सो होई राम। जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई, बहुत स्याणप लया न जाई, कर था के सब चतराए। गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर दिन अवर न कोई, हर आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, सिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बिना

निफल जन्म चिन बिछा गवाया ते साकत मोए मर चूरे कर होंदे रतन पदार्थ भूखे भागहीन हर दूरे। हर हर तिन सा दर्श न करियो जिनी हर हर नाम न प्याया जिनी दर्शन सतगुरु पुरख न पाया। हम चात्रिक दीन।

गुरु नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती, हम चात्रिक दीन हर पास बेनंती। वडहंस महला चौथा, हर कृपा कर सतगुरु मेल सुख।

जम कंकर मार बिदारे। हर प्रभु कृपा तारी सुख दाते, दुख लाके पाप सुन पापा। सुन गुरुमुख नाम सब दिन से हों मैं पापा। जप हर हर नाम मेरे मन पाया राम। मुख गुरुमुख जप सब रोग गवाया राम। गुरुमुख जप सब रोग गवाया, हर रोग तय शरीरा। आन दिन सहज समा

महामार्ग पंख बिखरा जन नानक पार लंघाया। कोड़ी तेजन दे राम पाया राम, जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाया राम। जित हर प्रभ जापै।

हर नाम गत मित जानिया, सब जन्म सफलो किया करते हर राम नाम वखानिया। हर राम नाम सलाए हर प्रभु हर

हर गाय मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेव की प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुवाए, हर गुरुमति मन चाया जन नानक हर।

ठाकुर माने से प्रधाने हर से रंग राते हर रसया जाए सह समाए कट कट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने भाने कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिन कै सत कुरबाने श्लोक।

जन साख अगाने हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तू था अमयोग उठा सुख पाए दुख नाश परम दिनाश संते जप जगदीश ईश्वर जय जय मोह रहत विकार था के पंच ते संग टूटा कहो नानक तिन कन्हिये वंजा जिन कट मेरा हर प्रभु उठा श्लोक जो लोड़ींदे राम सेवक से कांडया नानक जाने सत

तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए। आप दुखता आप मुक्ता आप वखाना, नानक परम कह गुण बिना से मिल।

प्रम दुख दर्द निवार खिन में रख ले हो दीन दयाला। मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला। जो शरण आवे गुण निधान पावे सो बहुर जन्म न मरता। दिनवंत नानक।

अगले प्रभु के मन पाई है, दिनवंत नानक दिन सुरैणी सदा हर हर त्याय है। दरवाजे अनहतवाजे राम, कट कट हर गोविंद गाजे राम, गोविंद गाजे सदा विराजे अगम अगोचर ऊंचा, गुण के अंत किस कह न जाए कोई न सके पहुंचा, आप उपाय आप प्रताले जी जन सब साजे दिनवंत नानक।

आप निरालम कंधे बांधी कर हुकम छड़ावन हारो अज कल कर दिया काल दिया पै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़ अंग गुबारो वा ना जल लेप तुलाइया ना भोजन परकारो वा भोजन पाओ ना।

के मुख गिरात ऐठे दुखो दुख कमावना मोया नरक निवास। मन मुख मोहे मैले शब्दे ना जानने काम क्रोध विनाश सतगुर का तो

नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाए पौड़ी। गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिव लाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम।

हर नाम हम श्रेवे हैं, हर नाम हम पूजे हैं, हर नाम में ही मन राता, हर नाम में जेवड कोई अवर न सूजे, हर नामो अंत सदाता, हर नाम दिया गुरु।

नानक गुरमति सुख पाया, बक्से बक्सनहार कौड़ी, तू आपसे आप सब करता, कोई दूजा होए।

सतगुरु मिले उल्टी भई भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए, सो गुरु सो सिख है पाई, जिस ज्योति ज्योत मिलाए। मंगे हर हर सेती लिवलाए, मन हर जख मीठा लागे पाई, गुरुमुख

अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरुमुख जागे से उबरे भाई, अब जल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रख्या उधार। गुर शरण आई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाउ बेड़ा नाउ कुलहड़ा, पाई जित लग पार जन पाए। श्लोक महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर, और है सुख नाही। होमे जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन में रोवे ताही। प्राणी सतगुर से सुख पाए, सतगुर सेवे ता सुख पावे। नाहे ता जाएगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण तात बहु कर्म कमावे, हर रस साधना आया। संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मिलाए। हर रस पी जन सदा तृप्ता, से विचों आप गवाए। यह जग अंधा सब अंग कमावे, बिन गुर मग न पाए। नानक सतगुर मिले ता

तुम उपजे दसमत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वस्या, नामे नाम समाए, बिन सतगुरु सब जग बोराना, मन मुख अंधा शब्द ना जाने, झूठे परम पुला ना रहा, त्रै गुण माया परम पुलाया, हों मैं बंधन कमाए, जमन मरण सिर ऊपर उभो, गर्भ जोन दुख पाए, त्रै गुण वरते सगल संसारा, हों मैं विच पत खोई, गुरमुख होवे चौथा पद चीने, राम नाम सुख होई।

रहाओ आपे जल फल सबत है प्यारा प्रभ आपे करे सो होए सबना रिज्क समांदा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे ही आप निर्मला प्यारा आपे निर्मल सोए आपे कीमत पाएंदा प्यारा आपे करे सो होए आपे अलख न लखिए प्यारा आप लखावे सोए आपे गहर गंभीर है प्यारा तिस जेवड अवर न कोए सब कट आपे भोग वै प्यारा विच नारी पुरुष सब सोए नानक गुप्त वर्त दा प्यारा गुरमुख प्रगट होए सूरत मैला चौथा आपे ही सब आप है प्यारा आपे था पुथापे आपे वेख विकसदा प्यारा कर चोज वेख है प्रभ आपे आपे वंचन सबत है प्यारा आपे गुरमुख जापे जप मन हर हर नाम रस त्रापे अमृत नाम महा रस मीठा गुर शब्दी चख जापे रहाओ आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा आप करे प्रभ आपे आपे जाल बतायदा प्यारा सब जग मछली हर आपे आप अपुल ना पुलई प्यारा अवर न दूजा जापे आपे संगी नाद है प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरुष है प्यारा आपे ही सब तापे आपे सदगुरु आप है चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाम जपाएंदा प्यारा आपे ही जप जापे आपे अमृत आप है प्यारा आपे ही रस आपे आपे आप सलाहदा प्यारा जन नानक हर रस त्रापे सूरत महला चौथा आपे कंडा आप तराजी प्रभ आपे तोल तुलाया आपे साहु आपे वणजारा आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर प्याय सुख पाया हर हर नाम निधान है प्यारा गुर पूरे मीठा लाया रहाओ आपे धरती आप जल प्यारा आपे करे कराया आपे हुक्म वर्तदा प्यारा जल माटी बंद रखाया आपे ही पौ पाएंदा प्यारा बन बकरी सिर हडाया आपे काष्ट आप हर प्यारा विच काष्ट अग्न रखाया आपे ही आप वर्तदा प्यारा तै अग्न ना सके जलाया आपे मार जीवाएंदा प्यारा सह लेंदे सब लवाया आपे तान दीवान है प्यारा आपे कारे लाया जो आप चलाए त्यों चलिए प्यारे जो हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह बजाया सूरठ महला चौथा आपे सृष्ट उपायदा प्यारा कर सूरज चंद चनान आप निताणिया तान है प्यारा आप निमाणिया मान आप दया कर रखदा प्यारा आपे सुगड़ सुजान मेरे मन जप राम नाम निशान सत्संगत मिल त्याए तू हर हर बहुर न आवन जान रहाओ आपे ही गुण वर्तदा प्यारा आपे ही परवान आपे बच कराएंदा प्यारा आपे सच निशान आपे हुक्म वर्तदा प्यारा आपे ही फुरमान आपे भगत भंडार है प्यारा आपे देवे दान आपे सेव कराएंदा प्यारा आप दिवावे मान।

ठाव प्याई दुर्मत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सब संगत पुरुष तुम्हारी पुरख है पुरख मिलिया गुरु पाया जिनको कृपा कही तुम्हारी नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी सोरठ महला चौथा हर सो प्रीत अंतर मन भेदया हर दिन रहे न जा

अंतर पाई, नानक दीन दयाल पए हैं, कृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचर चरै ता सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तां सीतर, तां श्रम काटिया जाई। मेरे गोविंद अपने जन को देह वढाई, गुरमत राम।

होता हर नाम समाना, जिसकी वक्त सोई प्रभ जाने, जिसनो देश पाए वक्त अनूप अगम अगोचर, गुरु पूरा अलख लखाए। जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठाई।

ऊत के पाला सूरत महला पंजवा कर पहला चौत के गुरु गोविंद सलाहिए पाई मन तन हृदय पार साचा साहिब मन वसै पाई एहा करनी सार जित तन नाम न उपजै पाई से तन होए छार साध संगत को वारिया भाई जिन एक अंकार आधार कोई सब आराधना पाई जिससे सब किछु हुए गुरपुर जान आया पाई तिस बिन अवर न खोए रहाओ नाम विहुने पच मोए भाई गणत न जाए गणी विन सच सोच न पाई है भाई साचा अगम धनी आवन जान न चुके भाई झूठी दुनी मणी गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नामे एक कणी सिमरत शास्त्र सो दिया भाई विन सतगुर परम न जाए अमित कर्म कर था क्या भाई फिर बंधन पाए चारे कुंडा सो दिया भाई

हाथ सदा है निर्मला भाई, निर्मल साते सोए, नजर करे जिस आपनी पाई, तिस प्राप्त होए। कोट मदे जन पाए भाई, विरला कोई कोए, नानक रत्ता सत नाम भाई, सुन मन तन निर्मल होए। सोरठ महला पंजवा दो तुके

जाई सेवो साध गहो ओट चरना नै बिचरे मोत चसाई रहाओ। रे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई प्राण पत त्याग आन तू रचिया उर्जो संग बैराई सोग न व्यापे आप न खापे साध संगत बुद्ध पाई साकत का बतना यूं जानो जैसे पान चुलाई ओत पराध अछाद्यो ए मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लेखा रखो उठाई। सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधेही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या अपने ही। रे नर काहे पपोरो देही उड़ जाएगो तू।

जन नानक प्रभ कृपा पारी, मैं सतगुर ओट गए ही। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरा ते प्यो वड़ पागी, मने पया तरगासा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहिब का भरवासा। अपने सतगुर कै बलिहार है, आगे सुख पाछे।

एक राम नाम आधारा, सकल दर्शन अकाल मूरत, प्रभ है बिहोनहारा। कंठ लगाए अपने जन राखे, अपनी प्रीत प्यारा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा, कारज आया रासे। नानक तो गुरु पूरा पेट्यो, सगले दुख विनासे। सोरठ महला पंजवा, सुखिये को पेख है सब सुखिया, रोगी के पाने सब रोगी। करण करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी।

जन सेवा हर कीर्तन रस गाये इहां सुख आगे मुख उजल जन का संग वड पागी पाये रचना एक अनेक गुण पूरन जन की केतक उपमा कही है अगम अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है निर्गुण नीच अनाथ।

सो अपराधी ओट संतन की आही बूढ़क मोह गृह अंधकूप में नानक निहो निवाही। सोरठ महला पंजवा हर पहला जाके हृदय वस्या तू करते ताकि तै आस पुजाई दास अपने को तू विसरे नाही चरण सूर मन पाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निदान सुखदाते स्वामी सबसे ऊंच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी दर्शन देख अघाई सर्व निरंतर तुम्हें समाने जाको तुद आप बुझाई गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना प्रगट पाए सब ठाई सोई ज्ञानी सोई प्यानी सोई पुरख सुभाई कहो नानक जित करे दयाला ताको मन ते बिसर न जाए। सोरठ महला पंजवा सगल समग्री मोहे व्यापी कब ऊंचे कब नीचे शुद्ध न होइए काहू जतना ओरक को ना पहुँचे मेरे मन साधु शरण छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही फिर आवत बारो बारा रहाओ। ओहो जो परम पुलावा कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा पूरन भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जासो कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत ना ओलिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु सबना कर तू धारा कहो नानक गुर बिन नहीं करिए ये पूरन तत् बिचारा। सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम सत सारा किलबिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पारो तारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ। मुक्त पुगत जुगत सच पाये सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाये हृदय त्याये सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथाना कोई वड्डे पाग रतन जन्म पाया करो कृपा कृपाला साध संग।

प्रभु शरणा प्रभु ते पले संजोगा प्रभु बाणी शब्द सुवाख्या गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरु पूरे तू राख्या रहाओ साचा साहिब अमित वडाई तगत वचल दयाला संता की पैज रखवा आया आग बिरद प्रतिपाला हर अमृत नाम पोजन नित पुंचो सर्व वेला मुख पावो जरा मरा पाप सब नाथा गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई सोरठ महला पंजवा कर दूजा चौपदे

मन तै को देखा सुनमी ताहूं तेरी शरणाई आया प्रभु मिलो देव उपदेशा मान न की जय शरण परी जय करे सो कला मनाय सुनमी ता जियो पिंड सब तन अर्पी जय क्यों दर्शन हर जियो पाई है कयो अनुग्रहो प्रसाद संतन के हर नामा है मीठा जन नानक को गुर कृपा पारी सब अकुल निरंजन डीठा सोरठ महला पंजवा कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी हर्ग जिया का दाता रे प्रतपाल नित सार संभाल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर और

सर्व घटाबर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हौ मित्र वर्णो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरु अपने मैं मूर्ख देव उपदेशो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुरु नानक।

ते भयानक भया करें बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी शरणया जह भंडार गोविंद का खुलिया जह प्राप्त ते लया एक रतन मोको गुरु दीना मेरा मन तन शीतल थया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर न हुआ भगत भंडार गुरु नानक को सौंपे फिर लेखा मूल न लया सोरठ महला पंजवा चरण कमल स्यो जा का मन लीना सेजन कृत अभाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर कृष्ण त्रिपाई हर आराधे अरोग अनबाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाओ जे जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ सरने जे नर बिसरिया पुरख विधाता ते दुखिया मैं गणने जे गुरमान प्रभु लिवलाए ते महा आनंद रस करया जे प्रभु विसार गुर ते बेमुखाए ते नरक कोर में परया जितको लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सै पकरी संतन की।

तेक निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप पावे रहाओ अमलम स्यो अमली लग पायो कूमन कूम प्यारी खीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या में विद्यांशी रचिया नैन देख सुख पावे जैसे रखना साग लुभानी क्यों हर जन हर गुण गावे जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्श

हम मूरख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता माधो, हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

तुम बांध दे हो मेहरवाना, तुम करो कला हम पलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बिधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाते, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे, सोरठ महला पंजवा कर दूजा, माप गर्भ में आपन सिमरन दे, कह तुम राखन हारे, पावक सागर अप

जाने तू दाता मांगन को सगली दान दे तब कौने खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो ऊंचो अगमा पारे साज संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अनद पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की शरणा संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यो बन आई पूरब लिखिया पाई यह मन तेरा भाई रहाओ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो व्योहारा संतन स्यो हम लाहा खाटिया हर पगत परे भंडारा संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का पोखा कर्म राय अब कहाँ करेगो जो फाटियो सगलो लेखा मां आनंद पाए सुख पाया संतन के प्रसादे कहो नानक हर्षो मन मानिया रंग रते बिस्मा दे सूरठ महला पंजवा जेती समगरी देखो रे नर तेती ही छड़ जानी राम नाम संग कर व्योहारा पावे पर निर्वाणी प्यारे तू मेरो सुखदाता गुरपुरे दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना का मैं सुख नहीं पाये हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अनद मंगल सुख पाये काल न पाने अंतर विद जाने ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ए मनवा अकाल मूरत गुरुदेवा गोविंद दमोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा सूरठ मेला पंजवा मृतक को पायो तम सासा विचरत आन मिलाया पशु परेत मुगध

साथी दरगह माने गुण गावत आराध नाम हर आए अपने खाने जय जयकार करे सब उस्तक संगत साध प्यारी सब दलिहार जाओ प्रभ अपने जिन पूरन पैज सवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभ अपना अनुज सेती पर आया सूरत महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहला से दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु त्याया प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंगराता रहाओ सतगुरु नाम निधान दृढ़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसिया अविनाशी ताको विघ्न ना को लागे जो सतगुरु अपने राखे चरण कमल बसे रिद अंतर अमृत हर रस्ता के कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छा पुजाई नानक दास पांके बलिहारे जिन पूरन पैज रखाई सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है देवन हार न जाने जियो पिंड साब जिन रचिया बल अपनो परमाने मन मूड़े देख रहे हो प्रभ स्वामी जो किच करे सोई सोई जाने रहे न कछु छानी रहाओ जेवा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बिकारा बहुत जोन परमत दुख पाया हूँ मैं बंधन के पारा देखिवाड़ अनक पर्दे में परदारा संग थाके चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ठाके दीन दयाल पूरन दुख पंजन तुम बिन ओट न पाई काड ले हो संसार सागर में नानक प्रभ शरणाई सूरत महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सहाय कथा कीर्तन सुखदाई गुरपुरे की बाणी जप अंग करो नित प्राणी सहसाचा सिमरो भाई साध संग सदा सुख पाये हर विसर न कभू जाई रहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीवे जिसनो कर्म परापत होवे सो जन निर्मल थीवे विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुरचरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से ही फल पाए हर की कथा सुहेली आद अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन से मोह मेरा और तेरा बिन से अपनी तारी संतो यहाँ बताओ कारी जित हो मैं गर्भ निवारी रहाओ सर्वपूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी।

दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी। पूरठ महला पंजवा हर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद। सगल वनस्पत में बैसंतर सगल दूध में किया

को प्रभु दिखाया, जल थल से पवन रुखी सूरत मैला संजवा, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनके आप छुड़ाओ, ए पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलाओ, अपनी विद आप जनाओ, हर जन मंगल गाओ।

जगत जीवन कैसे पावे। सूरठ महला पंजवा अविनाशी जीवन को दाता सिमरत फरनल कोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जत गुरु गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पै सुख पाये बहुत दुख न होई। रहाओ वड भागी साथ संग प्राप्त तिन पेटत दुर्मत खोई।

रो बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने लाख खते कर फेरो। प्रभ जी तू मेरो ठाकुर नेरो हर चरण सरण।

सांत सहज आनंद नाम जप वाजे अनहद तूरा रहाओ। मिले स्वामी प्रीतम अपने कर मंदर सुखदाई हर नाम निधान नाम।

दून चौनी दे वड्याई सोबा नीता नीत रहाओ। जी जंत प्रभ सगल उधारे दर्शन देखन हारे गुरपूरे की अचरज वड्याई नानक सद बलिहारे। सोरठ महला पंजवां संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलिश बिनोद आनंद सुख मानो खाए जीवो सिख परवार। हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

कीमत कहन न जाई, नानक भगत पए अविनाशी, अपना प्रभु पया सहाय। सोरठ महला पंजवा, गए कलेश रोग सब नासे,

रास राख ले हो पाई मेरे को तब आ गए अरदास रहाओ जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खत

सतगुरु अपना सगला दुख मिटाया, पाप रोग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया। मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूरन पुरख विधाता रहाओ। आनंद विनोद मंगल गुण गावो, गुरु नानक भय दयाला, जय जयकार भय जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला। सोरठ मैला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना

हर के चरण हृदय उर्धार, सदा सदा प्रभ सिमरिए पाई, दुख किलबिख काटन हार। रहाओ तिसकी सरणी उबरे पाई, जिन रचिया सब कोए, करण कारण समरथ सो।

संतो हर हर नाम ते आई, सुख सागर प्रभ विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ। सतगुर पूरे ताप गवाया, अपनी कृपा धारी, पार ब्रह्म प्रभ पए दयाला, दुख मिटिया सब परवारी। सर्व निधान मंगल रस रूपा, हर का नाम आधारो, नानक पत राखी परमेश्वर, उदरिया सब संसारो। सोरठ महला पंजवा, मेरा सतगुर रखवाला होआ, पार कृपा प्रभ हाथ दे राखिया, हर गोविंद नवा निरोआ रहाओ। ताप दया प्रभ आप मिटाया, जन की इलाज रखाई, साध संगत ते सब फल पाए, सतगुर कै बल जाए। हलत पलत प्रभ दोवें सवारे, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, अटल बचन नानक गुर तेरा, सफल कर मस्तक धारिया। सोरठ महला पंजवा, जी जंत्र

बढ़ाए पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपुरे पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ अंदिन नानक नाम ध्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ

ना जाई फिर साहा पात साहा गुर पेटत मन ओ माहा सगल पराशत लाथे मिल साध संगत के साथे गुण निधान हर नामा जप पूरन होए कामा गुर कीनो मुकट द्वारा सब सृष्ट करे

कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर स्नान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याय। हम दिन सुकृत करिय रहाओ, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरणी सिसलाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने।

विघ्न विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया होए पाप भय सब पावन जन नानक सुख कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लखर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी भय दयाला जब अनग रहो गुर चरणा पौ कत है नहीं प्रभ सरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीव उसारी बल तन तकिया तेरा तू पारो ठाकुर मेरा। जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया कर कृपा नाम रस।

सास सास प्रभ त्याय हर मंगल नानक दाई है। सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा प्रभ मिलियो मन पावन दा पूरे गुर कृपा तारी तागत पई हमारी हर की प्रेम।

तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया, गुर का शब्द

दास का सदा रखवाला, पर कृपा अपने कर राखे, मात पिता जो पाला रहाओ। वडपागी सतगुर पाया, जिन जम का पंथ मिटाया, हर भगत पाए चित लागा, जप जीवे से वडपागा। हर अमृत बाणी गावे, सादा की दूरी नावे, अपना नाम आप

सिद्ध करत लाल तब चतुर पातरो आयो रहाओ क्यों बिसरे इहो लाल प्यारो सर्व गुणा सुख दायो मंदर कर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हों हों पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो पांबीरी के पात पर दो बिन देखे दूरायो पयो किरपाल।

लोभी माया तारी नाम परे ओ भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी हर जियो निमाणिया तू।

आय सवाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पांची, बहुड़ पिता गल लावे। पिछले अवगण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावे, हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पे आख सुनाये, कहने कतन ना पीजे, गोविंद हर पावे पैज रखाये। अवर ओट में सगली देखी, एक तेरी ओट रहाये। ओए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने विनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावे, सब चूके मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा, सिमर सिमर प्रभ पए आनंदा, दुख कलेश सब नाथे, गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले सांठे, जग जीवन नाम तुम्हारा।

कीमत कह न जाई, पेख पेख जीवे प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई। तार अनुग्रह आप सब स्वामी, पत मत की नी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बाछो संतां धूरी। सोरठ मैला पंजवा, गुर पूरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हर अपनी कृपा तारी, प्रभ पूरन तेज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, पूनी बात न काई रहाओ, करते पुरख काल दिवाया, पिछे लग चली माया, कोट न कटहू आवे, मेरे पूरे सतगुरु हावे, सिमर सिमर दयाला।

सवारी मन सिंधिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो इस दिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर्गी ने सगल जी वक्ति ने जन नानक नाम।

देवें, प्रभु अपनिया संता देवें, हर गोविंद प्रभ राखिया, जन नानक साच सुवाखिया। सोरठ महला पंजवा, सोई कराए जो तुध भावे, मोहे सियाणप कछु ना आवे। हम बारिक तौ शरणाई, प्रभ आपे तैज रखाई। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रत

काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूरन जाके भागा मिल साध संग हर ध्याया आठ पहर आराध्यो हर हर मन किंदिया फल पाया रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावे नानक दास सच्चे गुण गावे सोरठ महला पंजवां गुर मिल प्रभु चितारिया कार्य सब

सदा हर जाते, प्रभु बालक राखे आते, शीतला छाप रहाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभु हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भया कृपाला रहाओ। प्रभु करण कारण समराखा, हर सिमरत सब दुख लाथा, अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवा, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती कार्य आए, अपना गुरु ते आए,

हर हर हर आराधो हर आराध सबो किछ पाये कार्य सगले साधो रहाओ। प्रेम भगत प्रभ लागी

दुख रोग का डेरा बनना, परमेश्वर दिता बनना, दुख रोग का डेरा बनना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब साई, पार ब्रह्म।

आओ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ आप सहाय होआ सच्चे दा सच्चा टोआ तेरी भगत वड्याई पाई नानक प्रभ सरनाई सोरठ महला पंजवा सतगुर पूरे भाणा ता जपया नाम।

कृपा करे जिस प्राण पट दाता सोई संत गुण गावे प्रेम पदत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ कहर हर का जस रवना दिखे खगौरी लाती संग मिलाए लिया।

खन्ना सगल रेन चारी, इस आगे तो न टिके विकारी, गुर पूरे ए गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरे तिसकी गत होवे, उधरे सगले कोटा रहाओ। संत संग जस गाया, ए पूरन हर तन पाया, कहो नानक आप मिटाया, सब पार ब्रह्म नगरी आया। सोरठ महला पंजवा, गुरपूरे पूरी कीनी, बस अपनी कर दीनी, नित आनंद सुख पाया, थाम सगले सुखी वसाया। हर की भगत फल दाती, हर की भगत फल दाती, गुरपूरे कृपा कर दीनी, विरले किन्ही जाती रहाओ। गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई, गुरबाणी गावे भाई, ओ सफल सदा सुखदाई।

निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवां। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। भूखे खावत लाज ना आवे क्यों हर जन हर गुण गावे। अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दर गए मुख उजल। सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यो कामी काम लुभावे त्यों हर दास हर जस भावे। ज्यो माता

सोरठ मैला पंजवा सुख सांद कर आया निंदक के मुख छाया पूरे गुर पहराया दिन से दुख सवाया संतो साचे की वडियाई जिन अचरज सोग बनाई रहाओ बोले साहिब कै भाणे बोले साहिब कै भाणे दास बाणी ब्रह्म वखाणे नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बनत बनाई सोरठ महला पंजवा प्रभ

0: गुरपुर लै तारे संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला। अपने भगत की गणत न गणी, राखे बाल गोपाला रहाओ। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुरपुरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया। हर नाम हृदय उधारे, तिन सबदे थोक सवारे, गुरपुरे तुस दिया, फिर नानक दुख न सिया।
1: सूरठ महला पंजवा, हर मंत्र

जिसनों बख्श ले मेरे प्यारे सो जस तेरा गावे रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा संता परवासा तेरा नानक प्रभ शरणाई मुख निंदक कै छाई। सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बनत बनाई फिर डोलत कथू नाही। साचे साहिब सिओ मन मानिया हर सर्व निरंतर जानिया रहाओ। सब जी तेरे दयाला अपने भगत करें प्रतपाला अचरज तेरी वड्याई नित नानक नाम त्याई। सोरठ महला पंजवा नाल नारायण मेरे जमदूत ना आवे नेरे कंठ लाए प्रभ राखे सतगुर की सच साख है गुर पूरे पूरी कीती दुश्मन मार विडारे सगले दास को सुमत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए सुख सांद फिर आए नानक प्रभ शरणाए जिन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा सर्व सुखा का दाता सतगुरता की सरणी पाई है दर्शन पेटत होत आनंद।

शरण आई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन भाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा करन करावन हर अंतर जामी जन अपने की राखे जय जयकार होत जग पीतर सबद गुरु रस चाखे। प्रभ जी तेरी ओट गुसाई तू समरथ शरण का दाता आठ पहर तुम त्याई रहाओ जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसे अंदेसा नाही सतगुर चरण लगे पौ मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दिलासा जिन कर आए सो

पाव करे, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करी, कौन नाम गुरु जा कै सिमरे, पाव सागर को तरी। कल मैं एक नाम कृपा निध, जाहि जपै गत पावे, और धर्म ताके सम नाहिन, एह विद वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नामा, माई मैं के विद लखो गुसाई, महा मोह अज्ञान तिमर मोह, मन रहो उरझाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो, नह अस्थिर मत पाई, बिख्या सकत रहो निस्बासर, नह छूटी अदमाई। साध संग कबहू नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई, जन नानक मैं नाहे को गुन, राख ले हो सरनाई। सोरठ महला नामा, माई मन मेरो बस नाहे, निस्बासर बिखियन को तावत, के बिदरो को ताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नाहीं बसावे, पर तन पर दा।

मरम न जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल विनाशी, तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फांसी। सोरठ मेला नावा रे नार ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहन पाजले नाम मुरार, कहो नानक निज मत साधन को पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ मैला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई, सगल जगत अपने सुख लागियो।

ओ संग छार सब पागे। कहो कहा जिया मन बौरे को इनस्यो निहो लगायो। दीना नाथ सकल पै पंजन जस तां को बिसरायो। स्वान पूछ ज्यों पयो ना सूदो बहुत जतन में कीनो। नानक लाज बिरद की राखो नाम तुहारो लीनो। सोरठ मैला नावा मन रे गयो ना गुरु उपदेश कहां पयो जो मूड मुडायो। पगवो कीनो पेश रहाओ साथ छोड़ के चूठे लागयो। जन्म अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखे।

नाम रतन बिसराना, रहो अचेत ना चेत्यो गोविंद, बिरथा औध सिरानी, कहो नानक हर बिरध पछानो, पूले सदा प्राणी, सोरठ महला नावा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ, नह निंदिया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अप

कट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नरको कीनी, ते एह जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों, ज्यो पानी संग पानी। सोरठ महला नावा, प्रीतम जान ले हो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग पांदे हो, को काहू को नाही रहाओ, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहु जिसके रह, विपत परी सब ही संग छाड़त, को ना आवत ने रह। कर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर पागी। एह विद को व्योहार बन्यो है, जांस्यो न्यो लगायो, अंत बार नानक बिन हरजी को कामना आयो। सोरठ महला पहला कर पहला, अष्टपदियां चौतुकी इक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा ना पड़ो हर बिन, होर ना पूजो, मरह मसान ना जाई, तृष्णा रात ना पर कर जावा।

साई। मन बैराग रतो बैरागी, शब्द मन वेदिया मेरी माई, अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिव लाई रहाओ। असंख बैरागी कहें बैराग, सो बैरागी जे खसमें पावे, हृदय शब्द सदा पैरचया, गुर की कार कमावे।

पतनामं मस्तक लेख जिया जगजोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पैमानं आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से ही साध जान ज्यो गूंगे मिठियाई अकथे का क्या कथिये पाई चालो सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत न काई ज्यो चलाए त्यों चाले पाई होर क्या को करे चित्राई एक परम पुलाए एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुकम चलावन हारा सेवा करी जे किछ होवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण प्रगासिया गुण में ज्ञान त्यानं नाम मन पावे कहे कहावे तत्तो तत्व खानं सबद गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरानं पूरा बैरागी सह सुभागी सच नानक मन मान सोरठ महला पहला तितुकी आसा मनसा बंदनी पाई कर्म तरम बंधकारी पाप पुन जग जाया पाई बिनसे नाम विसारी एह माया जग मोहनी पाई कर्म सबे वेकारी सुन पंडित कर्माकारी जित कर्म सुख उपजे पाई सो आत्म तत विचारी रहाओ शास्त्र वेद बके खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल न चूकी पाई अंतर मैल विकारी इन विद डूबी माकुरी भाई ऊंडी सिर कह पारी दुर्मत कणी विगूति पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम न पाई पाई बिन नाम में परम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आमन जान रहाई साच सहज गुरते उपजे पाई मन निर्मल साज समाई गुर सेवे सो बूजे पाई गुर बिन मग्न पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही विलोये पाई विचो निकले तथ जल मछिये जल देखिये पाई ए जग ए हावत गुर बिन परम विगूचिये पाई कट कट देव अलख एह जग तागो सूत को पाई दैदिस बांधो माए बिन गुर गांठ न छूटे पाई थाके कर्म कमाए एह जग परम फुलाया पाई कहना किछू न जाए गुर मिले पौ मन।

बुर अंकस जिन नाम दृढ़ाया पाई मन वस्या चूका पेख ए तन हाथ सराफ को पाई वखर नाम अपार ए वखर वापारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार तन वापारी नानका पाई मेल करे वापार सोरठ मेला पहला जिन्नी सतगुर सेव्या प्यारे तिनके साथ तरे तिना ठाक न पा

गुरबिन अलख ना लखिए पाए, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाए, जय पावे तें दे। बैसर बोले मीठली पाई, साच कह फिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अधिक रही हर नाए। सबको आख है आपना पाई, गुरते बूजे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईदन अधिक सके लिए पाई, पावक रंचक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुवाए। सोरठ महला तीजा कर पहला तितुकी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले, हर जियो हरनाथ समार पचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम पुलाया, हर जी ए तेरी वड्याई, भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरणाई रहाओ, भगतां नू जम जोहे ना साकै, काल न नेड़े जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाए। रिद्ध सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई, मन मुखा नू प्रतीत न आवे, अंतर लोभ सुआओ। गुरमुख हिरदय शब्द न भेजो, हर नाम न लागा पाओ, कूड़ कपट पाज लह जासी, मनमुख फीका लाओ। भगतां विच आप वरदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता, माया मोह सब

समाणी गुर के शब्द पछाता अचिंत काम करें प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वस्या सब काज सवारण हारा ओना की रीस करे सो विगुचे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख पौ के मुए बिल लाई आवे जावे ठौर न पावे दुख में दुख समाई गुरमुख होवे सो अमृत पीवे सहजे साज समाई बिन सत

जे अनेक कर्म करे अधिकाई। वेद पढ़े ते वाद वखाणे बिन हर पत गवाई, सच्चा सतगुर साची जिस बाणी पज छूटे गुर शरणाई। जिन हर मन वस्या से दर साचे, दर साचे सचियारा, ओना दी शोभा जुग जुग होई कोए न मेटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राख्या उधारा, सोरठ मैला तीजा दुत की, निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई। सतगुर की सेवा लाए, सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए। हर जियो आपे बख्श मिलाए, गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लेर लाए रहो। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे, साचे शब्द विचार, पौजल पार उतारन पाई, सतगुर बेड़े चार। मनूरे ते कंचन भय भाई, गुर पारस मेल मिलाए, आप छोड़ नाओ मन वस्या पाई, ज्योति ज्योत मिलाए। हों वारी हों वारने पाई, सतगुर को सद बलिहार है जाओ, नाम निधान जिन दित्ता पाई। गुरमत सहज समाओ, गुर बिन सहज ना उपजे पाई, पूछो ज्ञानिया जाए, सतगुर की सेवा सदा कर पाई, विच्चों आप गवाए। गुरमति पौ उपजे पाई, पौ करनी सच सार, प्रेम पदार्थ पाई है पाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवे अपना पाई, तिनके हो लागो पाए, जन्म सवारी अपना पाई, कुल भी लई बख्शाए। सच बाणी सच शब्द है पाई, गुर कृपा ते होए, नानक नाम हर मन वसे पाई, तिस बिघन न लागे कोए। सोरठ मैला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे पाग मिलाए, सदा सुख सोहागनी पाई, अंदिन रतिया रंग लाए। हर जी तू आपे रंग चढ़ाए, गावो गावो रंग राते हो पाई, हर सेती रंग लाए रहाओ। गुर की कार कमावने पाई, आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख ना लग गई पाई, हर आप वसे मन आए, फिर का हुक्म ना जाने पाई। साफ लखनी कुनार, मन हठकार कमावनी पाई, बिन नावे पूड़ियार। से गावे जिन मस्तक पाग है पाई, पाए सच्चे बैराग, अंदिन राते गुण रवे पाई, निरपो गुर लिव लाग। सबना मार जीवालदा पाई, सो सेवो दिन रात, सो क्यों मनो विसारी है पाई, जिस दी वड्डी है दात। मन मुख मैली डुमनी पाई, दरगह नाही थाओ, गुरमुख हो वै ता गुण रवै पाई, मिल प्रीतम साच समाओ। एक जन्म हर ना चेत्यो भाई, क्या मोह देसी जाए, किड़ी पवंदी मोह आयोन पाई, बिख्या नो लोभाए। नाम समाले सुख वसे पाई, सदा सुख सांत शरीर, नानक नाम समाल तू पाई, अपरंपर गुणी गहीर। सोरठ मैला पंजवा, कर पहला अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब जग जिने उपाया भाई, करण कारण समरथ, जियो पिंड जिन साजिया पाई, देकर अपनी वथ, किन कही है क्यों देखिए पाई, करता एक अकथ। गुर गोविंद सलाहिए पाई, जिसते जापे तत्, मेरे मन जपिए हर भगवंता, नाम दान दे जन अपने, दुख दर्द का हंता रहाओ। जाके कर सब किछे पाई, नौनिद परे पंडार, जिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा अगमा पार। जी जंत प्रतपाल।

रोग पुंचाए फुलायन प्यारे उतरे नाही विजोग जोगुर मेल उधारिया प्यारे तिन तुरे पया संजोग माया लालच अटिया प्यारे चितना वे मूल जिन तू विसरे पार ब्रह्म स्वामी से तन होए तूड़ बिल लाट करे बहु तेरिया प्यारे उतरे नाही सूल जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साकत संग न की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरे प्यारे सो मोह काले उठ जाए मन मुख टोई न मिले प्यारे दरगे मिले सजाए जो गुर मेल सवारिया प्यारे तिना पूरी पाए संजम सह सियान पा प्यारे इक ना चली नाल जो बेमुख गोविंद ते प्यारे तिन कुल लागे गाल होंदी वस्त ना जातियां प्यारे कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मिलायुन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे आंदिन कीर्तन गुण रवे प्यारे अमृत पूर पूर परे दुख सागर तिन लंगया प्यारे पावजल पार परे जिस पावे तिस मेल लह प्यारे से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान तिस सरनाई टै पए प्यारे जे अंतर जामी जान हालत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरे प्यारे नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवां कर दूजा अष्टपदियां इक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो निवल पुयंगम सादे पंच जना स्यो संग ना छुटक्यो अधिक अंग बुद्ध बादे प्यारे इन विद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रम्यो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीरथ जाए बस्यो सिर करवत धराए मन की मैल न उतरे ए बिद जेलक जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहुविध दान दारा अन बस्तर कूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन दंडौत खट कर्मा रत रहता हौ हौ करत बंधन में परया नह मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मे हर स्यों संग ना गया

कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का लहना तेरो सेवक ए रंग माता पयो कृपाल दीन दुख पंजन हर हर कीर्तन ए मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले।

पैवसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे फिर मिले खुशी रावे फिर संग सदा सिगारी नाओ मन कदे न मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे फिर पावे नानका कर्म मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावणी जा हर नाम टंडोले गुर पुरख मनावे अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रती हर रंग चोले हर जैसा पुरख न लब्बई सब देखिया जगत में टोले गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मन अंत न काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सतगुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सृष्ट करता सृजन हारिया तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया दाता करता आप ओगन हारिया सब तेरा शब्द वरत उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया श्लोक महला तीजा हौ मैं जलते जल मोए प्रम आए दूजे भाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए ए जग जलता नदरी आया गुर के शब्द सुभाए शब्द रते से शीतल भये नानक सच कमाए महला तीजा सफल्यो सतगुर सेव्या तन जन्म प्रवान जिना सतगुर जीवंदिया मोया ना विसरै सेई पुरख सुजान कुल उधारे आपना सो जन होवे प्रवान गुरमुख मोए जीवंदे गुरमुख मोए जीव दे प्रवान है मन मुख जन्म मरा है नानक मोए ना आखिए जे गुर के शब्द समाए पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव हर नाम त्याई है सत्संगत साधु लग हर नाम समाई है हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है हौ लाला गोला तुद मैं हुक्म फरमाई है हौ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाई है श्लोक महला तीजा पूरब लिखिया कमावना जे करते आप लिखियास मोठ गौली पायन विसरिया गुणतास मत जानो जग जीवदा दूजे पाए मोयास जिन्नी गुरमुख नाम न चेत्यो से बहन न मिलनी पास दुख लागा बहुत कणा पुत कलत ना सास कोई जास लोका विच मुह काला होआ अंदर उबे सास मन मुखानो को ना विसही चुक गया वे सास नानक गुरमुखानो सुख अगला जिना अंतर नाम निवास महला तीजा से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए सतगुर का पाणा अनदिन करे से सच रहे समाए दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अभिमान करे वेकार मनमुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार नानक पूरब लिखिया कमावना कोय ना मेटन हार पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगिए फिर आवे जाया जिना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहार।

सच नाम चित लाया। बिन नावे जग कमला फिरे, गुरुमुख नदरी आया। तंदा करतिया नेफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया। नानक नाम तिना को मिलिया, जिनको तुर लिख पाया महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यो कस्तूरी मिर्ग न जाने, परम दा परम पुलाया। अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया, गुरमुख विरले सो जी पई, तिना अंदर ब्रह्म दिखाया। तन मन शीतल होया, रसना हर साध आया। सबदे ही नाउ उपजे, सबदे मेल मिलाया। बिन सबदे सब जग बोराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है, नानक गुरमुख पाया पौड़ी। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाई है। तिस रूप न रेख अदृष्ट कहो, जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह, गुण गाई है। जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाई है।

नानक रंग ना उतरे ब्याह ना लगे के पौड़ी हर आप वरते आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर कंधे लाएंदा एक ना भगती लाए एक आप खुआएगा एक ना मार्ग पाए एक उजड़ पाएगा जन नानक नाम से आए गुरमुख गुण गाएगा। श्लोक महला तीजा सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हों मैं विच्चों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ। महला तीजा मन मुख मन अजित है दूजे लगे जाए किसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मन वस न आवई थके कर्म कमाए पेख तारी पेख कर थके हर हर तीरथ नाए। मन की सार न जाननी हों मैं परम तुलाए गुर प्रसादी पौ पया वड भाग वस्या मन आए पै पय मन वस होवा होमे शब्द जलाए सच रते से निर्मले ज्योति जोत मिलाए सतगुर मिले नाउ पाया नानक सुख समाए पौड़ी ए पूपत राणे रंग दिन चार सुहावना एहो माया रंग कुसंब खिन मैं लह जावना चलदिया नाल ना चले सिर पाप लै जावना जां पकड़ चलाया काल।

फिर मिलन ना पाए नहीं जब मैं ते मर जाए। सहसा रोग ना छोड़ई दुख ही मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श ले सब दे मेल मिलाए। मैला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिना ठौर न ठाओ। ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरे दो चारण बदनाओ। नानक गुरुमुख बख्शिए से सतगुर मेल मिलाओ। पौड़ी जो सेवै सत मुरार से पवजल तर गया। जो बोले हर हर नाओ तिन जम छट गया। से दरगे पैंदे जाहे जिना हर जप लया। हर सेवै से ही पुरख जिना हर तो।

आए पौड़ी। बैसकिया जस गावे गावन हारिया, हर नाम सलाहो नित हर को गलिहारिया। जिन्नी सुन मनिया हर नाव तिना हो वारिया, गुरमुखिया हर मेल मिलावन हारिया। हो बल जावा दिन रात गुर देखन हारिया।

नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी। से हर नाम त्यावे जो हर रत्या, हर इक त्यावे इक इको हर सत्या। हर इको वरते इक इको उत्पत्या, जो हर नाम त्यावे तिन डर सट कत्या। गुरमति देवे आप गुरमुख हर जपे।

बरकती सब जगत थाए जो रते हर नाए जिन गुर के शब्द सलाहया हर स्यो रहे समाए पंडित दूजे पाए बरकत न हो वही ना कन पल्ले पाए पर थके संतोख न आयो अम दिन जलत विहाए कूक पुकार न चुके ना संसार विचों जाए नानक नाम विहुणिया मोह काले उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हो बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा मित सेव हर सुख पाई बलहारी सतगुरु तिस जिन सो जी पाई। श्लोक महला तीजा पंडित मैल न चुकई जे वेद पढ़े जुग चार त्रै गुण माया मूल है विच हो मैं नाम विसार।

है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझिए जा आपे नजर करे महला तीजा। जिन गुरमुख नाम से आया आए ते परवान, नानक कुल उदार अपना दरगे पावे मान पौड़ी। गुरमुख सखिया सिख गुरु मेला आया, एक सेवक गुर पास एक गुर कारे ला।

नित पावनी है, किते काम न आई। जन लावो चित हर नाम स्यो, अंत होए सखाई। जन नानक नाम ते आया, गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा।

पौड़ी। जो हर नाम ते आए दे से हर हर नाम रते मन माही, जिना मन चित इक आराध्या तिना इक सुबिन दूजा को नाही। से पुरख हर सेम दे जिन तुर

आए। नानक जे गुरुमुख करे सो परवान है, जो नाम रहे लिवलाए पौड़ी। हौ बलिहारी तिन कहो जो गुरुमुख सिखा, जो हर नाम ते आएंदे तिन दर्शन पिखा। सुन कीर्तन हर गुण रवा, हर जस मन लिखा। हर नाम सलाही रंग स्यों, सब किल विथ कृथा। तन तन सुहावा।

फल पाई, जिनको हर लिख पाए। नानक गुर प्रसादी अनदिन भगत हर उचरे, हर भगती माए समाए पौड़ी। हर हर मेल साध जन संगत, मुख बोली हर हर पली बाण। हर गुण गावा हर नित चवा, गुरमति हर रंग सदा मान। हर जप जप औखद खा दिया, सब रोग गवाते दुखा कान। जिना सास गिरास ना।

पाए नानक गुर शरणाई उबरे सच मन शब्द ते आए महला तीजा। शब्द रते हो मैं गई सो बावंती नार पीके पाने सदा।

सतगुरु मिले ता पूरा पाई है, हर रस रसन रसाई पौड़ी। रैन दिनस प्रभात तू है ही गावना, जी जंत सरबत नाव तेरा त्यावना। तू दाता दातार तेरा जुखा खावना, भगत जना के संग पाप गवावना। जन नानक सद बलिहार है बल बल जावना। श्लोक महला चौथा। अंतर अज्ञान पही मत मद्दम, सतगुरु की प्रतीत नाही। अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपे कपाही। सतगुरु का पाना चित ना आवे, अपने स्वाय फिराही। कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाए।

आपके सुन गोई, सब इको शब्द वर्तदा जो करे सो होई, वड्याई गुरुमुख दे प्रभ हर पावे सोई, गुरुमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई। सुध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला इको ओंकार सतगुर प्रसाद। बुत पूज पूज हिंदू मुए तुर्क मुए सिर नाई, ओइले जारे ओइले गाडे तेरी गत दोहू ना पाई।

पाई। दर्भ संच संच राजे मुए गड ले कंचन भारी। वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। राम नाम बिन सब बिगूते देखो निरख शरीरा। हर के नाम बिन किनगत पाई कहे उपदेश कबीरा। जब जरिए तब होए पसम कन रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई।

आई बाजीगर स्वांश केला अपने रंग रवे अकेला कथनी के परम न जाई सब कट कट रही लुकाई जा को गुरु

निज निरखत गत व्यवहारा राव कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैनो जगत निहारिया पूत पिता इत जाया बिन ठाहर नगर बसाया जाचक जन दाता।

पया पिखारी अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राजपुर अंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया अनिक कटक जैसे फूल परे अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भोग वह सोई कह रविदास।

पानी आपन बापे नहीं किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास।

नाही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ए औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जा।

क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तपे हियाओ जीड़ा बिल लाए, सिज सवारे साचा सोए, तिस विसरिए चंगा क्यों होए, हिकमत हुक्म न पाया जाए, क्यों कर सास मिलो मेरी माए, रहाओ वक्षर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए, लोक पतीन ना पत होए, ता पत रह राखे जा सोए, जै देखा तेरे आसमाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुन उठ चलना मोत के ताल, क्या मुंह देसा गुण नहीं नाल, जैसी नजर करे तैसा होए, विण नदरी नानक नहीं कोए, तनासरी मेला पहला, नजर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हास्यों चित लागे फिर काल न खाए, रहाओ सच सिमरिय हो वे प्रगास, ताते बिखिया मह रह उदास, सतगुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, पंत नानक करे विचार, साची बाणी से तरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इहे शब्द है सार, तनाफरी मैला पहला, जियो तपत है बारो बार, तक तक खपे बहुत बेकार, जय तन बाणी विस्तर जाए, ज्यो पक्का रोगी विल लाए, बहुता बोलन चक्षण होए, जिन बोले जाने सब सोए राव, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजे पवन आखे सब जाए, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगे बैसन नाही जाए, कर्म मिले आखन तेरा नाओ,

सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने। काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे। सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप करे सगले कुल तारे।

नहीं सबका टब, खानस्त जग पृष्ट होए डूबता इव जग। कल में राम नाम सार, अच्छी तमी ते नाक पकड़े ठगन को संसार रहाओ। आंट फेती नाक पकड़े सूझते तिन लो, मगर पाछे कछ न सूझे ए पद्म अलो। खत्रिया ता कर्म छोड़िया मलेच पाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। अष्ट साज साज पुराण सो दे करें वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नाहीं कहे नानक दास। तनासी मेला पहला आरती इको अंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। तूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति।

सहज मूरत नन्ना एक तोही, सहज पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहज पद गंध इव चलत मोही। सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, जो किस पावे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हम जिनो मोहे आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, होए जाते तेरे नाम वासा। त्रासरी मैला तीजा, कर दूजा चौक दे इको अंकार। सतगुर प्रसाद ए तन अखुट नान खुटे ना जाए, पूरे सतगुर दिया दिखाए। अपने सतगुर को सद बल जाए, गुर कृपा से हर मन वसाए। से तनवंत हर नाम लिव लाए, गुर पूरे हर तन पर गासिया। हर कृपा से वसे मन आए रहाओ, अवगुण काट गुण हृदय समाए। पूरे गुर कैसे सुवाए, पूरे गुर की साथी बाणी। सुख मन अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई। दुखदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए। गुर प्रसाद वसे मन आए, सब में वसे प्रभ एक को सोए। गुरमति कट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया। नानक नाम मिले मन मानिया, त्रासरी मैला तीजा। हर नाम तन निर्मल अच अपारा, गुर के शब्द परे पंडारा। नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोह जले अभिमान। गुरमुख हर रस चाखे कोए, तिस सदा आनंद होवे दिन राती। पूरे पाक प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरते ते लोए। जो चाखे सो निर्मल होए, निर्मल नाम हो मैं मल तोए। साची प्रगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग। तिस सदा हरख नाही कदे सोग, आप मुख

सो तन पुरख जिस नाम प्यार। तिन प्रभ साचे इक सच लाए, उत्तम वाणी सबक सुनाए। प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार। तनास जी मैला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ। तिन हृदय साच सच्चा मुखनाओ, साचो साच समालो दुख जाए। साचे शब्द वसे मने आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए। सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा अग्न बुझाए। अंतर सांप सहज सुख पाए, गुर के पाने चले ता आप जाए। साथ महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी। मन मुख अंधे दुख विहानी, सतगुर पेटे ता सुख पाए। हों मैं विच्चों ठाक रहाए, किसनों कही है दाता एक सोए। कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचा धावा, त्रासी मैला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन हुए कैसे हर पाए। ए मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए। जिसनो बख्शे हर देव डियाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ। गुरमुख करनी कार कमावे, पाइस मन की सो जी पावे। मन में मत मैगल मिकदारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा। मन असाध साधे जन कोई, अचर चरे तो निर्मल होई। गुरमुख ए मन लया सवार, हो मैं विच्चों तजै विकार। जो तुर रखियन मेल मिलाए, कदे ना विछड़े शब्द समाए। अपनी कला आपे प्रभ जाने, नानक गुरमुख नाम पछाणे। त्रासी मैला तीजा, काचा तन संचे मूर्ख गावार। मन मुख पूले अंध गवार, विख्या कै तन सदा दुख होए। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा तन गुरमती पाए। काचा तन सुन आवे जाए रहाओ, मन मुख पूले सब मरें गवार। पर जल डूबे ना

कहोए, सब किछ साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सत साचा सत आप दृढ़ाए। नानक आपे देखे आपे सच लाए, तमाश्री मैं लाती जा, नामे की कीमत मित कही न जा।

कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ। हम मूरख मूरख मन माहे, हों मैं विच सब कार कमाहे। गुर प्रसादी हों मैं जाए, आपे बख्शे ले मिलाए। बिख्या का कान बहुत अभिमान है।

नानक परम पट फूले गुरु प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुरु स्यों मन मानिया तनासरी मैला चौथा कर पहला चौक दे इको अंकार सतगुरु प्रसाद जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कहे न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा लग संगत साध सवारी जो कंचन बै संतर पायो मल काटी कटत उतारी हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हर उर्धारी हर हर हर औषध जग पूरा जप हर हर हो मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी तना श्री मैला चौथा हर के संत जना हर जपियो तिनका दुख परम पौ पागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर के नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिग लागी रहाओ संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकुर हम सांगी जैसी मत देवो हर स्वामी हम कैसे बुलग बुलागी क्या हम किरम नाम निक की रहे तुम वड पुरख वडागी तुमरी गत मित कह न सके प्रभ हम क्यों कर मिले अतागी हर प्रभ स्वामी कृपा धारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तना श्री मेरा चौथा हर का संत सतगुरु सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम किसके सद कुर्बानी हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक तल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुकानी जिनके वड्डे पाग वड ऊचे तिन हर जपियो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तना श्री मैला चौथा हम अंधले अंध दिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली गुर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल युग का धर्म कहो तुम भाई किर छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपियो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपियो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साख जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो पदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग बए हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुरु इव हर हर नाम त्याई। हर दरगे पावे फिर जन्म न आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरि हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुरु भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पै है सखाई। तनाश्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय त्याए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर

तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। त्रासी मैला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम गुरु प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ जब मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हूँ तिन कह शब्द लिहारे जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देओ सोई हो पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। त्रासी मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करमानी बोलो पाई हर कीर्त हर कर जल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनों जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से अवर सब त्याग को है हर पानी। त्रासी मेला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा के वस है काम देना सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याय हर पुरख निरंजना राव जय हर सिमरन भया ते उपाद गत कीनी वड पागी हर जपना जन नानक को।

पाव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम समारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभु कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे जो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मैला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो।

ही संगे सतगुरु सबदी कीना रहाओ। काम हेत कुंचर ले फांक्यो ओ परवस पयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बिदारा। देख कुटंब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना अतरच्यो कर लीनो अपना, उन छोड़ खराब कर जाना। बिन गोविंद अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बुझायो प्रीत प्रभु सदकेला। सनातनी मैला पंजवा।

नामा बंधन से छुटकाए, मन से बिसरो सगलो तंबा गुर की चरणी लाए, साध संग चिंत बिरानी छाड़ी, अनंत बुद्ध मोह मन बासन देख कर गढ़ा गाड़ी, रहाओ ना को मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बहराई, ब्रह्म प्रचार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई, सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा मेल कियो मेरे राजन, बिन सियो तीठा अमृत बूठा सब लगो गुर मीठा, जल फल नहीं।

कयो प्रगास सदा सुख मन में सतगुरु पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद पीतर वसिया ता दुख परम को पागा कई प्राप्त वस्त अगोचर राम नाम रंग लागा चिंत अचिंत।

होते, तिनकी बात बिनानी अलंकार मिल फैली हुई है, तांसे कनक वखानी प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी कहो नानक ने चल कर बांधियो गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा वडे वडे राजन अर्पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा उद्दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा काम वंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई बर्ण न साको उस्तत, ताकी कीमत कहन न जाई, काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता, दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में, जिन सीधा मार्ग दिखाया हमरे प्राण गोपाल गोविंद, ईहा ऊहा सर्व शोक की जिसे हमारी चिंद रहाओ, जाके सिमरन सर्व निधाना मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगना से पगत बांचे सब तूरी, सर्व मनोरथ जे को चाहे सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी सिमरत पार कराना, शीतल शांत महा सुख पाया संत।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल बिख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत त्रासरी मैला पंजवा पानी पखा पीसो संत आ गए गुण गोविंद जस जाई सास पास मन नाम समारे ए विश्राम निध पाई तुम करो दया मेरे साई ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रवे सब मदे जब तक पेसो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जात पात पगत खा पूरी जो प्रभु कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अधाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभु की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब के लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुरु आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुखताया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना कि नहीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके बोले त्रासरी मैला पंजवा पूजा वर्त तिलक स्नाना उन दान बहु देन कहू न पीजे संजम स्वामी बोले मीठे बैन प्रभ जी को नाम जगत मन चैन बहु प्रकार खोजे सबका को बिकम न जाई लैन राव जात ताप प्रमन बसबा कर उर्द ताप ले गैन ए विद न पतियानो ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेते नानक सुख जन रैन।

ए मनवा बौर न कछू तावे है को ऐसो हमरा मीत सगल समग्री जियो ही ओ देओ अर्पो अपनो चीत रहाओ पर तन पर की।

संग संत संबाखन हर कीर्तन मन जागे गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल।

नानक शरण परयो दुख पंजन गुण गावे सदा अकार निंदक का मुख काला हुआ दीन दुनिया के दरबार त्रासरी मैला पंजवा अधर राखन हाथ तारिया पतित पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाओ गोष्ट पई साध के संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूरन नारायण सुंगी सगले तारिया औखद मंत्र मूल मन एक है मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रेन बांचे नित नानक पुने पुने बलिहारिया त्रासरी मैला पन्या मेरा लागो राम स्यो हेत सतगुर मेरा सदा सहाई जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राख्यो।

आधार जन काला रास पूंजी एक कौन मान दी बाण साचा नानक की प्रभ टेक सनातरी मैला पंजवा। फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

सब कुल कारण हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाये पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस

राख ले साहिब प्रभ मेरा तना श्री मैला पंजवा मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार खाटन को हर हर रोजगार संचन को हर एको नाम हलत पलत का कै आवे काम नाम रते प्रभ रंग अपार साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ साध की शोभा अतमस्कीनी संत वडाई हर जस्तीनी अनद संतन के भगत गोविंद सुख संतन के बिनसी चिंद जह साध संतन होवे इकत्र तह हर जस गावे नाद कवित साध सभा में अनद विश्राम उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम देकर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवे संतां दूर तनाश्री मैला पंजवा सो कट डरे जे खत्म समारे डर डर पचे मन मुख विचारे रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव सफल मूरत जाकी निर्मल सेव एक निरंजन जाकी रास मिल साध संगत होवत परगास जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटे हर नाए जन्म मरण सगला दुख नासे गुरमुख जाके मन तन बासे जिसनो आप लए लड़ लाए दरगे मिले तिसे ही जाए सेई भगत जे साचे भाणे जम काल से पए निकाणे साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन कहे विचार कट कट अंतर सगल आधार नानक जाचे संतरेणार तनाश्री मैला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कर बाहर तेरा दरवासा तू जन कह संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सामसलत परवान रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण चरण नानक दास हर हर संती ए विद जाति तनाश्री मैला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ से पाए कंठ लाए गुरु राखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर पाके जिनके मन साचा विश्वास टेक टेक स्वामी की शोभा अनद सदा उलास रहाओ चरण चरण पूरन परमेश्वर अंतर जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बीछड़े सो संगी गनिये दिन सजाए जो निमक में सो अलप सुख पनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कछ ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अचल अछेद अपार प्रभ ऊंचा जा का रूप जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप सामत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा तनाश्री मैला पंजवा जिन तुम तेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ अनद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेकल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नाशन पाजन थाके पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे अस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर के बचन आधार जय

जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करन हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पारगम सेवा, के उपदेश मोको गुरदीना जियो। किस त्यों ना लाई ही ते जा तो किस ना ही बीत, संत की बार ओ संग न चाले। मन पर तू आराध हर के प्रीतम साध, जा के संग तेरे बंधन छूटे। गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण, अवर आस कट पटल न की जय। सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई, नानक जा को कृपा की जय। थना श्री मेला पंजवा, मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना। देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पक चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिख्या विकार देख सगल है फीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन तन तन आपन सा प्यो। हर जपना निमक जा प्यो, अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जाको रे कर्म पला तिन ओट गही संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना। पायो रे परम निधान मिट्यो है अभिमान, एक है निरंकार नानक मन लगना। तनाश्री मैला पंजवा कर सतवा इको ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेश लोभ मोह मां पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक दिन सुरैन चितारे, साध संग जप निसंग मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारे, साध जना की रेन नानक मंगल सुख सदारे। तनाश्री मैला पंजवा कार अठवा दो पदे सिको अंकार, सतगुरु प्रसाद। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले। ए लोक परलोक संग सहाई, जत तत मोहे रखवाले। गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे। पाए न सा कह जा ले रहाओ, निरसन को तन अंधले कौटिक। मात दूध जैसे बाले, सागर में बोहित पायो हर नानक। करी कृपा कृपाले, तनाश्री मैला पंजवा। पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई। नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई, संतन को अनग सगल ही जाई। गृह बाहर ठाकुर भगतन का, रव रहा सर्व ठाई राव। पाको कोई न पहुंचन हारा, जाके अंग गुसाई। जम की त्रास मिटे जिस सिमरत, नानक नाम से आई। तनाश्री मैला पंजवा, दर्भवंत दर्ब देख गर्भ पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवारे, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हारे रहाओ, आन त्याग पे इक आसर। शरण शरण करे आए, संत अनग्रह पे मन निर्मल। नानक हर गुण गाए, तनाश्री मैला पंजवा। जांको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस्ता कै, जांका सतगुरु पूरा।

ठाकुर गाये आत्म रंग स्मरणी पावन नाम से आवन सहज समावन संग रहाओ जन के चरण वसे में रही रे संग पुनीता देही जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुखे ही त्रासरी मैला पंजवा जतन करे मानुख डैकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर मुह कर पावे पेख करे निर्वाने जानक दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उतते उतते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे ना ही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम परापत लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे उपाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनासरी मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध दिख जा रे राज माल जोवन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनासरी मेला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिलस ना कतहू जात सतगुर पूरे की नींदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निज साती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा

नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी देन तीठा कुर मेरे खसमाना करे आप नान के आनंद भय दुख पागे सदा सदा हर जाप सनातरी मैला पंजवा चतुर दिशा की नो बल अपना श्री ऊपर कर तारे हो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेते दयाल पुरख बख्शन।

औखी करी न देखन दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को साथ साथ प्रताले प्रभ क्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद अंत प्रभ सदा सहाय तन हमारा मीत रहाओ मन विलास पढ़े साहिब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई तनासरी मैला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पतदाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो हमें सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस खीज गया सब तन के प्रीतम स्योमन लागा रहाओ जय जय पेखो ते नारायण सगल कटा में तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब नुरागा तनासरी मैला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल मां बिख्या में लज्जा राखी राम राव सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुरबान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो सोग अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाय प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पे काटे मिल साधु बिन से शोक तनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोष होवे गुरबचनी प्रभ स्यों लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूर्ण काम तनासरी मैला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जय जय देखो तय तय स्वामी कोई न पहुंचन हार जो जो करे अवज्ञा जन की हो गया तत्चार करण हार रखवाला हुआ जाता अंत न पारा वार नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख अंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रभ तारो कृपा कर कारो पूजा कह फूप से पाड़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राख न हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सुरा लीजय। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजय। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एवं महांत कहे। आस्त्यास रमन हर कीर्तन एवं पदार्थ भागवंत रहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर्जामी नाम।

वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय राव। वडे भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराद मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोष किस पाप न फेरे जम जंदार ना वे नेड़े। कृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ शरणाई। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया। मन तन रसना नाम से आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साग संग्रहाओ। अनेक प्रकारी बस्तर उधाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए। हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण से आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई हो आ कर्म रत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तनहार स्वामी जन नानक सिमरै।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा कोही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न परम की काई। तनासरी मेला नामा, साधो ए जग परम तुलाना। राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहाओ मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना। जोबन तन प्रभ ताके मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, तास्यो मन न लगाना। जन नानक कोटन में किन्हों, गुरमुख होए पछाना। तनासरी मेला नावा, तिन जोगी को जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक न जाके, कंचन लो समानो। हर शोक ते रहे अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो। कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी मेला नावा, अब मैं कौन उपाय करूं। जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो उदर परो। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारे ना पुरख कहो कहू कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वत्सल तै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगतारे, अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी तर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, ना स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जै देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुरु करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुपेखे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों होए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सा लाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए।

जायो मानस जन्म संजोग पाया ताकि है ओत साध राखो देकर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाह सगल चिंत ठाकुर से मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद न चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान सगल आश्रम कीने मनुआ ने पति ने विवेक हीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटी है सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खे मन हठ जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी तो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक ला दे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जात।

तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुरु ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सत बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित सात तीर्थ मजना, सात ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यामी सात साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नामनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर कुन दान दयामते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत्सते, आराध एकंकार साचा नित दे करे सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कहे सब को एके वड आखी है, हौ मूरख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मान्या मेरा, पूछ करे आवे बिखला दे शब्द सचै गुर मेरा, आखन कोट न पगत पंडारी पर पुर रहे सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फेर न सच्चे कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोए आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाय सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो, दो रहा चलाए हुक्म सबाए जन्म हुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म न बूझे हुक्म सुहारन हारा, नानक साहिब सबक सिंजापे साचा सिरजन हारा, भगत सोहे दरबार सबक सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए गुर के शब्द विकाने, पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे साचे के व्यापारी, भूख प्यासो आप क्यों दर जाए साजियो, सतगुर पूछो जाए नाम ते आए साजियो, सच नाम ते आई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा, दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी, सनासी संत मैला पहला, तिर संग मूठड़िए खबर ना पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख ना मिटी पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी, तन जो बन आख की छाया बिर्द पै दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या,
बूढ़ी कर का लियो गुर के पाए चलो, साचा नाम से आए पावे सुख मैलो, हर नाम से आए ता सुख पाए, पेड़ दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए, अन दिन नाल प्यारे बिन पगति कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव पगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो, झूठे वैन चवे काम ना आवे जियो, झूठ अलावे काम ना आवे ना फिर देखे नैनी, अवगुणियारी कंत विसारी छूटी विदन रहनी, गुर शब्द ना माने फाई फाथी सा तन मेल न पाए, नानक आपे आप पछाणे गुरमुख सह समाए, तन सुहागण नार जिन फिर जानिया जियो, नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो, हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती, तिर रली आला जो बन बाला तिस रावे रंग राती, गुर शब्द विगासी सौरा वासी फल पाया गुणकारी, नानक साच मिले वडियाई तिर कर सो है नारी।

सहज नाम समावे। आप करता करे सोई, आप दे सा पाई है, हर जियो कृपा करे ता नाम ते आई है जियो, अंदर साचा निहो पूरे सतगुर जियो। हाँ तिस तेवी दिन रात मैं कदे ना विसरे जियो, कदे ना विसारी अन दिन समारी, जा नाम लई ता जीवा, श्रवणी सुनी ता ए मन तृप्त है, गुरमुख अमृत पीवा, नगर करे ता सतगुर मेले, अन दिन विवेक बुद्ध बिकरे, अंदर साचा निहो पूरे सतगुरे, सत संगत मिले वड पाग, ता हर रस आ

जियो। सहज समावे ता हर मन भावे, सदा अतीत बैरागी। हलत पलत सोबा जग अंतर, राम नाम लिव लागी। हरख सोग दोहा ते मुक्ता, जो प्रभ करे सो भावे। सत संगत मिले वड पाग, ता हर रस आवे जियो। दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोया जियो। हाय हाय करे दिन रात, माया दुख मोया जियो। माया दुख मोया हों मैं रोया, मेरी मेरी करत जिहावे। जो प्रभ दे तिस चेते नाही, अंत गया पछतावे। बिन नामे को साथ ना चाले, पुत्र कलत्र माया तोया। दूजे पाए दुख होए, मन मुख जम जोया जियो। कर कृपा लियो मिलाए, महल हर पाया जियो। सदा रहे कर जोड़, प्रभ मन पाया जियो। प्रभ मन पावे ता हुक्म समावे, हुक्म मन सुख पाया। अंगन जपत रहे दिन राती, सहजे नाम ते आया। नामो नाम मिली वडी।

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाए राव, हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं।

तेरी फिरे बदक ज्यों, कहो कवन विद की जय। सो दिन आवन लागा, मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर।

किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही, रहाओ सोबा राज बिबै बड़ियाई, अंत न साहू संग।

हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुख देह गृह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधि आई। अजामल गज गन का

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाई जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

आई। बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुण गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कढ़ावो। पाछे बौर नावन पावो अमृत बाणी कटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक पगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटावो। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर पगत करें जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम देव बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा कुसुम बास जैसे पवरला। जो कोकिल को अंब बालहा क्यों मेरे मन रामैया। चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला। जो तरणी को कंत बालहा त्यों मेरे मन रामैया। बारिक को जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा। मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया। साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला। सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला। पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना। कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना। पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा। असदा अस उसदा हर का बागरा नाचे पिंडी में सागरा रहाओ।

यम कारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तनाश्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे मादो ए जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सके रहाओ साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यों पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगता की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत सुकृत थारो कर्मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित तात्विक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहे न पारवी। कर्म कर कपाल मसीत श्री अमृत सत्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं। कर्म कर खार मसीत श्री दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिसल आन तोखी ले हरी। कर्म कर कछौटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहाओ। उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती रामा भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैता।

श्याम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता, हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा, हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा, हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा, मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा, खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा, गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा, दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा, तन तन वडे ठाकुर प्रभ मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथ तत कड़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा, हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा, हर हर अतुल तोल अतपारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा, किलविक मैल पाप सोवाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, देहो नानक नाम।

हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख।

प्रसाद सतगुरु प्रसाद। कोई जाने कौन इहां जगमीत, जिस होए कृपाल सोई विध बूझे, ताकि निर्मल रीत रहाओ, मात पिता बनता सुत बंदप, इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाय, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवधे, तामे संतोख न पाया। हस्त रथ अश्व पवन तेज तनी, पूमन चतरांगा, संग न चालियो इनमें कछुए, ऊट सिदायो नांगा, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाये, नानक की हां सुख आगे मुख उजल, संग संतन कह पाये।

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो। जैसरी मैला पंजवा तीरो सुन तीरो प्रभ को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभ को नीरो। बेसुमार बेअंत बड़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभ को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभ को। गुर प्रसाद नानक मन वस्या दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभ को। जैसरी महला पंजवा लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उजारा बिनसे परम अंधेरा। थान सनंतर सब नी जाई जो दिसे सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जैसरी महला पंजवा काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग। तजी सियानप चिंत विसारी अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ। जो देखो तौ सगल मोय मोहियो तौ शरण पर्यो गुर पाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। तरयो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैसरी मैला पंजवा मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा। प्रभ जियो माया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा। अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैसरी महला पंजवा जाको पय गोविंद सहाय। सुख सहज आनंद सगल स्यों वाको ब्याद न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई। एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरिय जिन रस रस हर गुन गाई। जैसरी महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे में दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम। चरण कमल अनूप अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप। हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जैसरी महला पंजवा कोई जन हर स्यों दे वै जोर। चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकोर रहाओ।
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपा ते मां बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

पंजवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

फूल्यो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौ पायो।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू राख लिहो पत मेरी जम को त्रास पयो उर अंतर शरण गही कृपा निज तेरी रहाओ महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा पै मरबे को बिसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा किए उपाव मुक्त के कारण दह दिस कौ उठ धाया कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मरम न पाया नाहन गुन नाहन कछ जप तप कौन कर्म अब की जय नानक हार पर्यो शरणागत अबे दान प्रभ दी जय जय श्री महला नावा मन रे साचा गहो बिचारा राम नाम बिन मिथ्या मानो सगरो ए संसार आ रहाओ जा को जोगी खोज तुहारे पायो नाए ते पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जग तुम्हें हर को कबहू नाए संभारा नानक शरण पर्यो

0: श्लोक।
1: दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। छंत।

जय प्रभु स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पू

चाले हाँ किस चिते या हिक दू हिक चाले अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख।

आप गवाया। जय तन पाग मथाने बहा पकड़, ठाकुर हों खिद्दी गुण अवगुण ना पछाने। गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी सा मैं पाई, वर लोड़ींदा आया वजी वधाई। मां मंगल रहस थिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आसा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूली है मोह मगन विकराल माया को प्रसादी कूली है लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पवजल फेरिया सलोक निर्थ न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिलेन थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत साथियरा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुखे गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम त्याए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिख बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया की ने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैतरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गर्व अटिया करते पाप अनेक माया रंग रटिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता ए करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उदम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन्मे आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक पर मैं परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन नै निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साद संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दी प्रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं।

मन वसंदड़ो सच सौ नानके हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे

पड़ी। सपने से पीछे तेरे मुंह रख लाया, बिसरे राज रस भोगे जागत बस।

बसंत स्वर्ग लोक जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड तमाशया चित नया वसना नानक कोड़ी।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दास मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े सच

जित मिलंदड़ो मां फिरी पौड़ी सारे ला कहो कौन है जित प्रभु को पाई सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर ध्याय के मन इच्छ पुजाई वडे भाव सत्संग हो।

जपंत नानक हर हर हरे। छड़ियो हब आपे लगनो चरणा पास नठड़ो।

पुन आठ पहर हर ध्याए हर जस नित सुन श्लोक दया करणं दुख हरणं।

प्रीतम प्राण हर प्रभु गुर मेले बहुर ना पव जल फेरा रहा मेरे हीरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया हर पादर हर प्रभ केरा हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा हर हृदय मन तन मीठा लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा लोभ विकार जिना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा ओए मन मुख मूड अज्ञानी कहिए तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्तक पाग लिख

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग्यानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापे जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अर जारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह विस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत ना ए मन लायो। विकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यों तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, एक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन कोख्यो, ने बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मद

भयो अनुग्रहो जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापतिते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथमू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा नानक बारक तुम

मांगो दान ठाकुर नाम और कछु मेरे संग न चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम तोड़ी महला पंजवा प्रभु जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

रोग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता लाए हमारी, रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार। हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे। हम निर्गुण लेहो बारी, सद बख्शिंद सदा मेहरवाना। सबना दे अधारी, नानक दा संत पाछे पर्यो। राख लेहो ए बारी, टोडी महला पंजवा। रसना गुण गोपाल निद गायन, सांत सहज रहस मन उपजो। सगले दुख पलाए रहाओ, जो मांगे सोई सोई पावे। सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहु ते छूटे। पवजल जगत तरायन, खोजत खोजत तत विचार्यो। दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे। जे नानक सदा सिमर नारायण, टोडी महला पंजवा। निंदक गुर कृपा ते हाट्यो, पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला। शिव के बाण सिर काट्यो, रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके। सच का पंखा थाट्यो, खात खर्चत किछ निखुटत नाही। राम रतन तन खाट्यो, पसमा पूत हुआ खिन पीतर। अपना किया पाया, आगम निगम कहे जन नानक। सब देखे लोग सबाया, टोडी महला पंजवा। किरपन

तन मन किलबिख भरे, साध संग भजन कर स्वामी, सातन को इक हरे रहाओ, अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे जिसका बोहित तिस आरादे, खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे, ओए उहां ही है तरे, जोर सकत नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ, काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ रहाओ, तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। संत प्रसाद वैद नारायण, करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूरन सुखदाता, नानक हर हर टेक। टोडी महला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप, पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी, वसदी की नी आप रहाओ, जिसके से फिर तिन्ही समाले, बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने, हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना, दया तारी हर नाथ, नानक शरण परे दुख पंजन, जाका बड़ प्रताप। टोडी महला पंजवा, स्वामी शरण परे ओ दरबारे, कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ, खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाये, माया रत बंधारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक आनंद करे हर जप जप।

आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो, सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। तोड़ी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी, आन अवर सिंजान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो, गुर मोह को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याए कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किछ तिसके।

देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो डीहर न्याई मोहे।

सागड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राचित मिट्यो रे। जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्व।

ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग के तन से सगल दूर की।

बंधन तोर छोर बिख्याते गुर को शब्द मेरा ही रह दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन पेख्यो लालन पाट बीच खोए आनंद चिता हरखे पतीन तिसी को गृह सोई प्रभ नानक सो ठाकर तिसी को तीन टोडी महला पंजवा माई मेरे मन की प्रीत एही कर्म धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाओ प्राण आधार जीवन तन मोरे देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट काट तो सा संग मोरे मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पे मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमक ही रहते अपने भगत को पूरन दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान आठ पैर रसना गुण गावे जसपुर अगावे समरथ पान तेरी शरण जियन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान टोडी महला पंजवा प्रभ तेरे पग की तूर दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ दह दिस रव रहा जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कहो न मरते चूर कंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन

सब देता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म पूम बीजन सोखावन विस्मन विषम पै विस्मादा आनन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जल रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई दो कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन पागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुरु मीठे वड़े पाग देवे परमेश्वर कोट फला दर्शन गुरु डीठे राव गुण गावत अचुत अविनाशी काम क्रोध बिनते मद पीठे अस्थिर पै सात रंग राते जन्म मरण बहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब चूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। तोड़ी महला पंजवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा रहाओ गुरपूरा पेट्यो बड़ पागी जा को अंक न पारा वारा कर गए काढ़ लियो जन अपना दिख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुरु बचनी बहुर न संकट द्वारा नानक सर

हर हर चरण हृदय उधार, सिमर स्वामी सतगुरु अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। कुन दान पूजा परमेश्वर, हर कीरत तक विचारे, गुण गावत अतुल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने, तिनका बहुर कछना विचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ।

कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाय रहाओ। जब चूठे को साज जान के पासों रुच उपजाई, दीन बंद सिमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई, कह नानक अब नाहि अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिने छपायो रहाओ। पंडित होए के देर बखाने, मूरख नाम जो राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम ले कही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के पर हांडी अच्छे है, राजा के कर सांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे है, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सिंह गो, देवल मदे लीग अच्छे है, लीग सीग हिंग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल अच्छे, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद अच्छे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम।

कला दो पद एक ओहंकार सतगुरु प्रसाद। सुन मन अकत कथा हर नाम रुद बुद्ध सिद्ध सुख पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम। शंकर करोड़ 33 त्यायो नहीं जानियो हर मरमाम। सुर नारे गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उकाम। नानक कृपा करी हर जिन को ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुरु दान दिवायो रहाओ। किस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। किन किन चक कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस प्यायो। जन नानक को हर पेते स्वामी दुख है मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो कुछ करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत्व विस्तारा विचता तू पंच आप।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटन करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर नित्य बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंश न पारावारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रासे उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जाके हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षों प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर।

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामन कंते भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला प्यामड़िए मानरा काय।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहेब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन त्याय रामा रहाओ सावेला चित नावे जित आए कंटक काल ग्रस है किस नानक ले छदाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होनहार, अगम आगाध ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गा है। जो दिन सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक प्रभु।

ले प्राणियां कुदरातें दा सृजनहार जिन पैदा तू किया सोई दे आधार जिन उपाय मेदनी सोई कर दासार कट कट मार।

अचरज तेरे रूप कौन जाने चलत तेरे अंधियारे महदीप। खुद कसम खलक जहान अल्लाह मेहरबान खुदाए दिन सुरैन जे खुद अराधे सो क्यों दोजिक जाए। अजराइल यार

अरे कंत लिया सुहागनी मैं ते वदवी एहे से गुण मुझे न आवनी कै जी दोष करे हे। जिनी सखी सौरावया तिन पूछोगी जाए

गुण तामन तामन करे तो प्यारे तो पावे, जो दिल मिलिया सो मिल रहा, मिलिया कही है रे सोई, जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई। तात मिले खुन तात को लिव लिव को तावे, गुर प्रसादी जानिए तो अन को पावे। पानावारी हुए कर खर सार न जाने, रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने। अप्यो पीवे जो

हरतिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया आए मिले गुर सुख आए मिले तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु ते पाए जिन गुर का

से आप हर पाया हर दर्जे पहनाया हर आप गलनाया जो गुरुमुख नाम से आएंगे तिन दर्शन दीजे हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल की जय पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाया जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे तिन जम मेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने नानक जिन सतगुर के प्या रंग रलिया माने सतगुर दाता किए उस परे पसाओ हौ गुर विटो सदवारिया जिन बिटड़ा नाओ सो तन गुरु सावास है हर देख नेहा हौ वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी जिन सुन सिखा गुर मन्या तिना पुख सब जावी हर का मार्ग आखिए कहो कित बिद जाइए हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वद दाने हो सतगुर को सगवा

जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहां गाफिल सोया जो तन उपजया संग ही सो भी संग न होया रहा मात पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटियो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लो जो हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय लै सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाव हर जस रे मना गाय लै जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

देव कतेव उस तरह पाई, दिल का फिक्र न जाए, सुख दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, ते जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बताहे, हक सच खालक खलक न्याने श्याम मूरत नाहे। आसमान न्याने लहंग दरिया, गुसल करदन बूद, कर फकर दाइम लाए चश्मे, जह तहां मौजूद। अल्लाह पाक पाक है, सच करो जे दूसर हो।

क्या करी नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीची तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रखती।

चंगी हजार आलम एकल खाना हम सुनी पाक्षा सामने बरना अस्पति गजपति नर नरिंद नाम के स्वामी मीर मुकंद।

दूध करम पुन सुर समायण होई निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशल कामा रहाओ। ए मन इतिहास करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिया इन दिग अमृत पावो। मन संपट जित अक्षर नावन तावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन विद साहिब रवत रहे। कहे कहे कहे जावे तुम सर अवर न को।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

जोग ना सुनसा, जोग ना दंड, जोग ना पसंद कराय, जोग ना मुंडी मूल मुडाय, जोग ना सुनगी वाई, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाई है, गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहिए सोई रहा, जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दिशंतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है, नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सुजी वाजे तो निरपो पद पाई है, अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है, सुई महला पहला कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब बुलावा, कौन गुरु कह कह दीखिया लेवा, कह कह मुल करावा, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जल कल मई।

इन विद चुप रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वंजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तिल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुखे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मेलो सत संगत, हम तो पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाठी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से दाल दलगा, तौ जन्म मरना मेट्यो गुर सब दी, हर अस्तुर सेव सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आगे, सिर वेच लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान है, दिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर दंड लगाना, सिर पछताने हाथ फलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रतपलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वडे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सद तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर पुख है हर रंग चालिया, फिर गौर न होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुख है हर उपदेशिया, हर के प्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आमन जाना अंग, हर प्रभ चित न आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिप पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सत संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मंतन रंग। सुही महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय सिद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें वो तेरे, सुखने सुख न होई। ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, तेरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए सुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे ब्या प्या सबद न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो बूजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरुमत नगरी खोज हो जाए। हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई। कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख गवाई। रहाओ हर गुण गावा जीवा मेरी माई,

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध श्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे इसका गावे आ थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्र...

मैं होर ताओ ना ही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझी पासे। विचे धरती विचे पानी विच कास अगन तरी जाए, बकरी सिंह इक पैसाए राखे, मन हर जब परम को दूर की जाए। हर की वड्याई देखो संतो, हर निमाने अमान दिवाए, जो धरती चरण

क्या तुझ पे आग सुनाइए बुरा पला तुझ सब किसू जाए जिहा को करे तिहा को पाइए। मेरे साहेब तू अंतर की दिल जाने बुरा पला तुझ सब किसू जाए तुझ पावे तिवे बुलावे रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मानस भगत कराई इतना सतगुर मेल सुख देवे एक मन मुख तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुझ सबना सिर लिखिया लेख देही तू नजर करे केहा को होवे बिन नदरी नाही को पेख। तेरी वड्याई तू है जाने सब तुझनो नित त्याए जिसनो तुझ पावे तिसनो तू मिले जन नानक सो थाए पाए। कोई महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए ते मुक्त पे जिन हर नाम से आया तिन पवित्र परम पद पाए। मेरे राम हर जन अरोग भय गुरु वचनी जिना जपया मेरा हर हर तिनके हो मैं रोग गए।

कर सकी है। अपना कीता किसु न होवे, ज्यो हर पावे त्यो रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किस कर हम साके। ज्यो पावे तिवे बस रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुद आपे कार लाया। जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे, जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सिस्त सब काजी, कोई छेवा करियो जे किसीता होवे। इक ना सतगुर मेल तू बुझावे, इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वडियाई हों आख ना साका, हों मूरख मुगद।

जल थल मैयल रहा भरपूर, निकट वसे नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाई है, साथ लगे ताहो मैं जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोर करो अरदास, खुद पावे तान है रास। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सूरी महला पंजवा। तन सुहागन जो प्रभु पछाने, माने हुकम तजै अभिमान है। तैसो राती रलिया माने, सुन सकिए प्रभ मिलन निशानी। मन तन अर्प तज लाज लोकानी, रहाओ सकी सहेली को समझावे। सोई कमावे जो प्रभ पावे, सा सुहागण अंक समावे। गर्भ गहेली महल ना पावे, फिर पछतावे जब रैन बिहावे। कर्महीन मनमुख दुख पावे, बिनो करी जे जाना दूर। प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावे देख दूर। सुई महला पंजवा। गृहवास गुर की ना हो कर किनार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री में कर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी। कौन कहा गुण कंत प्यारे, सुगर स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम कंबोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे। गुण कामन

प्रगटिया सूर जोत उजियारा, सेज विछाई सरद अपारा, नव रंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर तन मिल सुख पाया, सुही महला पंजवा। उमक्यो हियो मिलन प्रवताई, खोज चर्यो देखो प्रह जाई, सुनत सदेश रो प्रह गृह सेज विछाई, प्रम प्रम आयो तो नदर न पाई, किन विद हीरो तीरे निमानो, मिल साजन हो तुझ कुर्बानो, रहाओ एका सेज विछी तन कंता, तन सूती फिर सज्जा गंता, पियो मधुरो तन मतवंता, तन जागे जे फिर बोलंता। कई निराशी बहुत दिन लागे, देश दिसंतर में सगले चागे, चिन रह न पावो बिन पग पागे, होए किरपाल प्रभ मिले सवागे। पयो किरपाल सत्संग मिलाया, बूझी तब करें फिर पाया, सगल सिगार हूं मुझे सुहाया, कहो नानक गुरु परम चुकाया। जय देखा तह तिर है पाई, खोलो कपाट का मंथ है।

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन तरसे चरनारे, पावो दान टीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभु जनों सुनी जय, कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदाते पुरुष खुवाए। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाए चूत।

ओ किस पाई जो हो ये रे ना जिसे बुझाए किस नाम लेना सुही महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे गल में पान ले लटकावे परमे पूला साकत फिरता नीर बिरोले खप खप मर

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पाम मलोवो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध।

मैं खरीद हूँ दासरो तेरा, तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा, कोट दास जा कै दरबारे, निमक निमक वसे तिस नाले, हों किछ नाही सब किछ तेरा, ओत पोत नानक संग वसे।

जाके सिमरन कच पौना व्यापे, सदा सदा नानक हर जापे। सुही महला पंजवा, गुर के बचन हृदय ध्यान तारी, रसना जाप जपो बनवारी, सफल मूरत दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण हारी, रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी, अमृत कथा सुन करना धारी, काम क्रोध लोभ मोह तजारी,

अभिमानी स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा देखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो कित करे जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी राव कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे को चार माटी का भांडा अत कुटीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे नी जय सूही महला पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ

पहचाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जाके हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन प्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पल जल डूबत सतगुर काढे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यो लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला।

जब तक देखो हर संग सहाई, जब मेरी पत मेरी तन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम, रहाओ पार ब्रह्म जब पहर सनाहा, कोट आवद किस बेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सखिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। तुही महला पंजवा। बैकुंठ नगर जहां संत वासा, तब चरण कमल रिद महे निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो। रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने ना जाहे, लोभ मुआ तृष्णा।

कृपा प्रभ अपना करया तुम्हें छदाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दोख महा विकराला खिन में दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जपना मुरारी दृष्ट तार लीनो लड़ लाए हर चरण गए नानक शरणाए सुई महला पंजवा दीन छदाए दुनी जो लाए दोही सराय खुनामी कहाए जो तिस पावे सो प्रवान अपनी कुदरत आपे जान रहाओ सच्चा कर्म पुन पला कराए दीन कह तोसे दुनी ना जाए सर्व निरंतर एको जागे जित जित लाया तित तित को लागे अगम अगोचर सच साहे।

सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी, रैन दिन गाओ, जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ। सो साहो सेव जित तोट ना आवे, खाप खर्चत सुख अनद विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक।

चरण कमल जाए बलिहारा, तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा, रहाओ साथ संगत क्यों प्रीत बने आई, पूरब कर्म लिख तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न साके तीने ताप, निमख न बिसरे हर

साध गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस मेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा बैठी जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माद रे पज

तरण कारण समरथ अपार रहाओ, सब रोग मिटावे नवा निरोआ, नानक रखा आपे होआ। तू ही महला पंजवा, दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई, प्रेम बिछोहा सत कसाई, निर्दय जंत तिस दया न पाई, अनेक जन्म बीतन परमाई, कर वास न देवे दुतरमाई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दी।

कामना तौल हर जित हर बिसराय रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभु चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज न किते काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर दिस्या जे रच लो भाए सब किसी तुम रह हाथ।

की न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का

जप मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है। संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया रहा निर्गुण हरिया सरगुण तरिया अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया तहां आनंद करिया नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया बहु विध प्रिया पर को हिरिया दिखना किरिया अब साधु संग परिया हर द्वारे खरिया दर्शन करिया नानक गुर मिरिया बहुर ना फिरिया सुही महला पंजवा रात मंडल की नो आखारा सगलो साज रखियो पासारा रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा देखे खुशी भोग नहीं हारा सब रस लैत बस निरारा।

तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हौ कुर्बानी तेरिया सेवका, जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरिया, जा पाया अगम अपा।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रतपाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे तो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर ना तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुखदाते। दिन रैन सात सात गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हों तो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहा वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता, तिन भी अंक न पायो तेरा, लाए थके विभूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन केट्यो।

निमुख सिमरत जि छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का, सो गुर प्रकादी करिए रहाओ। को तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते छिमरत सब शास्त्र, किन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई।

ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सबनी थाए, जिन प्रभ के चरण पर आते, मेरे राम हर संता जीवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभ अपने।

जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, किन हर स्यों आन मिलावे, माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावे, जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने, सुही महला पंजवा, मां अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरणाई, तेरा मान तान रिद अंतर, होर दूजी आस चुकाई, मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे, रहाओ अंध कूप से काढ़ लिए तुम, आप पे कृपा।

अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह विनाशे मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुखदाते पेटिया सतगुरु पूरा। तू ही महला पंजवा जब कछ ना सियो तब क्या

आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतू काची देह ध्यानी कृपा करो कब करने हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते कट कट तू ही त्याय तेरी गत में तू है जाने कुदरत कीम न पाये निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञान।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से आए सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हों बल जाय के साता कर चवर टुलावा चरण तूर मुख।

बादशाह सच्चे से पीराते सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन।

पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण तूर तेरी सेवक मांगे है तेरे दर्शन को बलिहारा मेरे राम राय ज्यों

कुर्बान जाए उस वेला सुहावी जित तुम रह द्वारे आया नानक को प्रभ कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही महला पंजवा तुझ चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुझ सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमानी अरदास करी।

अमृत वचन हृदय उधारी तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारी तुझेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ

आइए गुरु प्रसाद पाओ करिए आप त्याग होइए सब रेणा जीव त्या यो मरिए सफल जन्म तिसका जग पीतर साथ संग नाव जाते सगल मनोरथ तिसके पूरन जिस दया करें प्रभ आपे दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी तेरी शरण दयाला कर कृपा अपना नाम दीजै नानक सागर वाला राग सुही अस्पदिया महला पहला कर कहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों कर कंस मिलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना फुल टंग ना मीठे बैना रहा सह सिदार कामन कर आवे पां सुहागन जा कंते भावे ना किस रूप ना रेख्या काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लावो।

सच्चे सेती रतियां जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे सोच।

अवगण मुट्ठी जे सिरे बदत खाए ना पाहे जियो। गुरु रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित

से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे, फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे, तित तन कैसी पुख जियो। बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे, बख्शे बख्शन हार जियो। अनको की जय मित्रा, खास रले मर जाए जियो। बहुरंग देख पुलाया, पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है, नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया, गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। किंचो तान विगुची है, बुरा पला दोए नाल जियो। दिन सब दे पैर रत्या, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ। मन तन सच सलाए।

गुणसार अंतर तू वसे, तू वसे मन माहे सहजे रस रसे, मूर्ख मन समझाए आंखों के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा, नित नित हृदय संभाल प्रीतम आपना, जे चले गुण नाल ना ही दुख संतापना, मनमुख परम पुलाना ना सिस रंग है, मरसी होए विडाना मन तन पंग है, गुर की कार कमाए लाहा तारे आने, गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया।

ज्यो आरन लोहा पाए पन कड़ाई है, क्यों साकत जोनी पाए पवे पवाई है। दिन बूझे सब दुख दुख कमावना, होमे आवे जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखन हार, हर नाम ते आई है। मेले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है। तू देखे थाप उथाप दर बीना आई है। देही होग खाक पवन उड़ाई है। इहो किथे कर औकात महल न पाई है। देहो जीवी अंधकोर कब मुहाई है। गर्भ मुसे कर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जोत दीपाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है। सदा रहे निकाम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाव मन वसाई है। नानक मेल मिलाए जे तुद पाई है। सुही महला पहला मनो ना नाम विसार एन स्त्याई है। जो राखे कृपा तार तिवे सुख पाई है। मैं अंदुले हर नाम लगती तोहनी, रहो साहिब की टेक नाम हो है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर दिखा लिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवें रजाए परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागे मरना आए कह, जन्म

垃圾呀、啊。阿布塔布塔布，什么尼玛子呀？दो ही पसंद रुलाए न जाती कह गया आपे रह समाए सो विस्माद कया तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरुमुख वेख हदूर।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मो वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए तो सतगुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिस दा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अक्सवाल्यो फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुर का शब्द समाले हर की भगत सदा

काया अंदर सब किछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख।

नरके कोर पवन। ये मन जैसा सेवै तैसा होवै तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना कहना किछु न जाए। महापुरखा का बोलना होवै कितै परखाए। ओए अमृत परे भरपूर है ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन सेवट पागी जे ओना।

मन मुख मन ना पिजई आत्मै ले चित कठोर सपै दुज पियाई अंदर विसने कोर आप करे किस आखिए आपे बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना टिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमै वारो वार पै किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन से पाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची पवित्रेन सच वणन जय गुरु सब स्यों लाहा नाम लेन सोयना रूपा पाप कर कर संची है चले ना चल दिया नाल विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन न जाए गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुरु सेवन अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन नान खुटे हर गुण सहज रवन ना ओए जन्मे ना मरे ना ओए दुख सहन गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द क्रम कटी है अचिंत वसै मन आए गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिनके बलिहारण मन हर गुण सदा रवन रहाओ गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन उर पूर्व होवे लिखिया गुरपाणा मन लेन वडभागी कर खोजिया पाया नाम निधान गुरपूरै वे खा लिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय गुर प्रसादी मन वसै तित तट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए बुरा कला तिचर आपदा जिचर है दो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए राग सोही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा हम किस पे आप विचाई दर्शन हर देखन कहताए कृपा करे त सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहाओ जे सुख देहे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई जे भुख देहे ताई ती राजा दुख भी सुख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सोखाई नानक गरीब कह पया दुआर है हर मेल लहो वड्याई अखी काड करी चरणा तल सब करती फिर मत पाई जे पास बहा लेता तुझे अराधी जे मार कढ़े भी त्याई जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदे ता छोड़ न जाई जे तुद वल रह ता कोई किहो आखो तुद विसरे मर जाई
वार वार जाई गुरु ऊपर तै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसै पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोब करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिरसाई। सेवक का होई सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे तुझ सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे जिस पावे तिस दे वाई। जिस तू दे सोई जन पाए होर नेफल सब चतराए। सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाए। एक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुख किच थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वर्षे गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभपूर रहो है जत कत तत् गुसाई। राग सूही महला चौथा अष्टपदियां।

बिख्या कै संगा, मने व्यापत अनक तरंगा, मेरे मन अगम अगोचर, कत पाये पूरन परमेश्वर रहाओ। मोह मगन मह रहा व्यापे, अब तृष्णा कभू नहीं त्रापे।

जान ना पाये प्रभ दरबारा, आसा अंदेशा बंद पराना, महल न पावे फिरत बेगाना, सगल ब्याज के वस्तर दीना, फिरत प्यास जो जल बिन मीना, कछु सियानप उकत ना मोरी, एक आस ठाकुर प्रभ तोरी, करो बेनती संतन पासे, मेल हो नानक अरदासे, पयो के

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत न पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिये जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे।

रहाओ। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझु पर बहुमानिया, जा तू अंदर ता सुखे तू निवाणी मानिया, जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल, यहा पाई मुदातड़ी नित हृदय रखा समाल। पाप जुलाई पंद पाओ नए दर्श दिखाल, श्रवणी सुनी कहानियां।

हो कह न सका गुण तेरिया। सहिया कौ असंख मंजो हव वदानिया, चुप पोरी नजर निहाल देह दर्श रंगवाणिया। जय जिठे मन तीरी है किलविक वंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे। होए निवाणी टह पई मिलिया सह सुभाए, पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय। सुही महला पंजवा, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। नाम निधान अपार भगता मन वसे, जन्म मरण मोह दुख साधु संग न सह रहाओ। मोह बाद अंकार सर पर लुनिया, सुख न पाएं मूल नाम विछुनिया। मेरी मेरी तार बंधन बंदिया, नरक सुरत अवतार माया तंदिया। सोदत सोदत सो तत विचारिया, नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया। आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते। जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया। खोजे कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है। विसर नामी दातार अपना नाम देहो, गुण गा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला कुचज जी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मंज कुचज जी अमावन दोसड़े, हों क्यों सो रावण जाओ जियो। एक दू एक चरण दिया कौन जाने मेरा नाम जियो। जिन्नी सकी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो। से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो। क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाम जियो। इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो। से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो। हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो। अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो। सातन चली सहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो। तै सह नालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो। तुद गुण मैं सब अवगुणा एक नानक की अरदास जियो। सब रात

पहला सुचत जी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाणे तख्त वडाइया पाणे पीप उदास जियो पाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परियास जियो पाणे सो सोह रंगला सिफ्त रता गुण तास जियो पाणे सोह पिहावला हों आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हों कह कह तह पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो गुर शब्दी सो पाया सच नानक की अरदास जियो सुही मैला पंजवा गुणवंती जो दी सह गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो आखा बिरथा जी की गुर सज्जन देह मिलाए जियो सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंत न काहू जाए जियो ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो

गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े, गुर कहे सुकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा पाओ जियो। क्यों पावे हर दर्शावड़ा, न लगे तत्ती वाओ जियो। हौ आपो बोल न जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो। हर भगत खजाना बख्शिया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी, हौ रजा तृप्त आघाए जियो। जो गुरु दी सह सिखड़ा, तिस निव निवला।

पूरे जैसी आशा तैसी मनसा पूरे या पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण राण न मैले वैसे नानक मैं वरसाचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहोर बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया नेत न सके कोई जान जी ना रहने केवल रब रहा त्यो लोई माया निराशी रोए विचुनी बाली बाले हेते नानक सा सब सुख मैली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल जितनी दूर ना आवे कर पई है बलराम जियो रहसी देख दूर फिर रावी कर सोई है बलराम जियो साचे फिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मग पूरी प्रधाने संजोगी मेला थाम सुहेला गुणवंती गुर ज्ञाने सच संतोष सभा सच पल्ले सच बोले फिर पाए नानक विछड़ना दुख पाए गुरमत पंख समाए राग सुही मेला पहला संत कर दूजा।

झिलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया। साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया। अंजन मेल कया मन मानिया कर मंदर सोहाए। पंच शब्द तुम अनहद वाजे हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे सच मंगल गावो ताप तप पावो सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थाम सुहाया कार्य शब्द सवारे। ज्ञान महारस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया। सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो। जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो। तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना। सुनो सकी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना। आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए। काल विकाल कहे देवाने मन राखिया गुरु ठाए। नानक अवगुण सब जलाए गुण संगम तब पाए। राग सूही महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आओ सजना हो देखा दर्शन तेरा राम। कर आप नड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा। दर्शन देख कहीं नहीं केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए। नानक साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

गुण संग्रहम सी खरी सरसी जहाँ रावी रंग राते अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदाते तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

नाम प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसदी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सताई नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनहद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंत महला पहला कर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिनकिया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सों गादिया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सों से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गहर है सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वे वासला कद वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल साज करी जय साज करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चली है पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मल्ली है जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत की जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखिए होर करे न कोई आखणता को जाई है जे फूलड़ा होई जे होए फूला जाए कही है आप करता क्यों फूले सुने देखे बाज कहे है दान हर मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नाम का सच सोई आप करे किस आखी है होर करे ना कोई सूरी महला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी सास की साचा सुख होई सुख सहज आवे सास पावे सास की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले

मन मैं लिया किने अमृत पिया, मत अमृत पिया ए मन दिया, गुर कह मोल कराया, आप नड़ा सब सहज पछाता, जामन सा फैलाया, तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा, क्यों मिले होए पराया, साहिब सो साल आई है जिन जग तो पाया, आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता, प्रीतम स्यो मन मानिया हर से तीराता, साहिब रंग राता सच की बाता, जिन बिंब का कोट उसारिया, पंच पू नायको।

कौन अफेवे तंत मंत्र पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसै ते सूजै गुर सबदी सच जानिया साजन होन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माहे साजन करह रलिया करम करम सबाया अठ सठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन रंग रंगीलड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेथिये क्यों पादर जाने आप मुसे मत होछिये क्यों राह पिछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूडो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

मन परदेसी जेती है सब देश पर आए। गुरमहली कर अपने सो पर कुरलीना, सेवक सेवा तो करे सत शब्द पतीना। सब दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे,

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई, कीमत सो पावे आप जनावे आप अपुल न पुले, जय जयकार करे तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य, हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई, नानक जिन कर देखिया देवे मत साई, राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो, गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुर अपने बिटो जिन कारे सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जापो सुख फल हर जन पावो, नानक कह सुनो जन पावो।

मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज भी गोई विन गुर तत न जानिया भगत भी होना सब जग परमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सत सोई नानक नाम मिले वड्याई दूजे पाए पत खोई भगतां कै कर कार साचा हर गुण सदा वखाणे राम भगत खजाना पे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन पाणे नाम निधान सच पाया सदा फुट कदे नाम खुटे हर दिया सह सुहाया हर जन ऊंचे सद ही ऊंचे गुर कै सबद सुहाया नानक आपे बख्श मिलाए जुग जुग सोगा पाया सुही महला तीजा सबद सच्चे सच सोहेला जिथे सच्चे का होए विचारो राम हो मैं सब किलबिख काटे साथ रखिया।

उत्तर तारे फिर पाव जल करण न होई सच्चा सतगुरु सच्ची बाणी जिन सच बिठा लिया सोई साचे गुण गावे सच कमावे सच वेखे सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा होई साचे सतगुरु साच बुझाया तक राखे सच सोई राम सच्चा भोजन पाओ सच्चा है सच्चे नाम सुख होई राम साचे नाम सुख होई मरे न कोई गर्भ न जूनी वासा ज्योति ज्योत मिलाई सच समाये सच नाय प्रगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अम दिन सच आयन नानक सच नाम जिन हृदय वस्या ना बिछड़ दुख पायन सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे चित कर सोयला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वर्तै सच्चो बोले जो सच करे सो होई जय देखा तै सच पसरिया और न दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावे मर जन में दूजा होई नानक सब कुछ आपे करता आप करावे सोई।

सच्चा सबद सच्ची है शोभा साचे ही सुख होए। साच रते भगत करंगी दूजा रंग न कोई, नानक जिसको मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा जुग चारे तांजे पवै

सदा होवे सुहागनी हर जियो मरे ना जाए राम। हर जियो मरे ना जाए गुरु के सह सुवाए सातन कंठ प्यारी सत संजम सदा है निर्मल गुरु के सरचिदारी। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप उपाया नाम सदा तिर रावे अपना जिन गुरु चरणी चित लाया।

तित तन मैल न राती, हर प्रव राती, मेरा प्रभ मेल मिलाए, अंजन रावे हर प्रव अपना विच्चों आप गवाए। गुरमत पाया सहज मिलाया, अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले बड़े आई, प्रभ रावे रंग राती।

बहु कृपा तारी हर कै सबत सुहाए राम मिल सबत सुहाए आप गुवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड पागी जे चले सतगुरु भाए हम नीवी प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम कट कटे सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसे इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वड पागी गुर पाया कट कट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलक लखाया सहजे अनद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमेय गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभु दाता, सतगुरु पुरख मिलाए। जन्म जन्म के बिछड़े जन मेले, नानक सह सुभाए। आया लगन गणाए, हृदय तन उमाया बलराम जियो। पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो। पत्ती बचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरुष अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विचर करे न जाए। सुही महला चौथा, हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो, पाप सजाया बलराम जियो। कर्म दृढ़ो हर नाम से आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया।

निरपो कै मन होए हों मैं मैल गवाया बलराम जियो। निर्मल पौ पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्व रहा पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए। हर चीजड़ी लाभ मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो।

खास शब्द लिवलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा, सब में रब रहा।

न जाए। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद दुत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया वडपागी सच नाम लिवलावे, मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वडिआई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूरी महला चौथा हर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे, हम मन तन देवा सतगुर है मैं मेले प्रभ गुणता से, तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर सब आसे, वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया, हर मार्ग पंथ दसाहा, कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा, हों तुझ बाजू

मन दैद से चल चल परमिया, मन मुख परम को लाया, नित आशा मन चितवे, मन कृष्णा भुख लगाया, अंता तन कर दबिया, फिर बिख पालन गया, जन नानक नाम।

गुर शब्दी हो मैं छुटिया। वस आण होवे जन इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया। दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया। गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौदिया। जन नानक प्रभ देहो मती छड़ आसा नित सुख सौंदिया। सा तन आसा चित करे राम राजिया हर प्रभ सेजड़ी है आई। मेरा ठाकुर अगम दयाल है राम राजिया कर कृपा लिहो मिलाई। मेरे मन तन लोचा गुरमुखे राम राजिया हर सरदा सेज बिछाई। जन नानक हर प्रभ पानिया राम राजिया मिलिया सह सुभाई। इकत सेजै हर प्रभु राम राजिया गुर दसे हर मेले। मैं मन तन प्रेम बैराग

सेव ठाकुर नाथ पुराणा, सुन बावरे जो आया तिस जाना, निचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचै कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ।

ते पाई साचे सृजनहारा, जिससे खाली कोई नहीं ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सफल दस पेटिया गुरपुरा, नान सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया, बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी, गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ, नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, सुख दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख बजे वाजे अनहदा चुनकारे, सुन पै विनाशे सगल नानक, प्रभ पुरख करने हारे। उपजया तत ज्ञान सहुरै पई है, इक हर बलराम जियो।

आवन लागे, हर रंग अंधन जागे, हर रंग जागे, पाप पागे, मिले संत प्यारिया, गुर चरण लागे, परम पागे, काज सगल सवारिया, सुन श्रवण बाणी, सहज जानी, हर नाम जप वड पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे, अनाथ सबद सुहावा, सच मंगल

बिनवंत नानक दया तार हो सदा हर गुण गावा। गुर मिल सागर करया हर चरण जपत मुस्तरया हर चरण से आए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुवाए हर जप अपने प्रभ पावा। जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जप देखा तत सोई।

वरदाना कर मेरा मत साई, कृपा की जय सौ मत दी जय, हाथ पैर तुत आई। गर्भ ना की जय रेण हो भी जय, तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अट गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो, इतनी लोहरिया राम, हो किछ नाही, एको तू है, आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा, सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना, आसन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी, तू जाना है जाना राम, सोई जाने सोई पछाने, जाको नगर सिरंदे, मन मुख फूली बहुती राही, फाती माया फंदे।

तू करवत मेरा ओला राम हों बल बल जाई लख लख लख दरिया जिन परम पर्दा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकुर सो मन माना प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खोला कहो नानक हों निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पोख सतगुरु मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता ताई सुत बंदक जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रहा पर पूरे ताकी शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सब कुर्बाना ऐसा गुरु वडकागी पाये जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलविक उतरे हर संत तूरी नित नापे राम हर तूरी नाई है प्रभु त्याई है बाहर जोन ना आई है गुरु चरणी लागे प्रम को पागे मन सिंधिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम से आए फिर सोग माही संताप है नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर ताप है हर हरे हर गुण निदे हर संतन कैवस आए राम संत चरण गुरु सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूरन कृपा सारी सफल जन्म हुआ तो पागा हर पेटिया एक मुरारी जिसका सा तिन ही मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो पुन्नी इच सदाई राम रंग रते अपने स्वामी सेती मरे ना आवे जाई राम अविनाशी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए सांस सहज आनंद कनेरे गुरु चरणी मन लाए पूर रहा कट कट अविनाशी थान थन कर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी नेत्र देखें दर्श तेरा राम लाख जेवा देहो मेरे प्यारे मुख हर आरा दे मेरा राम हर आरा दे जन पंख सा दे दुख ना व्यापे कोई जल कल मैयल पूरन स्वामी जत देखा तत सोई परम मोह विकार नाथे प्रभ नेर हूते नेरा नानक कौ प्रभ कृपा कीजे नेत्र देखे दर्श तेरा कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अविनाशी राम सो सुन ए मन निर्मल होवे कटिए काल की फांसी राम कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी सगल मंगल सो क्याना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहत्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा कीजे हर गुण सुनिए अविनाशी करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे चरण चले प्रभ मार्ग राम पर सागर नाम हर सेवा जो चढ़े तिस पार्ग राम पर जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महा विकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा कीजे मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वड्याई एहो तन होए वडपागा राम एहो रंग एहो रस होगा हर चरणे मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की शरणे करण पारम गोपाला सब किस तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा।
सूही महला पंजवा। हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, सगले पाप जावे राम। हर जो गाय परम पद पाया, प्रभ की उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अति मीठी, कथी अकथ कहानी। पला संजोग मूरत पल साचा, अब चल नीव रखाई। जन नानक प्रभ कहे दयाला, सर्व कला बनियाई। आनंदा वजह नितवाजे, कार ब्रह्म मन उठा राम। गुरुमुखे सच करने सारी, बिन से प्रम पैच उठा राम। अमहद बाणी गुरुमुख बखाणी, जस सुन सुन मंतन हरिया। सर्व सुखा तिस ही बने आए, जो प्रभ अपना करया। कर में नवनिद परे पंडारा, राम नाम रंग लागा। नानक जन प्रभ कदे न विसरे, पूरन जाके भागा। छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तपत विनाशी राम। दुख पाप का डेरा काठा, कारज आया राशी राम। हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच कर्म पुन फलिया। सो प्रभ अपना सदा त्याई है, सोवत बैसत खलिया। गुण निधान सुख सागर स्वामी, जल थल में यल सोई। जन नानक प्रभ की शरण आई, तिस बिन अवर न कोई। मेरा कर बनिया बनपाल बनिया, प्रभ पर से हर लाया राम। मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते, गुण मंगल हर गाया राम। गुण गाए प्रभु त्याय साचा, सगल इच्छा पाया। गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजिया वादाया। करी नदर स्वामी सुखे गामी, हल पल सवारिया। बिनवंत नानक नित नाम जपिए, जियो पिंड जिन तारिया। सुही महला पंजवा। पै सागरो पै सागर तरिया, हर हर नाम त्याए राम। बोथड़ा हर चरण आराधे, मिल सतगुर पार लगाए राम। गुर शब्दी करिए बहु न मरिए, चूके आवन जाना। जो किछ करे सोई पल मानो, तामन सह समाना। दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे, सुख सागर सरणी पाए। हर सिमर सिमर नानक रंग राता, मन की चिंत मिटाए। संत जना हर मंत्र दृढ़ाया, हर साजन वसगत कीने राम। आत्मड़ा मन आ गए तरिया, सर्व सुखा कर दीने राम। कर अपनी दासी मिटी उदासी, हर मंदिर थित पाई। अनग दिनो सिमरो प्रभ साचा, बिछड़ कब होना जाए। सावर कागण सदा सुहागण, राम नाम गुण चीने। कहो नानक रहे रंग राते, प्रेम महारस पीने। अनग दिनो तय मित सखिए, मंगल सदा हमारे राम। आप नरे प्रभ आप सिगारी, सो बावंती नारे राम। सह सुभाए पै कृपाला, गुण अवगुण ना बिचारिया। कंठ लगाए लिए जन अपने, राम नाम उधारिया। मान मोह मद सगल व्यापी, कर कृपा आप निवारे। कहो नानक पै सागर तरिया, पूरन काज हमारे। गुण गोपाल गावो नित सखियो, सगल मनोरथ पाए राम। सफल जन्म हुआ मिल साधु, एक अंकार त्याए राम। जब एक प्रभु अनेक रविया, सर्व मंडल छाया। ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया, सब ब्रह्म दृष्टि आया। जल फल मैयल पूर पूरन, तिस बिना नहीं जाए। एक दर्शन नानक बिकसे, आप ले मिलाए। सुही महला पंजवा। अब चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। मन इच्छे से ही फल पाए, करते आप बसाया राम। करते आप बसाया सर्व सुख पाया, उत्पाई सिख बिगाते। गुण गावे पूरन परमेश्वर, कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे रखा, आप पिता आप माया। कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन एओ थान सुहाया। कर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम। संत भगत हर नाम आराधे, कटिए जम की फांसी राम। काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी।
हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए। संत सज्जन सुख माने रलिया, दुख दर्द क्रम नासी, सब सवारे सदगुरु पूरे, नानक सदगल जासी। बात खत्म की पूरी होई, नित नित चढ़े सुहाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वडी वड्याई राम। आज जुगाद भगतन का राखा, सो प्रभ कया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, तब आपे कर कृपाला। जय दिस पूर रहा जस स्वामी, कीमत कह न जाई, कहो नानक सतगुरु बलिहारी, जिन अचल नीव रखाई। ज्ञान त्यान पूरन परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज पगद पर कंजन, अनहद वाजे तुनिए राम। अनहद तुनकारे पत बिचारे, संत गोष्ठ नित होवे, हर नाम आराधे मेल सब काटे, किलविट सगले खोवे। तह जन्म न मरना आवन जाना, बोर न पाइए जोनिए, नानक गुरु परमेश्वर पाया, जिस पर साध छुनिए। सूही महला पंजवा, संता के कारज आख खलोया, हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी काल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगर विसूरे। पूरन पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया। नव निद सिद्ध दीने करते, तोट ना आवे काई राम। खास खर्चक दिलचक सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निकुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिगन सगले उठ नाथे, दुख न नेड़े आया। शांत सहज आनंद घनेरे, बिनसी पूप सबाई, नानक गुण गावे स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम। जिसका कार्य तिन ही किया, मानस क्या विचारा राम। भगत सोन हर के गुण गावे, सदा करें जयकारा राम। गुण गाए गोविंद अमद उपजे, साध संगत संग बनी, जिन उद्दम किया काल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। अखट तीरथ पुन किरिया, महानिर्मल चारा, पतित पावन बिरद स्वामी, नानक सगद आधारा। गुण निधान मेरा कब करता, उस्तत कौन करी जय राम। संता की बेनंती स्वामी, नाम महारस दी जय राम। नाम दी जय दान की जय, बिसरना ही खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाये अंदिनो। जिस प्रीत लागी नाम सेती, मन तन अमृत पी जय, बिनवंत नानक इच पुनी, पेख दर्शन जी जय। राग सूही महला पंजवा, छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर संभल थकी जी, ओ कदे ना बोले कौरा, कौरा बोल ना जाने। पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे, पतित पावन हर बिरद सदाए, एक किल नहीं पन्ने काले। खट खट वासी सर्व निवासी, नेरे ही ते नेरा, नानक दास सदा शरणागत, हर अमृत सज्जन मेरा। हर बिशन पई जी हर दर्शन देखा तारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हर चरण कमल पग छारा। प्रभु पेखत जीवा ठंडी थीवा, जिस जेवल अवर न कोई, आद अंत मद प्रभ रव्या, जल थल मैयल सोई। चरण कमल जब सागर तरया, कब जल उतरे पारा, नानक शरण पूरन परमेश्वर, तेरा अंत न पारा वारा। हर निमख ना छोड़ा जी, हर प्रीतम प्राण धारो, गुर सतगुर कहया जी।

परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सुहै वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए तिस छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वध्या रोग सुद पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर राव्या हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागण आत्मेली कर पार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो संग सदा समाल नानक जन्म सवार है अपना कुल भी छुट्टी नाल। पौड़ी आपे तख्त रचायुन आकाश पाताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाएदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाएदा तेरा हुक्म निराला। आपे आप वर्तदा आपे प्रताला।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एनस लागे पाओ नानक सुहागन का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तेजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सौ पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा तारा इतना नो तू मेल लहे गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हों मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में टूट सब विनस जाए ज्यो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है ज्यो रंग मजीद सचड़ाओ उल्टी सकत स्वै कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंड ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जा पई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पाएनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो गए लिखिया तिस सतगुरु मिले पतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे किमे सिगार पेय सहरे बहु सौदा पाए तिस पूज करे सब सहसार ओहो रलाई किसे दी ना रले जिस रावे सिर जनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी दिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विदान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए को आये मनमुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजाना बख्शियों ने हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सुहविये सुहा वेश छड़ तू तातिर लगी प्यार सुहै वेश तिर किने न पायो मन मुख दज मोई गवार सतगुर मिले सुहा वेश दया हो मैं विचो मार मन तन रता लाल हुआ रसना रती गुणसार सदा सुहागन शब्द मन पै पाए करे सिगार नानक करमी महल पाया फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा पर हरो लाल करो सिगार आवन जाना विसरे गुर सब्दी विचार मुंड सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार नानक सातन रावी है रावे रावण हार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मन मुख मुग्ध रता हो मैं मेरा कर्म हुए किस साथ न लिता सिर ऊपर जम काल न सुजई दूजे कर्मिता फिर वेला हथ न आवई जम काल वस किता जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन सील संतोख रहन
सेवन साई आपना नित उठ संवालन। महला तीजा कंका नाल महेलिया सेती अग जलाए जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए पावे जीवो कै मरो दूरो ही सज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया लेख कर तै लिखिया नावे जेवड़ होर दात नाही किस रूप ना रिखिया। नाम अखुट निधान है गुरमुख मन वस्या कर कृपा नाम देवसी फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले जिन हर जपिया। श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया से क्यों करे विथार चलन सार न जानी काज सवारन हार। महला दूजा रात कारण तन संची है पलके चलन होए नानक नाल न चले फिर पछतावा होए। महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कार सार। महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई जे बहुता काले तरफ जिने सत पाओ दे जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सिष्ट उपायन आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी किन कीमत होई सतगुर एक खा लिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाय करता करे सोई। श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ मुझ पाओ निविव्या नानक एहो पटंतरा तित दी दान गया। महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले उड़ते को उड़ता।

सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी होमे मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारियां लग पे गवारी जिनकी एक से ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा कामन को सिगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवे बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिगार तबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ कौ नानक तो करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिगार से जय कंत न आयो एवं पया विकार। महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोय मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत न हो गई नाम न लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार। श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ोवे आप कर आप पीने आता हो गुरमुख सेवा थाई पवे उन मन तत कमा हो मस्कत लहू मजूरिया मंग मंग खसम दरा हो नानक पुर दर वे परवाह तो दर ऊना नाहे को सच्चा वे परवाह। महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जर वैरी नानका जे बुद्धे थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौंप शरीर गुर शब्दी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हृदय रह रहा हर हीरा हीर जन्म

सिफती सार ना जाननी, सदा बसे शैतान। गधो चंदन खौलिए पी साहू स्यों पान, नानक कूड़े कत्य कूड़ा तनिए तान, कूड़ा कत्तर कछिए पूरा पैनन मान। महला पहला बांगा बुरगू सिंगिया नाले मिली कलान, एक दाते एक मंगते नाम तेरा प्रवान, नानक जिन्नी सुन के मन्या हों तिना विटों कुर्बान। पौड़ी माया मोह सब कूड़ है कूड़ो हो गया, हों मैं झगड़ा पायुन झगड़े जग होया, गुरमुख झगड़ चुकायुन इको रग रहा, सब आत्म राम पछाणिया पौ जल तर गया, जोत समाणी जोत विच हर नाम सुनया। श्लोक महला पहला सतगुर पीछिया देह मैं तू समरथ दार, हों मैं गर्भ निवारी है काम क्रोध अहंकार, लग लोग पर जाली है नाम मिले आधार, एनस नव तन निर्मला मैला कबहू न होए, नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुखोए। महला पहला इको कंत सवाईया जिती दर खड़िया, नानक कंते रतिया पुछे बातड़िया। महला पहला सबे कंते रतिया मैं दुहागन कित, मैं तन अवगुण एतड़े खसम ना फेरे चित। महला पहला हों बलिहारी तिनको सिफत जिना देवात, सब राती सुहागनी इक मैं दुहागन रात। कौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर, गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर, अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत कर, हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर, जग में वरते आप हर से प्रीत कर।

हर हर नाम सलाहिए सच पार कमावे दूजी कारे लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए हर नाम सुनावे सतगुर सेवा सतल है सेवे है फल पावे श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई मंजन माणिक तू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई महला दूजा जा सुख पासे रावे हो दुख भी संभालोए नानक कैसे आनी है क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हो क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई नानक दे परवाओ है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगता की कबीर के इको अंकार सतगुरु प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कभू लीना राम ना जपो कवन मत लागे मर जाए वे को क्या करो अभागे रहा दुख सुख करके कुटुंब जीवाया मरती बार इकसर दुख पाया कंठ गहन तब करण पुकारा कह कबीर आगे ते ना समारा सुही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन भी जाए पर गए बग बैठे आए रहा काचे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रलिया माने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तय खटिया कहां गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किस भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तन तन सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया तया कराया कहो कबीर तेरी नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक दी सब मत थाकी एक ना खाक समाया।

जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूके तिसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन ताले पासा। जो जन जान कजे अवगत को तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सब कावे, रैयत बचन ना देही, डोरी पूरी मा पैना ही बोगस काला ले ही। बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सो दिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने, अज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अगरा देख ना सुने अपाखे, सो खत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी, जिन नहा निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर दवन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग के आना, तें जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिज्क अंबरावे, सब कट की तरह हाथ चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई, यो तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा, कर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की।

साहिब जी मैं सार न जानी जो गुण खोए पाछे पछता नहीं रहा काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के हो बिरह जाली फिर बिहून कथे सुख पाए जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए विदन कुही मुंड अकेली ना को साथी ना को बेली कर कृपा प्रभ साथ संग मेली जा फिर देखा ता मेरा हो बेली वाट हमारी खरी उडीनी खन्यो तिखी बोतीनी उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा पंख समार सवेरा सूही ललित बेड़ा बंद न सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब करन दुहेला हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा एक पापी में पतली सह केरे बोला दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए ना मेला कह फरीद सहेलियो सहो अलायसी हंस चलसी डुमना।

रहाओ। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध

सैन तुम्हारी सर्व चिंत तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे कान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलख।

साजन चार नाम मिले चांदन ध्यान चक्षुदी सहसा नहीं कोई बाप से वे जात न होए एक एक को ना ही तो कोए करता करे करावे सोए शब्द मोए मन मंगते माया ठाक रहे मन खाते पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुर बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम खुले गौराने हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जीवरा रह न सके खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा तब विसरे हो मरो दुखाली सास विरास जतो अपने हर पाली सब बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली अटक कथा कहिए गुर पाए प्रभु अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों मैं लेट चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास बिलावल महला तीजा हर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटंब सहस्यों जित हूं खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न गई लिव लागण जिन हर के चरण सारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके ते दुख निवारे रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख बखाने गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम पुलाने से मनमुख कहिए ना उर्वार न पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माय निस्तारे नानक साध होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल्य क्यों तोले आ जाए दूजा होए तो सो जी पाए किसते दूजा ना ही कोए तिस दी कीमत किको होए गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुखदा जाए रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परके आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा लेता सच समाए आपे लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते

हर किया है सफल जन्म हमारा, हर जपया हर दुख विसार हमारा, गुर पेटिया है मुकुट दाता, हर की हमारी सफल जाता, मिल संगति गुण गावनो, मन राम नाम कर आसा, पाओ दूजा बिलस बिनासा, विच आसा होए निराशी, सो जन मिलिया हर पासी, कोई राम नाम गुण गावनो, जन नाम के सगलावनो, राग बिलावल महला पंजवा, चौक देख हर पहला।

हर कृपा मोह मार्ग पावो साफ संगत के अंचल लावो क्यों तरिया दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाओ परम चुलारे माया दे हर के पगत सदा फिर से हर शोक से रहे निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्व पुयंगा हूँ मैं पते दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जहाँ हुए कृपाल सं गुरु मिलावे हूँ फिर उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर कुसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल जिन चाखिया तिस आया फाग जो गूंगा मन में विस्माद अनद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बिलावल मैला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्प वेव तरत पुनीत सही गुण गाए दुर्त गया हर नाम से आए रहाओ सबनी थाने रवे आप आज जुगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाने उठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोय अनाथ तूरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोय निर्गुण ली जय लड़ लाए रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नाही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ दसे प्रभ का नाम मन पर आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम अवताज चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद राग बिलावल मेला पंजवा कर दूजा या नड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान पा बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक रहा सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना पर जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नाम ही मनवाता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम अरादिए निर्मल मने होए प्रगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे दिन से पाप नेरे पशु प्रेत मुग्ध को तारे पाहन पार उतारे नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहारे बिलावल मेला पंजवा दिखे बन फीका त्याग री सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होत जियो मान महक ना सकती पाई सादा दासी थियो नानक से दशोभा बनते जो प्रभ अपने कियो
हर चंदोरी चित क्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाए बसो वड पागणी सखिए संता संग समाये कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाये कहे जन्म ना मरण ना आन जाना निचल सरणी पाये प्रेम बिछो ना मोह व्यापे नानक हर एक ते आये दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा इको उतार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो पासारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जप जप जाइए तप दिश पाए रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल न जाई चलना आप ही दुख आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभु के सब जचना बिलावल महला पंजवा तूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे

बंधन काट मुकुट बुरकीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्नि सागर बूढ़ संसारा, नानक बाँ पकड़ सतगुरु निस्तारा, बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत सोगा मेरे आंगन, रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्रिक ताना हर गुण गाया, देहो परत प्रबंध कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी, बिलावल महला पंजवा, गुर पूरा वड़ पागी पाये, मिल साधु हर नाम त्याये, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना, रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिय, बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय में चीना, सगल मनोरथ पूरन आसीना, संत जना का मुख उजल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना, रहाओ अंध कूप से कर गहलीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा से ऊंच ऊन पुरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभु पै परसीना, बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाए मीता, चरण कमल सो लाइए चीता, हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत, जन्म बुझे हर हर गुण गावत, रहा सफल जन्म होवत वट पागी, साध संग्राम में लिव लागी, मत पत तन सुख सहज आनंदा, एक निमख न विसरो परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास तनेरी, अनंत नानक शरण प्रभु तेरी, बिलावल महला पंजवा, मोहि निर्गुण सब गुण बिहुना, दया तार अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा सब कर में आया, रहाओ भगत वचल कह का तुम्हारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतित पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण, बिलावल महला पंजवा, कौन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा, गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे, रहाओ एकस बिन नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपको कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवे सो नाम पाई, कहो नानक जो जन सब पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया, बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ में हाथ दे राख्या, हर रस छोड़ बिखिया फल चाख्या, पज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए सिंगारे मूड़े, तब तन बिनस जाए बेहाल, रहाओ तन मन तन अपना कर थापया, कर्म हार एक निमक न जापया,
महा मोह अंधकूप परया पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया वड्डे पाग पग कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंदो पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय सुख सहज आनंद कणे गुर पूरा पूरी जाकी बाणी अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल संजाम करे प्रभ आपे ऐ मनोर सो प्रभ जापे हर कर्म काम मोका दाता पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम करंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर स्वा

और सातक नर थी वे राम नाम हुआ रखवाड़ा शक मारो सातक बेचारा निंदा कर कर पचे कनेरे निरपट फांस दले सिर पैरे कहो नानक जपे जन नाम ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे।

परम सोमजित प्रीतम पाव रहाओ, ऐसी कृपा करो क्रम मेरे, हर नानक बिसरना पाहू बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए, रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकथ कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुर सदगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप विनाशे, हर सिमरत किल विक्षवना से, अनुज करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पै सवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता, बंधन बाध्या अत विकराल, दिन दिन छिजत विकार करत, औद फाही फाफा जम कै जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला, महा विकम सागर अत पारी, उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल, कम के बंधन काटो परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया, सात जना होए कृपाला, दिक्षे सब परवारया, कारज सतगुरु आप सवारया। वड्डी आरजा हर गोविंद की, सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वंत्रिण त्रिभुवन हरिया होए, सगले जी सधारया, मन इच्छे नानक फल पाए, पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल, हर सिमरत का तैसो काल रहा। साथ संग पजिया गोपाल, गुण गावत तू कै जंजाल, आपे सतगुरु आपे प्रपाल, नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम, हम दिन कीर्तन हर गुण गान, ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आज पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल पाग, हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया, नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम रिद माह त्याई, नानक गुरु पूरे शरण आई, जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुरु कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, तिस आगे ही मारे कृपार। नानक दास ता की शरणाई, जाको शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। पाप संताप सब ले गए, बिन से ते रोग पार, ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली, तेरा मन तन आरोग, गुण गावो नित राम के ए अवसत जोग। आए बसो पर देश में ए तले संजोग, नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे, लह गए वियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग न चाल ही माया जंजाल, ऊट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना एक उर की टाल, बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल, सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरु दीन, सदा सहाय संग प्रभु।

जय जयकार जगत में लोचे सब जिया, सो प्रसन्न पे सतगुरु प्रभु कस बिघन किया। जांका अंग दयाल प्रभु ताके सब दास, सदा सदा वडिआइआ नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवां कर पंजवां चौक दे इक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार, बिनसत बार ना ला गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए कर बार। रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्टमान सब बिनसी है क्या लगे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला पंजवां लोकन किया वड्याईया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो पंक्ति लागो, लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो, अर्थ आम सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख अरवागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवां लाल रंग किसको लगा जिस केवड़ पागा, मैला कदे न हो वही नहला गे दागा। प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया न जाए। रहा जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार जम गुण नित तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवां राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे, लाज परे तेरे दांस्यों ने चित पसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवां दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवे सुख होए कहां मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमां। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा। नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता। सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवां निर्भ हसे सिर ऊपरे कछुआ नहीं बूझे, बाद साद अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पद जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ
जिस मस्तक करमा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा। पिंगल पर्वत पार परे खल प्रभु कीता अंदले त्रिभुवन सूजिया गुर पेट पुनीता

practice of hai dam deepa. Singh bilai ho gayo trin mer dikhita, sram karte dam aad ko te ganit neeta. Kaman vadhai keh sako beant gunita, kar kirpa moy naam deho nanak dar srita. Bilawal mahala panjwa. अहं बुद्ध प्रबाद नीत लोग रसना साद, लपट कपट गृह वेदिया मिथ्या विख्याद, ऐसी पेखी नेत्र में पूरे गुरु प्रसाद, राज मिलक तन जोगना ना मैं बिनबाद रहाओ, रूप तूप सोगंधता कापर पोगाद, मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद, फिरत मानस पया खिन पंगन देहाद, ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद, प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद, सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद. बिलावल महला पंजवा. चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत, मार्ग पाए उद्यान में गुर दसे पेत, हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत, उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ. पंच चोर आ गए पगे जब साथ संगेत, पूंजी साबत कणो लाभ गृह शोभा सेत, नेकल आसन मिटी चिंत माही दोलेत, परम पुलावा मिट गया प्रत्ये खतनेत, गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत, नानक पाया साथ संग हर हर अमृत. बिलावल महला पंजवा. बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी, मिलत संग सब काम मिटे गत कई हमारी, जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओ आ दिन बलिहारी, तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी रहाओ. एक छदाई मोहे ते इतनी दृढ़ पारी, सगल रेन ए मन पया बिनसी अकदारी, निंद चिंद पर दूखना एक खिन में जारी, दया मया अर निकट पेख ना ही दूरारी, तन मन शीतल पे अब मुक्ते संसारी, हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी. बिलावल महला पंजवा. टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल, निस्बा सर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ. जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल, मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल, उपत स्यान कछ नहीं नाही कछ काल, प्रम पैरा को मोहते काटो दमजाल.

प्रताप तुम्हारा देख के जम दूत छड़ जाए। तुमरी कृपा से छूटी है बिनसे अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव। रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामे बिनपुर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसापुर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड़।

मत फूलो मानुख जन्माया परमाया, नानक तिस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा, माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ देह, अनिक छिद्र मन में तके निर्मल दृष्टे, क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज

छोड़ कर पंच क्रम सो रचो तज कूड़े नहीं। जिन अनक एक बहु रंग किए है होशी एह कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत ले है। ऊंचे ते ऊंचा वड़ा सब संग बरने है। दास दासन को दासरा नानक कर ले है। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण तास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है दीन दयाल कृपा निधे साथ साथ समार है। करण हार जो कर रहा साई वडियाई गुर पूरे उपदेशिया सुख खसम रजाए। चिंत अंदेशा गलत काज जन हुकम पछाता न बिन सहने छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते कई शांत पर सब पाप ना थे अंध कूप में गलत थे पादे दे हाथे। ओए हमारे साजना हम उनकी देन जिन पे तत होवत सुखी जी दान देन। रहाओ परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए बस संग हर साध के पूरन आसाए। पैदन से तिल लोक के पाए सुख थान

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो शीश कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श देख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभु के पावो, देव सुहनी साधक बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मन पिलावो, ओआ रस में सांस तृप्त होए दिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभु बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड़ पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काड़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुर पहे सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काकी सिर्फ प्रम मोह की अपने प्रभ आया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नगर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यामन जोग। रहाओ औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जापिए अंतर निवलाई, किलिख उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महा मंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे। सुर पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा, अचरज गुरुदेव जाको कृपा करो प्रभ ताको लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया गुरु की ने धर्मा। गुरु पूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर, तन मन सब शीतल भया पाया सुखबीर। रहाओ सोवत हर जप जा गया, देखिया बिस्माद की अमृत कृपास्या ताका अचरज स्वाद। आप मुकुट संगी करे कुल कुटुंब उधारे, सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन, नानक को कृपा भई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा। हर पगता का आस

अपने दास रख लिए, निंदक निंदा कर पचे, जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एक आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कह प्रगत सब माहे, प्रभु के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है रातो हर नाथ।

मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यों रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पत्रिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुट जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा खेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत तना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल हो पाया। जीव किया अथवा

करता करे काम को काटे, कीड़ी से हस्ती करे टूटा ले गांडे, अंडज जेरज सेतज कुछ पूजा प्रभु की एक किरत, किरत कमावन सर्व फल रवि हर मृत। हम से कछु ना होना शरण प्रभु साध, मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल मेला पंजवा, खोजत खोजत मैं सिरा खोजो बन खान, अचल अचेद अपेद प्रभ ऐसे पगवान।

और उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या सगला दुख गया, राख नहारे राख्या अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया। बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापिया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान। रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप, राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव। रहाओ सदा सदा हर त्याय है, किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है, मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे।

कथा कीर्तन राग नाद तुन इस बनियो सुआओ, नानक प्रभ सो प्रसन्न भय बांचत फल पाओ। बिलावल महला पंजवां। दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ प्रगुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लख सास रहाओ। मात पिता बंधक तू है तू सर्व निवास, नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवां। सर्व सिद्ध हर गाय सब कला।

जी सगल दयाल पे हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र में प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद में तेग प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ हुए कृपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छारे। तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणित हर सब जीव सहाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताया।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नान प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मिट गया रविया नित राम, साथ जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

सुन स्वामी अरदास जाने तुम अंतर जामी खान खनन कर लाव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती भाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई सतगुरु पूरा भेतोया जिन बंत बनाई राम नाम और सब दिया एक काली।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहा उठत बैठत सोवत जागत ए मन तुझे चितार है। सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी का जैसार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हें मेरे परिवार है। जो तुम करो सोई पल हमरे तेत नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पतित संग।

कर कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तम के जात त्रिपत अघाए पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मेरा पंजवा राख लिए अपने जनाप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब शोक संताप रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हर जाप सागर तरे परम तय बिल से पहु नानक ठाकुर प्रताप बिलावल महला पंजवा पाप लाया गुर सृजनहार सब गुर अपने को बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दरगे परवान राग बिलावल महला पंजवा चौक दे दुख दे कर सतवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिनसो अंधकार तिहि मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ विस्मन विषम पे जो पेखियो कह न जाए वड्याई मगन पे ऊहा संग माचे ओत पोत लपटाई आल जाल नहीं कछु जंजारा अहं बुद्ध नहीं पोरा ऊंचन ऊंच बीच ना खींचा हों तेरा तू मोरा एक अंकार एक पसारा एक कै अपर अपारा एक विस्थिरन एक संपूरन एक है प्राण धारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत ना अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जासो राच माच को लागे ओ मोहनी मोहावत है रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ छिने में जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगोरी खावत है त्रिन को मंदर साज सवारियो पावक तने जरावत है ऐसे गर में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मूड पर खाडे केस गहे फिर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत है जाल पसार चोग विस्थारी पंखी ज्यो पहावत है कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख ते आवत है बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान संबोली रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड़ पागो सुहाग हमारो कतो न डोली रूप ना तूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली

गोविंद गोविंद मई। जब ते पेटे साथ दया रहा, तब ते दुर्मत दूर पही रहा। पूरन पूर रहो संपूरन, शीतल सांत दयाल दई। काम करो तृष्णा अंकारा, तंते हुए सगल खई। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते इल मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया, तिनको सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे, वरन ना साके एक रुमाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथी है किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्यान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता, पतित पवित्र एक निमख जताई है। अचरज सुनियो प्रापक तेतले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, को तिसकी लई लई सुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, तंग बंद हर सगल जंजारो। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज हर कनो आनंदा। गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बरन ना सातू। गुर पूरे मेरी उल्ट करी, देखो मोहन सब कै संगे। पूर्ण न काहू सगल परी, पूरन पूर रहो कृपा निध। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता।

ज्यों कालर पीठ गिरी है रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पैर चितव नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरी है। नानका राखा आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करें करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया में लपटाए जरे। अंधकूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे का दे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै अनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहा, त्यानप ते सब पई स्यानप। प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहा, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप, सिमर सिमर सिमर सुख।

महला पंजवा सदा सदा जति है प्रभ नाम जरा मरा कछ दुख ना व्यापे है आके दर्द है पूरन काम रहा आप त्याग परिय हित करनी गुरते पालिया हो निधान जन्म मरण की कटिया फांसी साथी दर्गे का निशान जो तुम करो

सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनज सेती बिखिया बन गाहे। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साज कै संगा रहाओ। छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीच ते तहरा जंगा, कभू न बिसरहिए मोरे ते नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्थ रखो हर आगे, सर्व जिला का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख है अपने को, किसनो लगे न काची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक दाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिलेरवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भय, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपो होए पजो जगदीश, तुह पदार्थ बड पाग लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पात रहा, काट कुठार खसम सिर काटिया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चित।

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य राश किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना थाट बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वस कीने जिन सगले जंत, चरण कमल नान शरणाई राम नाम जप निर्मल मंत। बिलावल महला पंजवा। पाप पाप के राखे आप, शीतल पै गुरु चरनी लागे, राम नाम हृदय में जात रहो, कर कृपा हस्त प्रभ जी ने जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख।

दोवें थाव रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जम के, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

तीन जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्कोर पया रहा, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नह परी दया।

ला पंजवा आगे पाछे कुशल पया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु की नी मया रहाओ मन तन रव रहा हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज अनंत गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्शन।

listening. अनुक भगत अनुक जन तारे सुमरहे अनुक मुनि अंगले टिक निरकन तन पायो प्रभु नानक अनुक

गावो तब रस मंगल गुण गावो अनग रूप ते आवो नानक द्वारे आयो तो मैं लालन पायो री।

उल जियो अल मकरंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक कह हर ला है अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस कूटी है संग साधु उलटी है अन नाही नाही रे नानक प्रीत चरण चरण है। राग बिलावल मैला नावा दो पदे।

है। तुम नर जन्म अकार खोया, यह राखो मन माही रहाओ, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जाको।

पढ़े नाटशाला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुखतिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंडाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर मैल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

गुरुमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्स मन तृप्त, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरुमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरुमुख आ

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी इक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न पैया।

नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिलावल मैला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुरखैया।

लाल जवे हर नाम पर गासिया, पांडे पाव पवै तित अय्या। दासन दास दास हुए रही है, जो जन राम भगत निज पहिया। मन बुद्ध अर्प तरो गुर आ गए, गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, यो मन तृष्णा जल तिथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आ गए, अनहद शब्द

ज्यों जल तरंग जल जलहे समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा। सतगुर परचय मन मुंदरा पाई, गुर का शब्द तन पसम दृढ़या। अमर पिंड पहल साधु संग, जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया, कृपा करो मद

मन मांगे रिद सिद्ध चेतक चेत कैया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद्ध कैया अंडज जेरज सेत जुत पुज

खाओ जात रविदास चमियार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत तन तन्ना जट सैन मिलिया हर दैया। संत जना की हर पैज रखाई भगत वचन अंगीकार करैया। नानक शरण।

बहुत मन चाहिया मन तन काट दियो गुर आगे है जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाइया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचल ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे तैया। खिमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो।

सुनैया सतगुरु दया करे प्रभ मेले मैं तिस आ गए सिर कट कट पैया रहाओ रोम रोम मन तन इक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद न पैया वैदक नाटके देख पुलाने मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया हाँ खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम जो बिन अमले अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर न पावे बिन हर को दोया कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे हों किस विटों बल बल कुम गैया

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ कह कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया तब आन आन मेहंदी पिसाई आपे कोल।

छोटा खाए बिन गुर शब्द ना छूटस कोए पखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोड़ विछोड़

मत मेले भगत दृढ़ाए। षष्ठी खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावे ता महल बुलावे, सबदे पेड़े तो पत पावे। कर कर वेख खपे जल जावे, साचे साचे साथ समावे। सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद परे निर्मल नीर।

किसने मनुआ रहा लिब लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा।

डागर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पत खोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सचमन पाने। चौदस चौथे थावे ले पावे, राजस्तामस सतकाल समावे, ससियर के कर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे, चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड दया लिवलाए।

आए, जिस देव तिस पल्ले पाए, अगम अगोचर लखिया न जाए, गुर कै शब्द हर रया समाए।

आप गवाये, नानक नाम रखो उर्धार, देवन हारे को जयकार। वीर वार वीर परम पुलाए, प्रेत भूत सब दूजे लाए,

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिव लागी। तेरे रंग राते सह सुवाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मने अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक राव, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेखे, कोई ना मिटे तेरे लेखे, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, हमे मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वस्ते अवर न बिया, दूजे ते जे एको जाने, गुर के शब्द हर

सतगुरु सेवे करनी सारी, दर साचे साचे विचारी, किसी वार सब सब सुहाए, सतगुरु सेवे ता फल पाए, किसी वार सब आवे जाए, गुर शब्द ने चल सदा सच समाए, किसी वार ता जा सच राते, बिन नामे सब परमे काचे, मन मुख मरे मर बिकती जाहे, एक न चेते दूजे लोबाए, अचेत पिंडी अज्ञान अंधार, बिन शब्द क्यों पाए पार, आप उपाय उपावन हार, आपे की सुन गुर विचार, बहुते पेख करे पेख तारी, पव पव परमे काची सारी, कैसे सुख ना आगे होए, मन मुख मोए अपना जन्म खोए, सतगुरु सेवे परम चुकाए, कर ही अंदर सच मैल पाए, आपे पूरा करे सोए, एक ती वार दूजा दोए, सतगुर बाजो अंग गुबार, सिती वार सेवे मुग्ध गवार, नानक गुरमुख बूज

मुंड नवेलड़िया गोयल आई राम, मटकीदार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर को रही गोयल, सहज सब पिगारिया, कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जोबन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग बासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकप कथिये सहज प्रभ गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूती राम, गुर कह पाए चलो साथ संगूती राम, तन साथ संगूती हर संगतूती, संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाएड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हों मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। मिलाओ मैला पहला मैं मन चाऊ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब गच्चो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोचिए, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिए, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे। पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नवहान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड़ कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे साथ शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकत कहानी राम, अकत कहानी पद निर्बानी को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूर रहा सर्व ठाई नानका उर्धारिया, महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार भी जय शब्द सी जय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीज डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साच सूचा सदा नानक गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जापे राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम भगत वत्सल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम बिन हर नाम ना जीव दे ज्यों जल बिन नीना राम सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड पाग गुर पूरे खा लिया नानक हर लिवलाग छंक मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा जे राम गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटियाई राम जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम अखी प्रेम कसाईया ज्यो बुलक मसाई राम गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम जन नानक नाम विदसिया हर हर लिवलाई राम हम मूरख मुर्द मिलाया हर कृपा तारी राम तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम जन नानक नाम सलाया।

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम। अविनाशी वर सुनिया मन उपजिया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते। सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया। दिन वंश नानक करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथाह सा अटल गणिया पूरन संजोगो राम सुखे समूह पया दया विजोगो राम निर संत आए प्रभ त्याए बने अचरज जांगिया मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांगिया मिल ज्योति ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभ कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागे बिलावल मैला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे वाजे दिन स्रे उमा तै रोग सोग ना दुख दिया तै जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमुख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत सगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोक जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण किया राम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रखिया।

सगल जा को करना पत गतिन लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों करे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख पर है हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी होए गते कीत चित हो मित अंधारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे तन तन हमारे पाग कर आया तिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण।

सुंदर सांस दयाल प्रभु सर्व सुखानिधि पियो सुख सागर प्रभु केते है नानक सुखी हो त्यो जियो संत सुख सागर प्रभु पाये जब हो वे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम सो प्रभु तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभु त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुर्चारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम ब्रह्म मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा क्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

नानक प्रभु शरणागति जप अनंत तरंगे राम। एक तिल प्रभु ना विसरे जिन सब किस दीना राम, वड पागी में लावड़ा गुरमुख तिरछीना राम, बहां पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम। नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम, क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम, सिमर सिमर नारायण पय पारज रामी राम, गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम, नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम। रस्त नेड़े अप

राग नाद सब सोने जान लागे सहस्यान राग नाद छोड़ हर सेविए ता दरगे पाईए मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिए चूपे मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगम है सब तुद उपाया तू आपे आप वर्तला सब जगत सवाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्यावो भगतों दिन रात अंत लय छाया जिन से व्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वही मन मुख खाए ना पाए पखंड पगत ना हो वही पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावने खाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारिए विच्चों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक क्यों लिवलाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलने सतगुरु पाए सत्संगति वह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहने जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विचार आप सो भगता का मित हर सब कोई हर के वक्त भगता के आनंद कर हर भगता का मेली सर्वत सौ निशुल जन टंग तर हर सबना का है खसम सो भगत जन सित कर खुद अपर कोई न सके सब चक चक पवे चढ़

इस युग में बिरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर सच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले।

जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चितलाई है गोहज गल जी की चीचे सब गुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लह जाइए जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए श्लोक महला तीजा सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सुख है जिहा कोई खेते हा फल पाए गुर का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दैज पथरिया गुर कहते सुबाए नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छुपाए महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे मानस से देवते पे सच्ची पदक जिस दे हमें मार मिलायन गुर के शब्द सुचे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी गुर सतगुर विच नावे की वड्डी वडियाई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हृदय पाई निंदक दुख वडियाई वेख न सकन ओना पराया पला ना सुखाई क्या होवे किस नीति चख मारी जा सके स्यों बने आई ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई सब चक चक मरे लुकाई श्लोक महला तीजा रुद ए आशा दूजे पाव की जो मोय माया चित लाए

हर्ष पल्लव त्यागया नाम विसार दुख पाए, मनमुख अज्ञानी अंधले जन्म मरे फिर आवे जाए। कार्य सिद्ध न होनी अंत गया पछताए, जिस कर्म होवे तिस सतगुरु मिले सो हर हर नाम की आए। नाम रते जन सदा सुख पाए, जन नानक तिन मल जाए।

उस बख्शे करतार नानक गुर प्रसादी यो मन ता तरे जा छोड़े अहंकार आसा मनसा मारे निराश हुए गुर सबदी विचार पौड़ी जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई अगे सब आपे वर्तदा हर सच्चा न्यायी कूड़ियारा के मुख टिकिए सच भगत वध्याई सच साहिब सचा न्याय है सिर निंदक साई जन नानक सच आराध्या गुरमुख सुख पाई श्लोक महला तीजा पूरे पाग सत गुर पाये जे हर प्रभ बख्श करे तो पावा सिर उपाओ है नाव प्राप्त होए अंदर शीतल सांत है हृदय सदा सुख होए अमृत खाना पहनना नानक नाए वडियाई होए महला तीजा ते मन गुर की सुख सुन पाए गुणी निधान सुखदाता तेरे मन वसै हो मैं जाए अभिमान नानक नदरी

किए जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए शोक महला तीजा अंदर कपट सदा दुख है मन मुख ध्यान न लागे दुख विचकार कमावनी दुख वरते दुख आ गए कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निला।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना, नाम जपत छुप पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। मैला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक छो जन पाई, सतगुरु से यो हो मैं मल जाई, अंदर संसा दूख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कबो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वत ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे परवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंबिन नाम से आया, दिखिया माए उदास है, हों में शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य से लिव लाया, ब्रह्मा विष्ण मां देव त्रै गुण पुल्ले, हों में मोह वदाया, पंडित पर परमोनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया, जोगी जंगम सन्यासी पुल्ले, गुण गुरु पत न पाया, मन मुख दुख ये सदा परम पुल्ले, तिनी बिरथा जन्म गवाया, नानक नाम रते।

किसे सरे वो प्राणी हो किस दिन अवर न कोए गुरुमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुख होए पौड़ी जिन्हें गुरुमुख हर नाम तन ना खटे हो से देवालिये जुग माहे कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह थुक ना तिन को पाए पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवादी आप लखाए जिस तन कारण चुगली करें सो तन चुगली हस ना आवे कोई पावे तिथे जाए गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छो कर्महीन ले न सके होर्थ है देश दिसंतर हर तन नाहे श्लोक में ऐला तीजा गुरुमुख संसा मूल न हो गई चिंता विच्चो जाए जो किछ होए सो सहजे होए कहना किछु ना जाए नानक तिनका।

मीठा बोले अमृत बाणी अंधन हर गुण गाओ निज घर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया जो कुछ क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अपे कोई क्यों देवाए इहो हर तन जोर की तै किसे नाल ना जाए वंडाया जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवे जिसनो करते तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे कैसी बने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे किसका मोह हर चोह कुंडा विकाला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना

ना मरे ना ई हट विकाए, गुर कै शब्द पर जा लिए ता ए विचों जाए। तन मन होवे उजला, नाम वसे मन आए, नानक माया का मारन शब्द है, गुरमुख पाया जाए। पौड़ी सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती, तुरो हुकम बुझ निशान, पुत्ती पाती जावाई सकी, अगो पिछो टोल डिठा लायुन सबना का अभिमान। जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु, हर बख्शो से सब जान। जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल सुजे, जे वे मुख होवे सो फिरे परिष्ट थान।

नानक जो पावै सो होए पौड़ी, पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुरै मेहरवान परम पौ मारिया, काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया।

कहन पंच चोर तिना कर मोहन हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती हर रस ना जानन जिन्नी अमृत परम लुटाया विक्षो रचे रचन दुस्ता सेती तिरहड़ी जंक्षो वाज करन नानक साकत नरक में जम बजे दुख।

किस सात गिरास सदा मन वसे है, जम जोए ना सके तिस हृदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभु वसे हौ सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

तू दे रे की चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सब जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे तनमंता अर्न तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना पढ़ो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत बौरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंग राता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पव जल निज पारी राख राख मेरे बीचला जन शरण तुम्हारी रहा बिखे बिखे की बात सुना तजिए न जाई अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का फिर जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व्यापी तुम समसर नाई दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नित पुट कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपते हो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब से सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए तुहे मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतें ले उदरे बिलावल को हर समान नहीं राजा एक ऊपर शब्द विचार के चूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा परम क्यू को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील तरम जब पगत न कीनी हो अभिमान तेड पगरी रहाओ अमर जान संखी एकाया ए लिखिया का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोय साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे खांडे दरबार कुछ दिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल के वार रहा तुम तन तनी उदार

संसाधारी क्रम कै पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन कहा करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुधफनी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या फेकी क्या लेवा दई सरपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पाजे परम तजो जग जीवन राम रहाओ आवत कछु न दिसे न दिसे जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात मुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवक सुन समान्या गुरु सासी जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माय त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निज ता कै सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जो सब में पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया से अटके ले नरजा मन को ले देव जय ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन

बिलावल जिह कुल साध बैसनो होए वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पुनीत भगवंत भजन के आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो थाओ तन पुनीत कुटम सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे दिखोए पंडित सूर छत्रपत राजा तगत बराबर और न कोए जैसे कुरैन पात रहे जल समीप।

वे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जिए वरते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाए। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहे की जय साले फल आस सब बिर थी जाए रहा। जो दिसे माया मोह कुटा

आए। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटुंब सब छड़ाए। जे तुझ आस अर

सुन में झूठ दिल सब जाए, मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई, कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाई। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई, गोंड महला चौथा ऐसा हर सेवी है नित त्याई है, जो खुन में किलिक सब करे बिनासा, ये हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब दुख लहासा, मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवर आते, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कदासा, अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा।

सो ऐसा प्रभु छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है। अवरा पह कह मन लाज मराशा जो संसारे के कुटुंब मित्र पाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा जित दिन उनका स्वाय हो ना आवे तित दिन नेड़े को ना चुकासा मन मेरे अपना हर सेव दिन राती जो तुम उपकरे दुख सुखासा किसका परवासा क्यों कीजे मन मेरे जो अंति अवसर रख ना सकासा हर जप मन के गुर उपदेश ले जातो तिन अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा जन नानक अनदिन नाम जपो हर संतो इहो छूटन का साचा परवासा गौंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना जैसे सकत सूर बहु जलता गुर सच देखे लह जाए सब तपना मेरे मन अनदिन त्याए नाम हर जपना जहाँ कहाँ तुझ राखे सब थाई सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहा जा में सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रत्ना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलो हर दसना शब्द पछान राम रस पावो ओ उत्तम संत पयो बद बदना इस जन की वडियाई हर आप वधाई ओ कटे ना किसे की कटाई इक तिल तिल तिल ना जिसते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याए नित कर जुरना जन नानक को हर दान इक दीजे नित बसे हृदय हरि मुहे चरना।

हरे अविनाशी सदा चिर निर्चल तुष मेरे मन पद परवान, मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान। जो हर महल पावे गुरु बचनी, तिस जेवड अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिन सजाए ज्यो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैश चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

तो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है, हर दिन को मार जीवाल न साथ है, ता मेरे मन कायत कड़ी है। रहाओ हर पर पंच किया सब करते, विच आपे अपनी जोत तरई है। हर एक को बोले हर एक बुलाए, गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासों मन क्या चो रही है। मैं कपट सेवा की जय हर तेरी, ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दैवस सब चीज सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है। जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद लय छड़ई है। गौण महला चौथा, हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते, ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर कीर, हमरी बेदन हर

परलो करता, व्यापत करता, अलिप्तो करता, वक्तो करता, बूजत करता, आवत करता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहे हो कुसुम भाए ले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ तोड़।

तू लाग पड़े ओ कुटुंबाए ने, जो पंखी एकत्र होए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चाय ने, जैसे मीन रसन साध बिन से।

ओ तट पर लो निमक मझार, जाकी गत मित कहीं ना जाए, सो प्रभु मन मेरे सदा के आए, आए न जावे ने चलतने, बेअंत गुना ताके ते तक गने। लाल नाम जाके परे पंडार, सगल कटा देवे आधार, सतपुरख जाको है नाओ, मिटे कोट अग्निमख जस गाओ, बाल सखाई भगतन को मीत, प्राण आधार नानक हित चीत। कौन महला पंजवा।

सगल पूछे को कर का दान, गर्भ कोर में राखन हार, जिस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए, कट अवकट गत कट है सहाय, रहाओ रंक राव जाके एक समान, कीट हस्त सगल पुराण, दियो पूछ ना मसलत करे, जो किस करे सो आपे करे, जा का अंत ना जान सकोए, आपे आप निरंजन सोए, आप आकार आप निरंकार, कट कट कट सब कट आधार, नाम रंग पगप पहे लाल, जस करते संत सदा निहाल, नाम रंग जन रहे अघाए, नानक तिन जन लागे पाए। गौण महला पंजवा, जाके संग इहो मन निर्मल, जाके संग हर हर सिमरन, जाके संग किल बिख हो है नास, जाके संग हृदय प्रदास, से संतन हर के मेरे नीत, केवल नाम गाये जाके नीत, रहाओ जाके मंत्र हर हर मन वसे, जाके उपदेश परम पवन से, जाके कीरत निर्मल सार, जाकी रेन बांछे संसार, कोट पतित जाके संग उदार, एक निरंकार जाके नाम आधार।

आनंद हरनाय। गौण मैला पंजवा, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय ले तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत तो परम पुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। फूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुर पूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुर के जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुर मुक्त ना पाये पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहूं दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ। गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल, गुर के सेवक की पूरन काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे। गुर की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुर रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ताका मन लाग। गौण महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुर सेओ। गुर

पुरख भगवान, गुरु की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे पव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुर के संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाये वड पागी, गुर की सेवा दुख न लागी, गुर का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सोए।

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम

आए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भय जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तै पार उतारे सबते ऊच राम पर गास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पत पोवे सात जना पग मल मल तोवे पंच पूत जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अधाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन

कटपट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पतित पावन प्रभिर तुम्हारे, औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिय भगवंत, रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचित पूरन फल पाए, कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार, नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप, गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत, निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए, दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार, बड़पागी पाये पुरख अपार, रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, किसको कोई ना सके जमकाल, जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछाण, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूरन मंत, हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गौण महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंथ, मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरणाई पूरन नाथ, जंत अपने को दी जय हाथ, रहाओ सिमरत।

प्रेम पद तो जिस आपे दे जग में विरले के मोहे निर्गुण गुण किछु नाहे सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचे तेरी सेव कर कृपा दी जय गुरुदेव। गौण महला पंजवा संत का लिया तर्क बिगारो संत का निंदक अकाश के तारो संत को राखो अपनी जी नाल संत उधारो तत्क्षण ताल सोई संत जे

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत पाप बिलायण। रहाओ नारायण।

गायण भक्त अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा। जा को राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है। साध संग जपे निरंकार निंदक के मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिस्कोवत ना है। जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राय सो दास रखिया।

सब लोग संतन के मन महा आनंद, संत जपे गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल स्थान निंदक से गए, सास सास जन सदा सलाए, पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए, सगल पै मिटे जा की शरण, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे न कोए, जो करे सो दुखिया होए, आठ पैर जन एक से आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन निर्वैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक बेकारी, गुर कै सुख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ खर पर जाए, नितरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जां कै सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बढ़े बिकारा, बिन बोले क्या करें बिचारा, कहो कबीर छूछा कट बोले, करया होए सो कब होना डोले, गौंड नरु मरे नर काम ना आवे।

सतगुरु प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती क्रोप मूल में मारियो, हस्त पाग के चीसा मारे, क्या मूरत के हो।

हार शंख को बिख बिखे संसार कर सीगार बह पखियारी संत की छिटकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिसका बोझ

सुंदरी पग मेवर छनक छन हरी जो लग प्राण तौ लग संगे नाए ता चली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रख किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े पूपत राजे है छेदे सुहागन उर्वार ना पार पांच नारद के संग विद्वार पांच नारद के मिटवे फूटे कौ कबीर गुर कृपा छूटे गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे नाम बिना कैसे पार उतरे कुंभ बिना जल ना टिकावे साधु बिन ऐसे अवगत जावे जारो तिसे जो राम ना चेते तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ जैसे हल हर बिना जिनी नहीं बोये सूत बिना कैसे मणि परोये कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाये साधु बिन कैसे अवगत जाये जैसे माता पिता बिन बाल न होई बिंब बिना कैसे कपड़े तोई कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पति है परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की भगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूछे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख ते होए अनाद, जपिए नाम।

तो न पूजे हर कीर्तना मा अपने राम में पाजरे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड परता बनारस अस बसता मुख वेद चतुर परता सगल कर्म अच्छता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल पेदं सिमर सिमर गोविंदं पजनामा तरस पर सिद्धं गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए प्राण सजे वहां को ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेरो राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ। जो मीना हेरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखई हेरे

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तनमय नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंडे आज ना में बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के कर खाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुम

मुकंद मुकंद जपो संसार, दिन मुकंद तन होए अवतार। सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। रहाओ मुकंद मुकंद हमारे प्राणं, जप मुकंद मस्तक नीश।

कौ रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड, जे ओ अवसर तीरथ नावे, जे ओ द्वादश सुरा पूजा है, जे ओ कूप तटा देवा।

आद का निंदक कैसे परे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पनार सिगार समेत, सगली सुमृत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजो निहांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का परगत पहारा, निंदक सो दुसाज बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

जाना अभी कभी किछु ना जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कभू जियरा ऊब चरक है कभू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व ज्योत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जह पीतर कब पीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार कहे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रहा भरपूर सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार माया नैन लागस बाणी प्रणवत नानक दासन दासा परता पेंगा प्राणी राम कली महला पहला जित दर वसे कवन दर कही है दरा पीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आयत है किन बिद सागर तरिये जीवतिया नह मरिये रहाओ दुख दरवाजा रो रखवाला आशा अंदेशा दे पत गरे माया जल खाई पानी कर बांधिया सत के आसन

करे। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। इन विद सागर तरी है जीवतियां क्यों मरी है, रहाओ दूजा राम करी महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोग सुने, पचोली मंगन कहताई पीखिया नाम पड़े। बाबा गोरख जागे गोरख सो, जिन गोए उठा ली करते बार न लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंग राखे, चंद सूरज मुख दिए।

पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संग मिलाए जीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए राम कली मेला पहला हम डोलत बेड़ी पाप पड़ी है पवन लगे मत जाए सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दे आए गुर पार तारण हारिया देव भगत पूरन अविनाशी हों तुझको बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर्जंगम एक सिद्ध जिन त्याया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा राम कली मेला पहला सुरती सुर कर लाये एक कन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख तेन सदीवा

मंगत जन चाओ पांडे पाओ पवे तुत आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किछ किया सो किछ करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक पिकार कहे मंगत जन मांगत मान न पाया सैकिया गल्ला दरकिया बाता कहता कहन कहाया राम कली मेला पहला सागर में बूंद बूंद में सागर कौन बुझे दिख जाने उत्कुद चलत आप कर चीने आपे तक पछाने ऐसा ज्ञान विचारे कोई उसके मुक्त परमगत हो ही रहा दिन में रैन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकि गत मित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख में नार नार में पुरखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी तुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन में जोत जोत में मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिन कै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जहाँ हर प्रभु कृपा तारी ताहो में विच्यो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी विचारी सो हर जन हर प्रभु पावे एन इस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद कोरा मन मान्या हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद वेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तै तीर्थ वर्त तप सारे गुर मिलिया हर निस्तारे जह आप गया पौ पागा।

तीजा कर पहला। सतयुग सच पहे सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सतयुग धर्म तैर है चार, गुरमुख बूझे को विचार। जुग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई। रहाओ त्रेता इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम दोए पैर रखाए, गुरमुख होवे ता नाम दृढ़ाए।

सुख कोई, गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड़े।

जे वड पाग होवे वड पागी ता हर हर नाम ते आवे। नाम जपत नामे सुख पावे, हर नामे नाम समावे। गुरमुख पगत करो सब प्राणी, हृदय परदास होवे लिव लागे। गुरमुख हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया। जिस वड पाग होवे वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया। रतन जवे हर लाल हर नामा, गुर कार तली दिखलाया। पाग हीन मनमुख नहीं लिया, तिन ओले लाख छपाया। मस्तक पाग होवे तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए। नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए। राम कली महला चौथा। राम जना मिल पया आनंदा, हरनी की कथा सुनाए। गुरमत मेल गई सब निकल, सत्संगत मिल बुध पाए। राम जन गुरमत राम बोलाए, जो जो सुने कहे सो मुक्ता। राम जपत सोहाए रहाओ। जेवर पाग होवे मुख मस्तक, हर राम जना पेताए। दर्शन संत देहो कर कृपा, सब डाल दुख ले जाए। हर के लोग राम जननी के, पागहीन ना सुखाए। जो जो राम कहे जन ऊंचे, नर निंदक दंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए। हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले। जिन गुर की पैज न पाए, दया दया कर राखो हर जियो। हम दीन तेरी शरण आए, हम बारिक तुम पिता प्रभु मेरे। जन नानक बख्श मिलाए, राम करी महला चौथा। हर के सखा साध जननी के, तिन ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध सही प्रभु पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे। अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाओ। हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे। हम होवत तेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड पागी, रिद मन तन प्रीत लगावे। बिन प्रीति करे बहु बाता, कूड़ बोल पूरो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावे। हाँ काटो काट बाढ़ से।

राम कली महला चौथा। जे वड पाग होवे वड नेरे, जन मिलदियां तुल न लाईए, हर जन अमृत कुंट सरनी के, वड पागी तित न लाईए, राम मोको हर जन कारे लाईए, हौ पानी पखा पीसों संत आगे, पग मल मल तूर मुख लाईए, रहाओ, हर जन वडे वडे वड ऊचे, जो सतगुर मेल मिलाईए, सतगुर जेवड अवर न कोई, मिल सतगुर पुरख त्याईए, सतगुर शरण परे तिन पाया, ने ठाकुर लाज रखाईए, इस अपने स्वाए आए बहे गुर आ गए, जो बगुल समाद लगाईए, बगुला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखू मुख लाईए, नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराईए। राम करी महला चौथा। सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुरचरणी, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया, राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर दिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सखाया, रहाओ मेरे इच्छन प्राण न रहे बिन प्रीतम, दिन देखे मरे मेरी माया, तन तन वड पाग गुर सरणी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया, मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया, नाम हीन फिरे से नकते, तिन कस कस नक वडाया, मोको जग जीवन जीवाल ले स्वामी, रिद अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम कली महला चौथा। सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिले हर उर्धारे, जी दान गुर पूरे दिया, हर अमृत नाम समारे, राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन वड पाग हमारे, रहाओ कोट कोट ते तीस त्यावे, ताका अंत न पावे पारे, हृदय काम काम नी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे, हर जस जप जप वडा वडेरा, गुरमुख रखो उरदारे, जे वड पाग होवे ता जपिए, हर पौजल पार उतारे, हर जन निकट विकप हर जन है, हर रास है कंठ जन तारे, नानक पिता माता है हर प्रभु, हम बारिक हर प्रत पारे, राग राम।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई। मन संसार

भगत करी हर के गुण गावा। नानक दास तुम्हारा रामकली महला पंजवा। पवो चरणा तल ऊपर आवो ऐसी सेव कमाओ। आपस से ऊपर सब जानो तो दर्जे सुख पाओ। संतो ऐसे

सतगुरु मिलो नवे निड पावो इन विद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किसो करो बुराई सतगुरु मिले मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी तन तन से जन जिन्नी कर में हर पाया जन नानक सद कुरबानी राम कली महला पंजवा आवत हरख ना जावत दुखा ने व्यापे मन रोगनी सदा आनंद गुरपूरा पाया तो उतरी सगल बेगनी ए बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे ते हर हर हर रस पोगनी रहाओ सुर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जत कत देखो हर गुनी मैं शिव शक्ति जल नहीं पवना तह अकार नहीं मेदनी सतगुर जोग का ता निवासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस अगोचर

जन हम भी संग अधाए मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कहन न जाए। राम कली मेला पंजवा कर कर पाल पखाव जनैनो माथे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जिवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

सब, कोई ओडा नील, कोई सुपेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाँछे तुस्त, कोई सुरजिंदू, कहो नानक जिन।

रोवन हार दे ऊट सुदाए, परम मोह के बांधे बंद, सुपन पया पखलाए अंग, ते तो रचन रचिया करतार, आवत जावत हुकम

खींचा सूत ता आई साए चो में एक है मत है किया तें बिखरे थान अनक खिड़कियां खोजत खोजत द्वारे आया ता नानक जोगी महल कर पाया क्यों किंकुरी अनूप वाजे सुन जोगी के मन मीठी लागे रहाओ दूजा राम कली मेला पंजवा पागा करके लाए।

जपनाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

गुर गोरख की तै बूझ न पाई, फिर जोगी आवे जाई, जिसनो हुआ नाथ कृपाला, रह रास हमारी गुर गोपाला, नामे खिंसा नामे बस्तर, जन नानक जोगी हुआ अस्थिर, क्यों जपिया नाथ दिन।

सै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना और सोरे हर रस मीठा गुरमुख किने विरले जीठा राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पहने काम तन मन शीतल अग्न निवारी अनद रूप प्रटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, जिस गुर को हो सब बलिहारी, काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ मैं मां जा की गहर गंभीर, होए निहाल दे जिस तीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप, लाल रतन किस पाले परया, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप।

नीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी शरणी पाए राम कली महला पंजवा कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पई करतार जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन बेअंत मह माता की केतक वरन।

संत जने परदास पया पूरे गुरबतनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कलमाहे इहो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस उठा कट कट रमैया तिन ही दीठा राम कली मैला तन्यवा पंच शब्द तै पूरन नाद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करें संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे तें रोग सोग नहीं।

कीर्तन आधार, नीचल आसन बेसुमार, दुगना डोले कतहु जावे, गुर प्रसाद को इहु मेल पावे, प्रम पे मोह न माया जाले, सुन समाद प्रभु कृपाले, ताका अंत न पारावारे, आपे गुप्त

मन आस संत हमारी निर्मल रास संत हमारा राख्या पर्दा संत प्रसाद मोहे कबू न करदा संते संग दिया कृपाल संत सहाय पै दयाल सुरत मत बुद्ध परदास जय।

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना दुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछ ना कहे। रहाओ दिन हर सगल निरा।

कर पर थापे वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान।

संज्ञा जो किछ करे सोई सुख जाना, मन असमझ साध संग पतियाना, डोलन ते क्यूका ठहराया, सत माहे ले सत समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभु की आज्ञा मन में मानी, महापुरुष का संग भया।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रसे गुरुमुख नाम निमख हृदय वसे हर के नाम की वडियाई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरवीर तीरज मत पूरा

छूटे माया के पटल, गुरु का शब्द अमृत रस पियो, ताके रा होई निर्मल जियो। सोधत सोधत सोध विचारा बिन हर

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

इसे त्याग सत्संगत करे, वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व में पेख, पूरन पूर रहा प्रभ एक, रतन अमोल हृदय में जान, अपनी वस्तु तू आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद, वडे पाग हो वै तो।

थाओ सदा आनंद न होवी सोग कभू न व्यापै हो मैं रोग खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी विस्मन विषम पै विस्मादा परम गत।

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

गुर का उपदेश सुनी जय, नानक सुख सहज समी जय।

बूढ़त लो साध संग तर नानक जिसे प्राप्त करे राम कली महला पंजवा मन माहे जाप भगवंत गुरपुर यो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूरन होई आस सफल सेवा गुरुदेवा कीमत किछ कह न जाई साच सच अलख।

एक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकुर के ते गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्य तेरा हो वह पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ तुम ही कारण करन। चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही त्याया आनंद।

दर्शन को जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय कर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस पेटक मिटे

जात नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुण गोविंद रविया दिन राती, साध संग कर मन की प्रीति।

साध संग दुख जाए रहाओ। जा कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर तर

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को भिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

वर्त कपन कर मन नहीं पूजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सोब मना हर जन संग पूजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर

जिन जपिया तिन ही सुख पाया, हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ। नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभि

जिन गुरु शब्द नहीं कर बार, नानक गुरुमुख तक विचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया, तन तन देखत गर्भ गया, कनिक कामनी सो

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान भया। जिसका यो तन तन सो फिर लेवे, अंतर कैसा दुख पया। अंत काल किच साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आज पुरख अपरम परसो प्रभ, हर नाम हृदय ले पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा अगर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एहो चाख्या राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरु मुख सम कर जाना हर्ष शोक ते बिरकत भया।